0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: को बहुत थका हुआ फील होगा, क्यों? क्योंकि मैंने एनर्जी बहुत लगाई वो काम करने में जो कि मेरे से हो नहीं सकता. तो दिस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये एक एक थॉट हमारी एनर्जी कंज्यूम करता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी. तो इसके लिए हम हमेशा यही याद रखते कि सारा दिन ड्रामा चल रहा है, हर एक एक्टर अपना अपना रोल प्ले कर रहा है. लेट्स नॉट राइट अदर पीपल्स स्क्रिप्ट. ये जो हम स्क्रिप्ट सारा दिन औरों की लिख रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इनको ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए था, ये भी कोई बात करने का तरीका है, थोड़ा सा तो पोलाइटली बोलते, ये नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है इनके अंदर. वी आर राइटिंग देयर स्क्रिप्ट, दे आर फाइन द वे दे आर. लेकिन हम उनकी स्क्रिप्ट लिखते लिखते हम ये सोचना भूल जाते, मुझे क्या बोलना चाहिए था. अब ये लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप हर एक सीन में देखेंगे, इवन अ सिंपल थिंग लाइक सपोज बोथ ऑफ अस हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हम किसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन बढ़ते बढ़ते एक आर्ग्यूमेंट बनती जा रही है, लेकिन डिस्कस करते करते मेरा ज़्यादा ध्यान किस पर होता है कि आप क्या बोल रहे हो, आपको क्या बोलना चाहिए था, आपको क्या नहीं बोलना चाहिए था, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है. तो इट्स जस्ट लाइक अ ड्रामा. आज अगर हम थिएटर देखने जाएं तो ड्रामा स्मूथली परफॉर्म तब होगा अगर हर एक एक्टर
1: अपने पे काम करे,
0: अपने पर काम कर रहा है. एक बार हम एक थिएटर परफॉर्मेंस देख रहे थे इन विच इट वॉज अ मोनो एक्टिंग, यू नो, एक ही था एक्टर, एंड दैट वन एक्टर वॉज प्लेइंग लॉट ऑफ रोल्स. इट वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस. उनके बहुत डायलॉग्स थे उनको जो बोलना था, एंड उन्होंने वो प्ले मतलब अनगिनत बार वो कर चुके थे. इट वॉज अ वेरी वेरी पॉपुलर परफॉर्मेंस, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल. अब इस चीज़ में अगर आप देखें तो उस एक्टर को वो डायलॉग्स तो बाय हार्ट याद होंगे, मतलब बिना एफर्ट के भी वो बोल सकते हैं. और उस दिन क्या हुआ, जैसे ही वो परफॉर्म कर रहे थे तो इन द मिडल ऑफ द प्ले किसी का मोबाइल बज गया, यू नो, एंड दैट एक्टर वेंट ब्लैंक. ही जस्ट स्टूड, ही जस्ट डिडंट नो कि मुझे नेक्स्ट क्या बोलना है. और उनको ऐसा दो मिनट लगा, उन्होंने फिर जैसे यू नो ही जस्ट स्टूड स्टिल साइलेंट. टू मिनट्स के बाद ही सेड सॉरी, एंड देन ही सेड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कीप योर मोबाइल्स ऑन साइलेंट, एंड देन ही स्टार्टेड हिज परफॉर्मेंस. तो वो देखते हुए जस्ट द थॉट व्हिच केम टू मी इज कि एक्टर अपने रोल पर और अपने डायलॉग्स पर इतना कॉन्सेंट्रेटेड है फुल्ली कि एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन भी और वो अपने रोल और अपना डायलॉग भूल गया. हम सारा दिन अपने जीवन कैसे जी रहे हैं, हम तो अपने माइंड को हर तरफ डिस्ट्रैक्टेड होने दे रहे हैं, हमें अपना रोल और अपना डायलॉग
1: पता ही नहीं है ना,
0: से ध्यान में रहने वाला
1: है, अवेयर ही नहीं है बिल्कुल भी, यू नो,
0: कैसे ध्यान में रहेगा. एंड देन हाउ विल वी गिव आवर बेस्ट परफॉर्मेंस टू एवरी रोल दैट वी आर प्लेइंग, बिकॉज हम तो अपने रोल में है ही नहीं. सी इफ आई एम हियर, लेकिन मैं अपने बजाय औरों के रोल्स और औरों के डायलॉग्स के बारे में सोच रही हूँ. आई एम नॉट देयर इन माई रोल, हाउ विल माई लाइफ बी. एंड फिर सब कुछ करते हुए भी हम कह रहे हैं वो अनुभव नहीं हो रहा, वो जीवन में जो सक्सेस चाहिए वो कैसे सक्सेस होगी. आज एक एक्टर को क्यों अच्छा लगता है परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि वो अपने रोल में अच्छी तरह से इन्वॉल्व था. हम किसी भी थिएटर एक्टर को जाकर पूछ सकते हैं, अगर 2 आवर्स के प्ले में वो सिर्फ औरों के रोल के बारे में सोच रहे थे, हाउ डिड यू एंजॉय योर परफॉर्मेंस टुडे?
1: नहीं होता, कभी भी नहीं होता.
0: यू आर अ थिएटर एक्टर, तो आप एक दिन वो करके देखो. एक तो आप बीच में ही अटक जाओगे, आई थिंक इन द मिडल ऑफ,
1: जैसे हम दूसरे को करेक्ट करने लगते हैं ना, खुद का अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है ओ यस
0: खत्म हो जाएगा.
1: थिएटर में भी हर परफॉर्मेंस से पहले 5 मिनट का साइलेंस रखते हैं. Yes. 5 मिनट का साइलेंस रखते, उसके बाद यू नो 1 आवर बिफोर द शो, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, वी जस्ट गो इनटू साइलेंस. हम उसके बाद बात नहीं करते.
0: Right.
1: एक पूरा मेडिटेट करने के बाद 5 मिनट तक अपने साथ, देन एक्टर रिमेंस विद वन सेल्फ.
0: तो अब जो वो सी आई डिडंट नो दिस, बट अगर वो 5 मिनट का साइलेंस करते हैं, वो क्या प्रयास कर रहे हैं कि सारी डिस्ट्रैक्शन से एक्सटर्नल भी इंटरनल भी हर तरफ से हटकर अब आ जाओ सिर्फ और सिर्फ अपने रोल के ऊपर, क्योंकि ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस. एंड हम अपनी पूरी परफॉर्मेंस, अपना पूरा प्ले कर रहे हैं विदाउट बीइंग इन द सीन, एंड तब हमें अपने इस प्ले में उतना मजा नहीं आ रहा है जितना मजा आना चाहिए, क्योंकि हम तो अपना रोल प्ले ही नहीं कर रहे. वी आर कॉन्स्टेंटली प्लेइंग समबडी एल्सेस रोल, एंड कहीं ना कहीं शायद हमने अपना रोल ही ये बना लिया है

0: औरों के रोल के अंदर।
1: हमने अपनी अपनी बात डालनी है।
0: अब ये जो हम औरों की स्क्रिप्ट सारा दिन लिखने की कोशिश करते रहते, इसके पीछे कौन सा बिलीफ सिस्टम होगा? व्हाट वुड बी द बिलीफ सिस्टम?
1: ही इज रॉन्ग, द अदर पर्सन डजंट नो, आई नो बेटर।
0: सो वन, आई कैन कंट्रोल द अदर पर्सन। ये एक डीप बिलीफ,
1: बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू चेंज, यू नो, आई एम ट्राइंग टू डू थिंग्स बेटर फॉर हिम।
0: तो लेकिन ये तो मेरा बिलीफ है ना कि आप मेरे कंट्रोल में हो, मैं अगर आपको बोलूंगी
1: तो आप करोगे,
0: आप करोगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी डीप बिलीफ कि लोग मेरे कंट्रोल में हैं।
1: करें, करना चाहिए उन्हें,
0: लेकिन जब हम बोल रहे हैं, अब उनको जब हम रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, या उनके प्रति जजमेंटल हो रहे हैं, थॉट तो यही है ना कि ये सारी दुनिया
1: मेरे कंट्रोल में,
0: मेरे कंट्रोल में है, और ये सारी दुनिया मेरे चाहने के अनुसार चलनी चाहिए। दिस इज अ वेरी डीप बिलीफ सिस्टम, द वर्ल्ड शुड गो अकॉर्डिंग टू माई लाइक्स, माई डिजायर्स एंड माई एक्सपेक्टेशंस। एंड ऑल्सो सेकेंड बिलीफ सिस्टम, माई हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन देयर बिहेविंग द वे आई वॉन्ट देम टू बिहेव। तो इसलिए अपनी ही खुशी के लिए ही, सारा कुछ खुशी के लिए है, अपनी खुशी के लिए औरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते, और उस प्रोसेस में अंदर ही अंदर और दर्द क्रिएट करते जाते। सो एक दिन के लिए ट्राई कर सकते हैं जस्ट राइटिंग।
1: किसी कॉर्पोरेट बॉस के बारे में बात नहीं कर रहे थे हम, आम अपनी जीती हुई, चाहे आप माँ हैं, चाहे आप सबॉर्डिनेट भी हैं,
0: जैसे माँ आपने कहा, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ये कंट्रोल का फीलिंग बहुत ज़्यादा आता है। इवन एक पेरेंट को किस कॉन्शियसनेस से अपने बच्चों को बड़ा करना चाहिए कि ये आत्माएं हैं जो मेरे घर में आए हैं, मेरा रोल है एक तो इनको फिजिकल प्रोटेक्शन देना, इंटेलेक्चुअल जो भी इनकी ग्रोथ कराना, बाकी मेरा रोल है इनको वो एक एनवायरनमेंट देना, इनको वो पालना देना, एंड देन लेट देम टेक देयर लाइफ द वे दे वांट, नॉट लेट देम डू एंड बिकम व्हाट आई वांट। यू नो, लॉट ऑफ अस आर ट्राइंग टू मेक आवर चिल्ड्रन what we want. It's not, yes, we are there to guide, but then we are there to guide.
1: तो कितनी बार तो कहते हैं कि अगर तुमने मेरा ये सपना पूरा नहीं किया तो फिर मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? Again, we need to check actually.
0: इसको चेक करने की चीज है कि उस आत्मा की अपनी जर्नी है, अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, डिजायर्स, जो भी सारा कुछ है, अपनी क्रिएटिविटी है। हम सोच रहे हैं वो हमारे थॉट पैटर्न से अगर अपना रोल प्ले करे तो उसकी अपनी क्रिएटिविटी दब जाएगी, एंड दैट सोल विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस, क्योंकि वो अपने थॉट से भी नहीं चल रहा और मेरे थॉट से तो वो कर ही नहीं सकता। सो इवन एज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, हमें एक गाइड की तरह बनना चाहिए ना, एक फैसिलिटेटर की तरह, जो हमेशा है, ऑलवेज अवेलेबल, बट टू हेल्प मी, टू गाइड मी, नॉट टू कंट्रोल में। तो उससे वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत हेल्दी हो जाएगा। लेकिन हम ट्राई करते हैं कि हम हमेशा उनको रोकते हैं हर चीज़ पे, ताकि उनकी लाइफ हमेशा स्मूथ चले। हम कितना भी ट्राई करें, उनके अप्स एंड डाउन्स तो आने ही वाले हैं, बट अगर हम उनको गाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते, तो वो अपने अप्स एंड डाउन्स को तो
1: हैंडल कर,
0: खुद ही फेस कर लेंगे। वी आर थिंकिंग कि हम बच्चों को इतना राइट राइट राइट दिशा पर ले जाएं कि इनके जीवन में कभी कुछ प्रॉब्लम ही ना आए। दैट्स नॉट द वे टू लुक एट इट। इट हैज़ टू बी, हम उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना दें ताकि जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी चैलेंज आएगा, दे विल बी एबल टू जस्ट क्रॉस इट, एंड दैट विल ओनली हैपन इफ आई फैसिलिटेट। यू नो, एक मेंटर जैसे होता है, एक गाइड जैसे होता है, नॉट अ कंट्रोलर। तो हम पेरेंट्स कंट्रोलिंग वाली जो एटीट्यूड लेकर चलते, उससे हम उसकी क्रिएटिविटी को दबा देते हैं। तो एक दिन ट्राई करेंगे स्क्रिप्ट नहीं लिखने के लिए औरों की,
1: और इसके लिए खुद अवेयर होना पड़ेगा। सी, अब जब हमने अपने ऊपर बात करनी शुरू की है, अपनी हर सोच को देखना शुरू किया है, तब रियलाइजेशन ये हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। आई थिंक समवेयर हमें ये फीलिंग कि मेरा कंट्रोल है दूसरे के ऊपर।
0: हाँ, सी दैट फीलिंग कि मेरा, अगर हमें किसी को भी बताना भी है, इट शुड बी लाइक दिस इज माई ओपिनियन, यू नो, यू कैन टेक इट इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू हैव टू डू इट दिस वे एंड देन एक्सपेक्टिंग कि वो करेंगे ही वैसा, एंड देन गेटिंग एंग्री
1: वो
0: जब
1: नहीं
0: वो नहीं कर पाते हैं उस तरह से। तो उससे फिर क्या हो जाता है, उनको राइट और रॉन्ग सिखाने के प्रोसेस में हम जब हर्ट हो जाते, तो हमारा रोल क्या हो गया? मैंने तो अपने
1: रोल पे तो काम किया ही ना,
0: अपना रोल। अगर मुझे आज आपको देखकर गुस्सा आ गया क्योंकि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, लेट्स से यू हैव कमिटेड अ क्राइम एंड मुझे गुस्सा आ गया, तो आपने तो जो भी गलत किया सो किया, वो आपके रोल का। मैंने जो गुस्सा किया, मैंने जो हर्ट क्रिएट किया तो मेरा रोल भी तो खराब हो गया ना, तो पहले मेरे अपने रोल पर मुझे ध्यान देना, देन आई कैन प्रोबेबली शेयर विद यू और गाइड यू, बट आपके रॉन्ग को क्रिटिसाइज करने के लिए मैंने अपने भी रोल को खराब कर दिया, तो हर एक एक्टर का रोल
1: खराब होता गया ना फिर, हाँ तभी तो ड्रामा खराब होने लग गया. अच्छा खासा जो है प्ले चल रहा है उसको अगर हम एक मिनट में खराब
0: एक नॉर्मल प्ले में भी अगर देखते थिएटर पे, लेट्स से हम अभी उस प्ले में हैं एंड मुझे अपनी लाइंस भूल गई, तो जो बाकी एक्टर्स हैं स्टेज पर उनका क्या रोल होता है?
1: वो कभी भी पता नहीं चलने देते किसी को भी कि ऐसा हुआ, इतना फटाफट डिजाइन कर लिया जाता
0: है. लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने ही रोल पर और अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करते ताकि उनके रोल और उनके डायलॉग से मुझे वो क्यों मिल जाएगा कि where was I making a mistake? They don't stop and tell me the lines. They don't spoil the harmony of the drama. You see? तो similarly, अगर कोई मेरे आसपास कुछ गलत कर रहा है, गलत डायलॉग बोल रहा है, according to me, गलत डायलॉग, गलत लाइन, सब कुछ, I can just take care more on my role. You know? और भी ज़्यादा ध्यान रखे कि I'll not get hurt, I'll remain stable. तो that might give the cue to the other person.
1: कि ओहो मैं भटक गया था, मेरी लाइन तो ये थी.
0: Yes. लेकिन जहाँ वो भी लाइंस अपनी खराब कर दी, मैंने भी अपनी लाइंस खराब कर दी, एंड देन ग्रेजुअली हम दोनों ने अपनी लाइंस को, डायलॉग को पूरी तरह से इतना मेस्ड अप कर दिया, देन दैट सीन बिकम्स वेरी वेरी अनप्लेजेंट, एंड फिर वो ड्रामा हमें पसंद नहीं आता, फिर हम कहते ये जीवन ऐसा क्यों है. तो ये वाली एक पॉइंट कि लेट एवरी वन बी, ये हमें यहाँ सफाई रखने में बहुत मदद करेगी, क्योंकि हम बहुत एनर्जी, और देखो ना हम कितने लोगों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, एक दो की लिख रहे हों, चार की लिख रहे हों तो भी ठीक है, हम सारा दिन में कितने एक्टर्स की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करते.
1: उसे ऐसा कहना चाहिए था. हाउ मेनी टाइम्स वी से दैट ही शुड हैव सेड दिस,
0: yeah, is this the way to speak, this is this
1: he
0: what
1: should
0: he should
1: have done this,
0: should have, you know, should have, isn't it? We don't even say he could have said this, no, he should have said this, means
1: this, we'll go, this is what, you know, this is how the world should be.
0: Yeah, why? Because this is the way I would like the world to be. To isko ek homework ke roop se dekhe, aaj ek din try kare, how do you feel jab aap auron ki script mein इंटरफेयर न करके
1: लोगों को कंट्रोल एक्चुअली करना बंद कर दें, इवैल्यूएट करना बंद कर दें. अमेजिंग, यू नो हाउ वी डू.
0: और ये जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है, इसका हमें बहुत, जैसे आपने आज शुरू में भी कहा ना कि आपका ऊपर नीचे होता है कि नहीं, आई हैव सीन सबसे ज्यादा कारण ऊपर नीचे होने का यही एक होता, जैसे ही मेरा फोकस जाता है इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसा नहीं, देयर इट्स गॉन, दैट स्टेबिलिटी है. मॉर्निंग में उठे, मेडिटेशन किया, इट्स वेरी नाइस, यू आर एब्सोल्युटली लाइक दिस, एंड देन द माइंड गोज इनटू इनको क्या बोलना चाहिए था, इनको क्या करना चाहिए था, एंड देयर यू गो. अगर आप वो एक चीज पर वर्क कर लो, आपका माइंड ऐसे रहेगा, देयर इज नथिंग एल्स आउट देयर इन द वर्ल्ड जिससे कोई भी डिस्टर्बेंस होने वाली है, ये हम जब हो जाते हैं. सो राइट नाउ I am constantly trying to look in this, and I can just say it's easy, but requires lot of attention. क्योंकि ये बहुत जल्दी slip off हो जाता है. ये ऐसा संस्कार है कि you know we try to remind ourselves, and then before we are aware, 10 minute बाद I suddenly see oh my mind is again thinking about someone else, and again we किसी के बारे में judgment pass कर रहा है. What a waste of energy. Come back. लेकिन वो करते करते I can see कि वो परसेंटेज कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, एटलीस्ट मेरी लिस्ट कम होती जा रही है कितने लोगों के बारे में आई एम थिंकिंग, एंड नाउ दैट लिस्ट इज कमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, एंड वी नीड टू फिनिश इट, क्योंकि कोई भी नहीं है जो मेरे कंट्रोल में है. पहले तो क्या हो रहा था, गाड़ी चलाते हुए भी हर एक ड्राइवर के ऊपर भी कमेंट पास हो रहा था, कैसे चला रहे हैं, लाइन में नहीं खड़े, टोल पर खड़े हैं, गलत साइड से ओवरटेक कर रहे हैं, वी जस्ट थिंकिंग अबाउट एवरीवन, उन्होंने तो फिर भी ओवरटेक करना है, लाइन को तोड़ देते हैं, टैग की लाइन में कैश भर, ओ देयर इज सो मच टू गेट डिस्टर्ब्ड अबाउट, यू नो, इफ यू अलाउ योरसेल्फ टू गेट सक्ड आउट, there is just too much happening
1: around. I think for some time, you know, for some time we need to really focus on ourselves actually, and we should become little selfish.
0: No, very selfish.
1: I keep on saying this because I understand, you know, hum jaisa aapne kaha bahar continuous observe karte rehte hain, aur wo hum observe, aur hum kehte hain hum to neutral observer hain, lekin hum kitni sari cheeze un par
0: neutral honge to yahan disturbance nahi hoga na, agar aap detached hokar dekho, abhi bhi if I'm standing in the traffic jam, I can see people where they are making their mistakes, they are overtaking wrong, but
1: it's not affecting you,
0: create anything here अभी भी दिख तो रहा ना, आंखें कान बंद थोड़ी है कुछ भी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए. ओके, दिस बिकम्स एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्ट करें कि हर एक अपना अपना रोल अपने अपने अनुसार प्ले कर रहा है, एंड दे हैव द राइट टू डू इट. एवरी वन, मेरे अंदर बहुत कुछ है अभी, विच पीपल मस्ट बी सिटिंग एंड थिंकिंग दैट आई एम रॉन्ग, बट आई एम फीलिंग दैट वट एवर आई एम डूइंग इज राइट. तो इसी तरह सामने वाला भी जो कुछ भी कर रहा होगा, इवन अगर वो रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है, लाइन तोड़ रहा है, उसके पास उस टाइम कुछ ना कुछ लॉजिक होगा उसके लिए. और जैसे ही हम ये लेट बी करना शुरू करते, एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन को, लोगों को, कि हर एक अपने अनुसार अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, एंड एवरीबडी इज एक्यूरेट इन द रोल दे आर प्लेइंग. यस, इफ समबडी आस्क्स मी फॉर हेल्प, इफ समबडी वॉन्ट्स मी टू गेट इन्वॉल्व इन देयर ड्रामा, यू नो, किसी का अपना कोई ड्रामा है, एंड समवन सेज यू नो प्लीज गेट इन्वॉल्व, ताकि आप हमें हमारे ड्रामा में कुछ हेल्प करो, लेकिन उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा इन्वॉल्वमेंट, लेकिन नॉट उसके अंदर हम इतना घुस जाएं कि उस सीन की, उन एक्टर्स की जो इमोशन है
1: वो हमें हम करने पड़ा जाए. लेकिन वो एक्चुअली होता बहुत कम हो पाता है,
0: क्योंकि क्या होगा, जैसे आपने कहा, अगर इफ़ योर रोल सी यही पेरेंट के रोल है, यही बॉस का रोल है, ये टीचर का रोल है, क्योंकि हमारा रोल है किसी तरह तब कि हम औरों के ड्रामा में थोड़ा सा इन्वॉल्व्ड हैं, क्योंकि हम गाइड हैं, हम फैसिलिटेटर हैं. लेकिन वो रोल कहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब होता, जब वो दूसरे एक्टर की इमोशन हमारे ऊपर ओवरपावर कर जाती. बच्चा दर्द में है, मेरा रोल है उसके साथ बैठना, टू फाइंड आउट व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, एंड टू शेयर विद हिम व्हाट इज द राइट वे, एंड वो कैसे ठीक कर सकता है, कहाँ वो गलत जा रहा है, एवरीथिंग आई हैव टू डू. लेकिन अगर मैंने सेम दर्द क्रिएट कर लिया जो बच्चा है, या शायद मैं बच्चे से भी ज्यादा दर्द में एज अ मदर मैं चली गई, देन समवेयर आई विल नॉट बी एबल टू प्ले माय रोल प्रॉपरली. क्योंकि जब एक बार यहाँ दर्द क्रिएट हो जाता, तो वो क्लैरिटी ही खत्म हो जाती कि ये क्यों, क्या, कैसे इसको ठीक करना.
1: लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि जब हम रोल प्ले की बात करते हैं, लगता है कि बड़ा मैकेनिकल हो गया, यू नो, समवेयर डीप विद इन, बिकॉज वी एंजॉयड इट सो मच, और लाइक वी थिंक अगेन, ये बिलीफ सिस्टम है कि यही, ऐसे ही तो जीना है, ऐसे ही मुझे रोल प्ले भी करना है अपना.
0: रोल प्ले करना है, ये मैकेनिकल होने के बजाय क्रिएटिव हो जाता है. मैकेनिकल तो अभी तक चल रहे थे,
1: ऑटोमेटेड मोड.
0: हाँ, और मैकेनिकल क्या होता है, जहाँ चॉइस नहीं है, कि बच्चा दर्द में है तो मैकेनिकल है कि पेरेंट ने दर्द में जाना ही है. मैकेनिकल मीन्स ऑटोमेटिक, बटन दबाया और हो गया. उसने गुस्सा किया तो मेरा बटन यहाँ दबा, मुझे उदास होना ही है. दिस वॉज ऑल मैकेनिकल, बट नाउ इट्स बिकम क्रिएटिव, कि मेरे पास चॉइस है. वो हर्ट है, मैं स्टेबल भी रह सकती, मैं न्यूट्रल रह सकती, मैं और भी ज़्यादा पॉजिटिव होकर कुछ और क्रिएटिव सोच सकती. लेकिन पहले तो कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, देर वॉज जस्ट वन चॉइस. एंड तब हम कहते थे अटैचमेंट है तो हर्ट के साथ हर्ट होना नेचुरल है. ये नेचुरल था, एंड वी टुक इट एज अ साइन ऑफ लव, कि अगर वो दर्द में है और मुझे भी दर्द हो रहा है, इट इज अ साइन दैट हम बहुत एक दूसरे से, यू नो, बहुत प्यार करते हैं.
1: बिकॉज़ वी वर समवेयर, वी वर एक्चुअली टेकिंग लव एज अटैचमेंट,
0: एंड वी इवन से टू ईच अदर आई कैन फील योर पेन. पेरेंट चाइल्ड के साथ है, बच्चे से कोई गलती हो गई, पेरेंट हर्ट हो गया, कहीं उसकी पेरेंटिंग स्किल पर यू नो क्वेश्चन मार्क उठ गया, तो वो अपने ही कॉम्प्लेक्सेस में इतना चले जाते हम, कि हम बस चाहते हैं कि बच्चा किसी भी तरह ठीक हो जाए. बस वो जो मेरे ऊपर स्टिग्मा लगा है, दुनिया के सामने नहीं, मेरे लिए, अपने लिए, कि मेरी पेरेंटिंग पे जो स्टिग्मा लगा है वो ठीक हो जाना चाहिए, इसलिए हम उसको कहते हैं तुम ठीक हो जाओ. यू नो वी डोंट रियलाइज दिस, बट ये इसलिए है, तुम ठीक हो जाओ. वी नॉट रेडी टू गिव इट टाइम टू अंडरस्टैंड वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसके पीछे क्या कॉम्प्लेक्स है, क्या दर्द है, क्या सेल्फ एस्टीम हर्ट हुई. कुछ नहीं, तुम ठीक हो जाओ. बस तुम ठीक हो जाओ, क्यों? क्योंकि जब तुम ठीक हो जाओगे
1: तो मैं फिर रीअश्योरेंस हो जाएगी कि
0: मैं ठीक हो जाऊंगा. सो यू नो देन आई एम नॉट प्लेइंग दैट पेरेंट रोल इन द वेरी राइट वे. और जैसे ही हम ये करना शुरू करेंगे, अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं होगा, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली साइलेंट होता जाएगा. सारे आंसर्स, सारे सोल्यूशंस यहाँ पर है, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन, कि एक ट्यूटर है जो अंदर बैठा है, लेकिन अंदर की आवाज़ सुनने के लिए ये नॉइस को खत्म करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, इतनी नॉइज है, वो अंदर से आवाज देता भी है लेकिन हम आवाज सुनाई
1: नहीं देते, इतनी सारी आवाजों में फिर वो कंफ्यूजन, ये आवाज ठीक है या वो आवाज ठीक थी।
0: आप देखो कितनी बार जैसे जैसे हम इस जर्नी पर हैं तो अंदर से आवाज आती है, हमें कहते हैं मुझे अंदर से आवाज आई थी कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उस आवाज को क्या किया,
1: अनसुना,
0: मैंने अनसुना किया। क्यों अनसुना किया? क्योंकि कहीं मैंने सोचा कि अगर मैं उस आवाज की बात मानती हूँ तो मैं वो करने से अपने आप को रोक दूंगी जिस पर मेरी खुशी डिपेंडेंट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रग्स और विद स्मोकिंग और आई डोंट वांट, आई शुडन्ट बी वॉचिंग 3 hours ऑफ टेलीविजन, आई डोंट हैव टाइम बट आई एम स्टिल वॉचिंग। तो अंदर से ये छोटी छोटी बातें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेरी बिग वंस, कि छोटी सी आवाज अंदर से आएगी, मत देखो या ये मत लो, ये तुम्हारे लिए अभी इट्स नॉट गुड, लेकिन आई से गो अवे, मुझे खुशी चाहिए, यू नो। तो मैं उस आवाज को इसलिए इग्नोर कर देती हूँ
1: कि
0: कहीं वो आवाज मुझे मेरी खुशी से ही दूर लेके जा रही है, विदाउट रियलाइजिंग वो आवाज ही मुझे मेरी खुशी तक लेके जाने वाली है, मेरी आवाज।
1: Once my daughter also told me, कि she says, मेरे को पता चल रहा है कि मैं टीवी देख के टाइम वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज कम एंड स्कोल्ड मी मॉम। आई सेड, you know, the realization is so much.
0: Yes, it is, but I'm not listening to myself, so I need someone else to come and say it to me. तो क्या होता है जब उसको बार बार दबा दिया जाता तो वो अंदर ही वो दब जाती है, and then when it will come out, वो एक emotional outburst के रूप में आएगी। हमारी conscience जिसको हम कहते, that keeps giving me the signals and it always gives me the
1: right signal.
0: Always. Now it's just up to me to take that signal. Ignore करते गए, it's like हमें एक बहुत अच्छा टीचर मिला है जो हमेशा हमें अच्छा सिखा रहा है, लेकिन मैं उस टीचर की आवाज को, उसकी विजडम को, क्योंकि सारी विजडम भरी हुई है मेरे जीवन में, मेरे लिए क्या सही है,
1: मेरे पास है,
0: मेरे पास आंसर है, आई नेवर नीड टू गो एंड आस्क एनीवन एल्स। लेकिन
1: और आजकल हम हर चीज, हर छोटा डिसीजन भी, ऑफिस का डिसीजन भी, घर का डिसीजन भी 10 लोगों से पूछ के कर रहे होते हैं,
0: बिकॉज वी नॉट लिसनिंग। सो वो ट्यूटर अंदर बैठा है, उसकी बात को सुने, और जितना सुनते जाएंगे, यू नो ये टीचर ऐसा है कि हम उसकी बात को जितना सुनते जाएंगे ये हमें विजडम और भी देता जाएगा,
1: क्लैरिटी और।
0: यू नो सपोज आप मुझे कोई अच्छी बात बता रहे हो, मैं सुनती ही नहीं, फिर आपने दूसरी बार बताया, मैं सुनती नहीं, 4 बार बताओगे,
1: आप नहीं बताते, फिर
0: पांचवी बार आप मुझे बोलना ही बंद करोगे, तो मैंने ही अपने अंदर जो थी एक इतनी अच्छी चीज उसको मैंने दबा दिया। और अगर मैं बार बार आपकी बात सुनने लग जाऊं तो आप सोचोगे चलो मेरे कहने के अनुसार से ये कर रहे हैं, तो आप और बताना शुरू करोगे और बताओगे, इमेजिन माई लाइफ विल बिकम वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल।
1: बहुत सुंदर। तो आज जो हम इस प्रोसेस पे हैं कि हमें करना क्या है, जिन बिलीफ सिस्टम्स को पकड़ कर हम अभी तक बैठे थे उन्हें छोड़ने के लिए हमें सबसे पहले तो लोगों को छोड़ना पड़ेगा, लोगों की स्क्रिप्ट छोड़नी पड़ेगी कि लेट बी, एक तो लेट गो, जो जैसा है उसे वैसा रहने दें, उसके ऊपर चिंतन मत करते रहें कि उस वो ऐसा कर ले, वो ऐसा कर दे, मेरा टीचर ऐसे कर ले, मेरा हस्बैंड ऐसे कर ले। समवेयर वी नीड टू लेट बी, वो जो जैसे हैं। और दूसरी बात कि जहाँ हमने अपने आप को साइलेंट करके उस आवाज़ को सुनना शुरू कर दिया, चाहे इम्प्लीमेंट अभी भी ना करें, यू नो चाहे, मैं तो कहती हूँ चाहे इम्प्लीमेंट ना करो, सुन के उसको रजिस्टर तो कर ले, एट टाइम
0: दबा ना दे उसको,
1: यू नो उसको रजिस्टर करना शुरू कर दे, यस दिस इज व्हाट आई शुड बी डूइंग बट राइट नाउ आई डोंट फील लाइक डूइंग, इट्स ओके बट नेक्स्ट टाइम आई विल लिसन टू यू, यू नो। तो यहाँ ये प्रोसेस अगर शुरू हो जाता है, उसमें जैसे हमने कहा कि हर एक घंटे के बाद 1 मिनट का साइलेंस ये बात की याद दिलाएगा, मेरी आवाज़ मुझे अपने साथ सुनाता जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो प्रैक्टिस हैं वो हमें करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फिर हम चाहेंगे कि आपका जो अनुभव है वो आप हमारे साथ शेयर करें। तो कोई बात मन में आ रही है, कोई सवाल है अभी भी है, या इस प्रैक्टिस के दौरान आपको कोई ऑब्स्टिकल है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं या तो फ़ोन पर या फिर ईमेल पर। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। तो सस्ते शिवानी, आज की जो पूरी बातचीत रही, बहुत क्लैरिटी से ये समझ में आ गया कि करना क्या है। आप कितना करेंगे यह हमारे पर निर्भर करता है, लेकिन ये डेफिनेट है कि हम करेंगे ज़रूर, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है सब कुछ करना। थैंक यू सो मच ओम शांति। और अब आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन इसी बात के साथ कि ये जो हमें समझ में आ रही है बात, लगता है कि पॉसिबल है, तो लेट्स ट्राई इट आउट ना। पहले भी तो हम इन्हीं बातों को इम्प्लीमेंट करते आ रहे थे, बदला जीवन आगे और भी बदलेगा, हैप्पीनेस हमारी अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का? हो
1: हो
0: आमचा
1: आमचा
0: रेडिओ
1: रेडिओ
0: पुणेरी,
1: पुणेरी,
0: हो
1: हो आमचा
0: आमचा रेडिओ
1: रेडिओ पुणेरी।
0: पुणेरी।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: मेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणे री आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। खास इसलिए क्योंकि आज हम आपकी बात करेंगे, यानी आपके ईमेल्स और फोन कॉल्स जो हमारे पास आए हैं, और जो इन दिनों हम बात कर रहे थे कि एंगर को कैसे हमने मैनेज करना है, और एंगर के असली एस्पेक्ट को लिया था, पीस की बात की थी, शांति की बात की थी, फॉरगिवनेस की बात की थी, और कार्मिक फिलॉसफी की भी बात की थी। और हर बार की तरह हमसे बातचीत करने के लिए, इन सवालों का जवाब साथ तलाशने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी।
3: ओम शांति।
2: सिस्टर शिवानी, इतने सारे ईमेल्स आप ही आंसर कर रही होती हैं कितनी बार, और इतने सारे हमारे पास कॉलर्स हैं। सिस्टर शिवानी, हम ये पहला ईमेल लेते हैं, हमें मुंबई से नवीन ने भेजा है, और ये कह रहे हैं कि कई दिनों से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, और अब मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी स्लो सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, और हर बार मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, इसीलिए मैं किसी भी एक प्रोफेशन में नहीं टिक पाता। बात बात पे मुझे लगता है कि मुझे लोगों की एक्सेप्टेंस चाहिए, और यही परेशानी शुरू हो जाती है, और मुझे खुद भी क्रोध बहुत आता है। और अगर मैं अपनी ज़िंदगी में देखूँ तो मेरे पिता के साथ भी जो रिश्ता है वो बड़ा एक साइलेंट एंगर का है, क्योंकि मेरे फादर बहुत एग्रेसिव थे, और कहीं ना कहीं मेरी मदर के साथ उनका जो एक पूरा रिश्ता था वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, बहुत एग्रेसिव थे उनके साथ भी। एंड देन ही राइट्स कि उनके साथ मेरी बातचीत भी नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे हर बार ये एहसास होता है कि मैं जो हूँ वो अचीव नहीं कर पाऊँगा, और मैं इंस्टेंट सक्सेस चाहता हूँ। सिस्टर शिवानी, ऐसे मेरे ख्याल से कई पिता पुत्र के रिश्ते हमने देखे हैं।
3: कहीं ना कहीं सबसे पहले तो क्योंकि जो नवीन जी ने लिखा है, he first wants solution for his problem, कि लो सेल्फ एस्टीम है, एक्सेप्टेंस चाहिए सभी से, और अपने आप को प्रूफ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है, और इसीलिए प्रोफेशन में टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ही वांट्स इंस्टेंट, कि इंस्टेंट आई शुड गेट फेम ताकि मुझे सभी की एक्सेप्टेंस मिले, और हमेशा इंस्टेंट तो सब नहीं मिलता, तो आई टेंड टू स्विच ओवर टू समथिंग एल्स। और फिर दूसरी बात जो उन्होंने लिखी है वो ये है कि उनके अपने फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेंड है, इतना स्ट्रेंड है कि बोल चाल ही नहीं। इनके लिए ये दोनों अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, बट एक्चुअली ये दोनों बिल्कुल जुड़ी हुई हैं एक साथ। जो इनकी आज प्रेजेंट पर्सनालिटी है, लो सेल्फ एस्टीम की, एक्सेप्टेंस चाहिए, इसका कारण इनका ये डिस्टर्ब्ड थोड़ा सा चाइल्डहुड है, क्योंकि जिस तरह से लग रहा है वो ये कि इनका बचपन से ही रिलेशनशिप हेल्दी नहीं था। इन्हें ये फील होता है, सी पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव हमें नहीं पता, लेकिन बच्चे को सारी उम्र ये फील होता रहा कि मुझे अपने पिता से कुछ नहीं मिला,
2: और मुझे अपने आप को प्रूव करना है, शायद हो सकता है उनकी नजरों में एक्सेप्टेंस।
3: एब्सोल्युटली, क्योंकि उनको पिता से एक्सेप्टेंस मिली नहीं, उनको पिता ऐसा फील करते हैं कि पिता से प्यार मिला नहीं, कहीं ना कहीं एक डीप रूटेड ये बैठ क्या है कि मुझे उनको प्रूफ करके दिखाना है, तो वो आज डिफरेंट वेज में आता है कि मुझे दुनिया को प्रूफ करना है। एक्चुअली दुनिया को नहीं प्रूफ करना है, प्रूफ सिर्फ एक उनको ही करना है। और जो इतना उन्होंने वायलेंस देखा है अपने अंदर घर में, और इतना अग्रेशन देखा है, तो वो पेन, क्योंकि हर समय जब वो देखा होगा, और इतनी ज़्यादा नफरत जो भर गई है, तो वो उनके अंदर एंगर का रूप ले गई है। अब अगर ऊपर ऊपर से इस प्रॉब्लम को देखें तो उसका सोल्यूशन है कि आप कैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, आप प्रैक्टिस करें आप। लेकिन अगर आप डीप रूटेड उसके प्रॉब्लम को, सोल्यूशन को निकालना चाहते हैं, तो उसका सोल्यूशन आपके और आपके फादर के रिलेशनशिप पर बेस्ड है। सी इट्स एनर्जी। तो अब क्या हुआ कि मैंने बहुत साल, अगर ये युवा हैं अभी, यूथ एज में हैं, तो 20-25 ईयर्स व्हाटएवर, मैंने अपने अंदर पेन क्रिएट किया हुआ है, एंगर क्रिएट किया हुआ है, हेट्रिड क्रिएट की हुई है, मतलब इतनी नफरत है कि मेरी बोलचाल ही नहीं है, तो जहाँ बाहर बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं, तो अंदर कितनी नफरत अक्यूमुलेट हुई होगी, तो वो नफरत अंदर से गायब हो जाए जस्ट बाय वर्किंग ऑन माई सेल्फ, वो नहीं होगा। मुझे उस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और अगर मैं उस रिलेशनशिप पर वर्क कर लूं मुझे और कुछ करना नहीं पड़ेगा,
2: बाकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व।
3: एब्सोल्युटली, मुझे कुछ भी नहीं करना है अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपना गुस्सा खत्म करने के लिए, वो भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो गुस्सा यहाँ है, फादर के साथ है, तो वहां अगर खत्म हो गया तो ये खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि नफरत बहुत ज्यादा है अंदर, तो उनके लिए इवन ये एक्सेप्ट करना कि मुझे उस रिलेशनशिप को ठीक करना है, ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये फील करते हैं कि वो कारण है मेरी मदर की लाइफ को खराब करने का, मेरी लाइफ को खराब करने का, तो उस इंसान से मैं बात नहीं करूंगा, उस इंसान से मुझे कभी प्यार नहीं मिला, मुझे नहीं बात करनी,
2: और मैं भी प्यार नहीं करूंगा,
3: you know, I think so I justify my anger. See, these are the different ways I justify my anger, I justify my pain. अब इनको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये सारी जो पर्सनालिटी में प्रॉब्लम आ रही है इसका कारण वो दर्द है, और अब और ज्यादा जो सीरियस बात है वो ये कि ये दर्द सिर्फ इन तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये इनके अंदर इतना भर गया है, तो इनके जीवन में जो और आने वाले रिलेशनशिप्स हैं, कि कल को यू गेट मैरिड, टुमारो यू हैव चिल्ड्रन, तो यू एक्सपेक्ट टू हैव गुड रिलेशनशिप्स, बट देयर इज अ चांस दैट दैट विल नॉट बी पॉसिबल। नॉर्मली इस तरह की फैमिलीज से जो बच्चे निकलते हैं वो हमेशा सारी उम्र यही सोचते हैं कि मुझे जो अपने फादर से नहीं मिला
2: मैं बहुत दूंगा,
3: मैं अपने बच्चों को बहुत दूंगा, विच इज अ वेरी गुड थॉट कि मैं अपनी फैमिली को, क्योंकि उन्होंने एक ब्रोकन फैमिली देखी है, तो मैं अपनी फैमिली को बहुत हेल्दी बनाऊंगा। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ हमारे चाहने से नहीं हो जाएगा, या ये बाहर से करने से नहीं हो जाएगा, मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी की एनर्जी भरी पड़ी है, इतनी नफरत भरी पड़ी है, मतलब इतनी ज्यादा भरी पड़ी है, तो जब मैं नेक्स्ट परिवार से भी जुड़ता हूँ तो मेरी नफरत यहाँ नहीं रह जाती, आई कैरी इट विद मी,
2: वो फ्लो करेगी।
3: एब्सोल्युटली, क्योंकि द पर्सन इज बिटर इनसाइड, तो वो जो नफरत है वो सिर्फ हमें लगता है कि सिर्फ फादर के लिए, तो सिर्फ फादर तक ही टारगेटेड हो गए, ऐसा होता नहीं है। मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग इन दिस इल्यूजन कि मुझे जो प्रॉब्लम है ना सिर्फ इनसे
2: इनसे है, और मैंने जब इनको, और मैंने इनको किसको खत्म भी कर दिया कि मैंने बात
3: नहीं करना, मेरा तो इनसे कोई लेना देना नहीं, उससे कोई, लेकिन हम ये नहीं समझते कि उनके लिए जो थॉट्स हैं वो क्रिएट तो यहाँ की हुई है, तो वंस माय बॉक्स हियर इज फिल्ड विद हेट्रेड, मैं जहां भी जाऊंगा, आई कुड हैव द मोस्ट वंडरफुल वाइफ, आई कुड हैव द मोस्ट लवली चिल्ड्रन, लेकिन मेरे बॉक्स में क्या भरा हुआ है वो ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा। तो अपने लिए और अपने आने वाले संबंधों के लिए हमें इस संबंध को ठीक करना बहुत बहुत बहुत जरूरी है, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है।
2: अमेजिंग, एक्चुअली यू नो इफ वी लुक एट इट, मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी, अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें कि जो एक रिश्ता जिसको नॉर्मल देखते हैं हम, कि इसका मतलब ये तो आगे हर चीज में दिखता है,
3: हर चीज में जाएगा, और इसका देखो कनेक्टेड कितना हो जाएगा, मेरे अंदर बिटरनेस रहेगी तो मेरा अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, उसकी वजह से उनके अंदर बिटरनेस भरेगी, दे विल कैरी फॉरवर्ड इट, एंड देन इट जस्ट गोज इनटू अ साइकिल साइकिल साइकिल, एंड एवरीवन इज ब्लेमिंग माय पेरेंट्स। अब अगर ये समझ पाते हैं कि इनके फादर के अंदर जो भरा हुआ है उसका कारण क्या,
2: वो भी कहीं ना कहीं पीछे से आ रहा हो।
3: See what happens is कि ब्लेम करना तो बहुत ईजी है कि इनकी वजह से हम लोग सब परेशान हैं, लेकिन कभी क्या हमने एम्पथाइज किया उनके साथ, कभी कंपैशन से हमने सोचा कि उनके अंदर जो भरा हुआ है वो क्यों भरा हुआ है, तो लव अपने आप आ जाएगा, यू नो व्हेन वी अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आज अगर मैं जब अपने बच्चों के साथ उस तरह से करूँ तो मेरे पास एक जस्टिफिकेशन होगा, यू नो व्हाई आई एम लाइक दिस, बिकॉज माय फादर वाज लाइक दिस, बट एम आई अंडरस्टैंडिंग व्हाई इज माय फादर लाइक दिस, मे बी देयर वाज समथिंग दैट हैपेंड विद हिम। तो फॉरगिव करना कोई ऊपर ऊपर से नहीं कि बस मैंने हाँ फॉरगिव कर दिया, एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक कोई भी फादर उस तरह से होना नहीं चाहता कि वो गुस्सा करता रहे या यू नो घर में इतना वायुमंडल खराब रहे, लेकिन वो क्या करे, वो खुद ही दर्द से भरा हुआ है। तो उस पिता को आपको समझना होगा कि उनके अंदर जो इतना दर्द है, जो कड़वाहट के रूप में निकल रहा है, उसका कारण क्या, गो टू द रूट ऑफ हिज प्रॉब्लम, एंड देन व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट ही इज ऑल्सो वाउंडेड, तो एक वाउंडेड इंसान से नफरत क्या करोगे आप गुस्सा क्या करोगे, आपको तो प्यार आएगा, और आपका प्यार उनके उस चोट को हील कर देगा। हम सब क्या समझते हैं, इनको चोट लगी हुई है, इनकी वजह से मुझे चोट लगी, अब मेरी वजह से नेक्स्ट को चोट लगेगी। हीलिंग का जिम्मेवारी
2: हमारी नहीं,
3: कोई भी नहीं उठाता। अगर ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं कि वो वुंडेड है, अंदर से बहुत दुखी है या परेशान है किसी बात के लिए, लेट मी गिव लव, लेट मी गिव सो मच लव कि वो चोट पूरी तरह से अंदर ठीक हो जाए। तो अभी क्या हो रहा है, मैं नफरत दे रहा हूँ उनको, तो वो नफरत पहले मुझे मिल रही है फिर उन तक पहुंच रही है। उनके अंदर ऑलरेडी दर्द है, अब उनको नफरत मिलती है मुझसे, मेरी मदर से, औरों से, तो उनके अंदर का दर्द बढ़ता जाता है। नाउ लेट मी मेक अ चॉइस कि फ्रॉम टुडे नफरत देने की बजाय लेट मी गिव लव। तो सबसे पहली चीज, वो प्यार मेरे थ्रू निकलेगा, मेरा जो बॉक्स है वो क्लीन होता जाएगा कि यहाँ नफरत की जगह प्यार, और दूसरा उनको मेरे से क्या मिलेगा।
2: That's so beautiful, actually.
3: He is going to probably think कि ये बहुत difficult है. Again, it's only one thought away.
2: Yes, yes, yes.
3: It's just one thought away. अगर आपको समझ में आ गया कि इसमें मेरा फायदा होगा क्योंकि मैं प्यार से भर जाऊंगा, उनका फायदा होगा वो हील हो जाएंगे, और जो मेरे आगे आने वाले रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगे। नहीं तो आप कितनी भी कोशिश करें वो अच्छे नहीं बन सकते हैं, बिकॉज यू विल बी बिटर इनसाइड।
2: बहुत सुंदर बात ये आपने कही शिवानी की, किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले या कोई भी और प्रोफेशन में आप जाएं, उससे पहले कोशिश यही कीजिए कि इस रिश्ते को,
3: क्योंकि गलत फाउंडेशन पे आप अपने अगले रिश्ते नहीं बना सकते। आप सोचे ये तो यहाँ का यहाँ खत्म, अब मैं आगे के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे बनाऊ, नहीं, आपका फाउंडेशन कमजोर, आप सोचे बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बना लेंगे, नॉट पॉसिबल। स्टार्ट टुडे, फिनिश द बिटरनेस। हाउ, हो सकता है कि वो आपसे एक क्षण में नहीं खत्म होती है, आप सबसे पहले उनसे जो आपकी बोलचाल बंद हुई है आप आज से बात करना शुरू करें,
2: कम्युनिकेशन। यस,
3: इसके लिए शायद हो सकता है कि बहुत ईगो को साइड पर रखना पड़े, और अगर हो सके तो कुछ भी नहीं है, ही इज माय फादर, आई कैन स्टार्ट टॉकिंग टू हिम टुडे, आज बात करना शुरू कर दे, एंड विद कंपैशन, एंड धीरे धीरे ट्राई एंड अंडरस्टैंड, यू नो, इवन इफ डोंट एक्सपेक्ट कि वो चेंज हो जाएंगे एकदम से, बट आई चेंज एंड स्लोली ही विल चेंज। बिटरनेस क्रिएट करना, एंड दिस विल बेनिफिट द मदर ऑल्सो, क्योंकि उनको, इफ यू सी द मदर, तो मदर को भी क्या मिल रहा है, हस्बैंड से गुस्सा मिल रहा है, बेटे से क्या मिल रहा है, बेटा भी तो दर्द में है। अब जनरली क्या होता है, माँ दर्द में है तो बेटा भी दर्द में साथ में बैठ जाता है, उससे मदर को क्या मिला, दोनों से दर्द ही तो मिला। एंड ओवरऑल द एनवायरमेंट ऑफ द हाउस, आपका घर आने को दिल नहीं करेगा शाम को टू दिस काइंड ऑफ अ फैमिली, सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट मी टेक इट अप। तो आज से ही बात करना शुरू कर दे, अपने आप को हील करें और प्यार देना शुरू कर दें, रिमूव ऑल दोज इमेजेस विच वर देयर। अगर वो आते भी हैं तो आप समझें इट्स ओके, ही हैड अ रीजन फॉर इट व्हाट ही इज डूइंग, लेकिन मेरी जो इमोशन है वो मेरी अपनी क्रिएशन है, तो फ्रॉम टुडे नॉट पेन बट लव, दैट्स माय चॉइस, आई विल क्रिएट दैट, एंड इट्स वेरी इजी, क्योंकि प्यार तो ऑलरेडी है,
2: इमर्ज करना है बस,
3: उसको सिर्फ देना शुरू करना।
2: बिल्कुल, बहुत सुंदर बात नवीन, हम पूरी उम्मीद करते हैं और आपके ईमेल का इंतजार करेंगे, जहां आपके पिता के साथ जो आपका रिश्ता है वो एक कंप्लीशन पे आएगा, एक बिटरनेस पे ना रह के एक प्यार भरे रिश्ते में परिवर्तित हो पाएगा। एक अगला ईमेल और लेते हैं, और ये भी एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा सिचुएशन है जिससे वाबस्ता मेरे ख्याल से हमें से ज़्यादातर लोग होते हैं, वो ये कि इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, कहती हैं कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ और मेरे कलीग के साथ एक बार बहुत कहा सुनी हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और वो मेरी बहुत अच्छी मित्र थी पहले, लेकिन किसी एक बात पे बहुत फाइट, इतने ज़्यादा एंगर था और उन्होंने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी कर दी, जबकि हम बराबर के ही हैं, कोई वो मेरी सीनियर नहीं है। अब हमारी ऊपर ऊपर से तो बातचीत ठीक है, फिर से शुरू हो गई, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलती हूँ, जब भी मेरा उनसे वास्ता पड़ता है, मुझे वो हर बार याद आ जाती है, हर बार, और अब मैं उसको वो सेटल नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब भी मैं उनसे दोबारा मुलाकात करती हूँ, तो मैं क्या करूँ, ना मैं उनसे बात कर सकती हूँ उस बारे में, क्योंकि वो ऊपर से तो हमारी बात सेटल हो चुकी है, लेकिन अंदर मुझे अभी भी बहुत गुस्सा चढ़ता है कि मैंने वापस नहीं लैश आउट किया, आई कुडंट गिव हर बैक व्हाट I think she deserves.
3: मैं उस टाइम वापस नहीं जवाब दे पाई, तो वो भी मुझे अब लग रहा है कि क्यों मैंने उस टाइम जवाब नहीं दिया। See, it's sometimes like कि अगर हम अपने आप को रोक भी लेते हैं रिएक्ट करने से, तो भी हमें पश्चाताप होता रहता है उस पर
2: कि मैंने
3: रिएक्ट नहीं किया. क्यों? अगेन बिलीफ सिस्टम. अपने आप से पूछे कि वाजंट इट अ गुड रिस्पॉन्स कि मैंने रिएक्ट नहीं किया. लेकिन हो सकता है मैंने बाहर से रिएक्ट नहीं किया लेकिन अंदर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर दिया, और अंदर का रिएक्शन अभी तक मेरे अंदर वो अक्यूमुलेटेड है. तो टेल योर सेल्फ कि जो ये आप समझ रहे हैं कि मैंने रिएक्ट नहीं किया वो गलत था, वो आप अपने आप को पहले बताइए कि वो तो सही था. वो आपकी फ्रेंड है या कोई भी और है, वो किसी ना किसी डिस्टर्बेंस की वजह से, क्योंकि वैसे तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है. मोस्टली हमें ये समझना होगा कि जब किसी एक इंसिडेंट पे कोई बहुत एकदम से यू नो एक्सप्लोड हो जाता है या रिएक्ट करता है,

0: बात तो नहीं अंदर जो परेशान कर रही है, क्योंकि मुझे पता है कि आपका व्यक्तित्व वो नहीं है कि आप इतनी सी बात पर इतना बड़ा रिएक्शन करेंगे। तो अगर मैं आपके लिए सोच पाऊँ, कंपैशन अगर हो, तो आई विल से इज एवरीथिंग ओके विद यू, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप अंदर किसी और बात से परेशान हैं। तो उससे क्या होगा, अगेन आपके लिए गुस्सा नहीं, आपके लिए प्यार आएगा कि पता नहीं आपको कौन सी बात परेशान कर रही है। और जरूरी नहीं है कि ये बात हम उस टाइम कह सके उनको, क्योंकि यू नो समटाइम्स उस समय तो उस तरह का सिनारियो नहीं होता कि हम कहें कि कहीं आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, आप इतना गुस्सा कर रहे हो। सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि उसको खुद को भी नहीं पता, उसको खुद को भी नहीं पता, उसे भी खुद को यही लग रहा है कि मैं इसी बात पर गुस्सा हूँ, यू नो। तो इफ यू ट्राई टू टेल हिम कि नहीं एक्चुअली आप किसी और बात से गुस्सा हो, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन होता क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीजों के कारण, बहुत सारे परिस्थितियों के कारण जो मैंने खुद अपने अंदर हर्ट क्रिएट किया है, वो अक्यूमुलेट हो चुका है। अगर कोई इस तरह से रिएक्ट कर रहा हो, बेस्ट थिंग इज शी इज डन अ वेरी गुड थिंग बाय नॉट रिएक्टिंग, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास दर्द है, आपने और क्यों देना है। तो उसके लिए पहले अपने आप को दो, फिर उनको दो, ठीक है। उनका वो बॉक्स खुल गया अंदर का और वो सारा बाहर निकल के आ रहा है, तो देन लेट इट कम आउट। उस समय मैं क्या दे सकती हूँ, यू नो वी सो अर्लियर ऑल्सो कि सबसे बड़ी सपोर्ट हम किसी को क्या दे सकते हैं अगर कोई दर्द में है, पीसफुल वाइब्रेशन। लेकिन उसके लिए फर्स्ट
1: वो मुझ तक आ रहा है,
0: पीसफुल वाइब्रेशन किसी को दे नहीं पाते, क्योंकि हम खुद ही अंदर से इतने ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। तो पहले समझ लें कि उनके पास कोई कारण था। दूसरा, अपने आप को समझाएं कि अगर मैंने रिएक्ट नहीं किया, ये बहुत अच्छा किया।
1: इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबमिसिव हूं। She has written somewhere कि you know कि I feel that I was submissive.
0: No, you've done a very good thing. क्योंकि आपने उतनी बात को उतने में ही खत्म कर दिया। अगर रिएक्ट कर दिया होता तो कितनी बड़ी हो जाती। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप रिएक्ट अभी भी कर रहे हैं। शायद उस दिन नहीं रिएक्ट किया हो, लेकिन रिएक्ट अभी कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन नॉट नेसेसरी वर्ड्स, लेकिन रिएक्शन हमारे थॉट्स हैं। तो हर बार जब आप उनके बारे में उस तरह से सोच रहे हैं, कई बार क्या होता है, मैं आपको ऊपर से नहीं बोल पाती जो मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन अंदर मैं सारा दिन आपको बोल रही हूँ वो जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ। तो अंदर एक कॉन्वर्सेशन सारा दिन चल रही है, तो वो भी तो एक रिएक्शन है। आई विल कॉन्शियसली हैव टू स्टॉप दैट रिएक्शन, एंड दैट विल हैपन if I start creating positive thoughts for you, understanding you, and then bring my relationship outside, jo relationship hai, usko bhi normal par le aaye. You know, why not? How much time? Actually, dekha jaye to dono jane chahte hain ki wo wapas waisa hi ho jaye. Lekin dono rukenge ki pehle kaun karega? Kaun pehle baat karega? Ya kaun pehle sorry bolega? Ya kaun pehle, you know, aakar fir se baat karna shuru karega? Why not me? आज दिन तक हम समझते आए जो झुका वो कमजोर, परमात्मा हमें सिखाते जो झुका वो शक्तिशाली, क्योंकि ईगो कमजोरी है, झुकने में ताकत चाहिए। तो जो झुका वो शक्तिशाली है, और जितना बार हम झुकते जाते हैं इस तरह से, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी टॉलरेंस पावर और भी बढ़ती जाती है। तो लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल, हम अपनी पेंटिंग क्रिएट कर रहे हैं लाइफ के, क्यों हम उसको दर्द से भरते रहते हैं। सो मेनी स्ट्रोक्स दैट वी आर पेंटिंग एवरी डे, व्हेन इट्स जस्ट वन स्टेप अवे, गो एंड क्रिएट अ ब्यूटीफुल वन।
1: और इनफैक्ट जब आपका रोज का उनके साथ एक रिश्ता है, हर रोज की एक मुलाकात है, और कहीं ना कहीं आप चाह भी रही हैं कि कहीं ना कहीं चाह रही होंगी,
0: ये इस केस में नहीं है। बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो आकर रुक चुके हैं, यू नो, बोलचाल बंद है या अंदर कड़वाहट भरी हुई है, भले फॉर्मेलिटी से ऊपर से बात भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर पकड़ के रखा हुआ है। तो अपने आप से पूछ लीजिए कि दर्द कब तक पकड़ के रखना चाहते हैं। लगता है बहुत मुश्किल है छोड़ना, बहुत सिंपल है, सिर्फ लेट गो।
1: इनफैक्ट वही बात है, क्योंकि जिम्मेदार जो हमारे साथ हो रहा है उसके हम खुद हैं।
0: right. अभी तक समझ रहे थे वो जिम्मेदार है, तो एटलीस्ट आई विल वेट कि आप आकर सॉरी बोलो। लेकिन अब समझ में आ जाए कि ये दर्द मेरी क्रिएशन है, लेट्स मूव
1: अहेड, बिकॉज़ इट विल बी गुड फॉर मी, यू नो, पूरे रिश्ते के लिए तो है ही। सबसे पहली बात जो आप यहाँ लिखने का मतलब ही है कि आप कॉन्स्टेंट उसको जी रही है।
0: एंड मोस्टली इफ वी अंडरस्टैंड कि जैसे वो फर्स्ट केस में भी था, एक रिश्ते की कड़वाहट सिर्फ उस रिश्ते तक नहीं रहती है, फाइनली वो मुझे एक बिटर पर्सन बनाती है, और वो मैं

0: अगले रिलेशनशिप्स में भी कैरी फॉरवर्ड होती है. द पर्पस ऑफ माय लाइफ शुड बी टू हैव ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स विद एवरीबॉडी. व्हाई क्रिएट पेन इनसाइड, अदरवाइज इट विल फ्लो टू एवरीवन आई मीट.
1: डेफिनेटली. तो ये हमारे अपने लिए बहुत ज़रूरी है कि इस आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बिटरनेस को आप निकाल दें और एक जो रिश्ता पहले था वैसा ही कायम हो सकता
0: है. और बहुत ज़्यादा सोचे नहीं कैसे करना है. अगेन एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग कैसे करें, लेकिन कैसे भूलें, कैसे बात करना शुरू करें, कैसे बात करना है, जाओ और बात करना शुरू कर दो. एक्चुअली जब एक्चुअली करते हैं तो बहुत सिंपल है, सोचते हैं तो बहुत मुश्किल. कई लोग सोचते हैं कि हम बात करें पता नहीं वो बात करेंगे कि नहीं, तो यू नो मैं झुकूं भी सही और सामने वाला और भी ज्यादा यू नो विदड्रॉ हो जाए तो मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी. लेकिन यू नो मैं झुकूं और सामने वाला कहे मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है तो मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी. लेकिन हर आत्मा प्रेम स्वरूप है. द अदर पर्सन इज जस्ट वेटिंग. इट्स जस्ट दैट उनके अंदर पावर नहीं है झुकने की, लेकिन वो वेट कर रहे हैं कब आपके साथ वो रिलेशनशिप अच्छा हो जाए. सो जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप
1: आई थिंक. और वो पहला स्टेप जो है वो जरूर एक मधुर रिश्ते की तरफ जरूर बढ़ेगा. एक और हम ईमेल ले लेते हैं. सर शिवानी, ये एक ईमेल है, एक डॉटर इन लॉ है, उन्होंने लिखा है कि नाम ना ले मेरा. अच्छा. लेकिन ये आया है उत्तर प्रदेश से और ये कह रही हैं कि आपका प्रोग्राम देख के मुझे लग रहा है कि गुस्सा जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, या गुस्सा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पूरा प्रोग्राम जो. लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं किसी और की मदद कर सकती हूँ जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, खासकर मेरी मदर इन लॉ को, कि ना सिर्फ मुझसे तो उन्हें गुस्सा रहता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करती हैं वो, लेकिन वो जनरली गुस्सा जो है उनको हर बात पे आ जाता है. और अब आपका ये बात समझने के बाद, देखने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि वो उनके लिए अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी, पूरे परिवार के लिए तो है ही नहीं, और मैं भी बहुत हर्ट होती हूँ. लेकिन क्या मैं उनकी मदद कर सकती हूँ?
0: बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन हमें अब सबसे पहले ये समझना होगा कि दूसरे की हेल्प करने के लिए पहले मेरी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए. आई वॉन्ट टू गिव देम पीस, आई वॉन्ट टू गिव देम लव, आई कैन नॉट गिव इट इफ आई फील that they are not right. This is very important. क्योंकि मदद कोई ऐसी मदद नहीं है जो ऊपर से की जाए, you know, कि आप जाकर उनको शांत कर दो या बिठा दो, ये सब तो होने नहीं वाला. यहाँ सब जो मदद है वो बहुत सटल रूप में अंदर चलने वाली है. तो वो ही है कि अगर मैं सचमुच में आपको हील कैसे करूँ अंदर. आपके अंदर पेन है, आपको प्यार देना है. अब आपको प्यार देने के लिए सबसे पहले मुझे स्वीकारना पड़ेगा कि आपके अंदर कोई दर्द है इसलिए आप इस तरह से कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं सोचूं ये तो है ही गुस्से वाले, ये तो हर एक के साथ गुस्सा करते रहते हैं, तो मैं कौन सी वाली एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ? गुस्से वाली. क्योंकि एवरी टाइम आई टर्न ऑन एंगर, आई एम थिंकिंग अबाउट एंगर, आई एम थिंकिंग अबाउट यू एज एन एंग्री पर्सन, आई एम गिविंग यू दैट एनर्जी, यू आर एन एंग्री पर्सन. एंड जनरली ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को सबसे ये एनर्जी मिलती है कि ये गुस्से वाले हैं, ये गुस्से वाले हैं, ये गुस्से वाले हैं. तो गुस्से वाली एनर्जी और भी ज़्यादा उनके अंदर री इन्फोर्स हो जाती है. तो अगर मैं रियली हेल्प करना चाहती हूँ, मुझे ये लेबलिंग हटानी पड़ेगी, ये थॉट्स हटाने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कि कोई ना कोई कारण है. लेकिन आत्मा तो कैसी है? आत्मा तो प्रेम स्वरूप है. मैं आत्मा कैसी हूँ? मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ. तो मुझे क्या भेजना है? तो इसमें ये नहीं कि कोई मुझे विशेष बैठ कर भेजनी होती है गुड विशेस. इट इज व्हाट आई थिंक ऑफ यू ओवरऑल एवरी टाइम. क्योंकि जो इस तरह से बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं उनको कहीं ना कहीं सबसे वो फील करते हैं कि बहुत ज्यादा दर्द मिला है. तो उन्हें सिर्फ कोई एक ऐसा चाहिए जो उन्हें अनकंडीशनली प्यार दे पाए. इवन जब वो गुस्सा कर रहे हैं, इवन जब वो बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं, मैं हर्ट ना होकर अगर आपको प्यार दे पाऊं, क्योंकि जैसे ही मैं हर्ट हो गई मैं प्यार नहीं दे सकती, बिकॉज आपकी वजह से मैं हर्ट हो गई, तो आई कैन नॉट गिव यू लव. तो इट रिक्वायर्स मी फर्स्ट टू बी इन अ वेरी वेरी एलिवेटेड स्टेट के आप चाहे मुझे कुछ भी कहे, मुझे हर्ट नहीं होना. क्योंकि अगर मैंने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दी, मैं साथ में पॉजिटिव नहीं क्रिएट कर सकती. जिसने बहन ने लिखा है, आप खुद मेडिटेशन करें, अपने अंदर वो पावर भरें कि मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, और वो वाइब्रेशन बार बार क्रिएट करें, और वाइब्रेशन हर टाइम फिर उन तक ऑटोमेटिकली पहुँचेगा. और जब भी वो आत्मा सामने आए तो उनको भी क्या देखें, ये भी एक प्रेम स्वरूप आत्मा है. बोलना नहीं है, लेकिन जैसे आप ये थॉट क्रिएट करेंगे वो प्रेम की वाइब्रेशंस उन तक ऑटोमेटिकली पहुंचेंगी और वो दर्द जो अंदर भरा है वो कहीं ना कहीं मिटना शुरू हो जाएगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट, खुद कभी अपसेट नहीं होना उनसे या किसी बात से हर्ट नहीं होना, नहीं तो इट विल नॉट वर्क। और 2 मिनट के लिए इसको हम अभी भी करके देख सकते हैं कि आपको सारा दिन में क्या प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो एनर्जी हम क्रिएट करना चाहते हैं उसको हम मॉर्निंग में बैठकर मेडिटेशन के दौरान क्रिएट करें, और जो हमारा हर एक घंटे के बाद 1 मिनट का ब्रेक होता है उसमें डेफिनेटली उसी थॉट को क्रिएट करें। तो लेट्स से कि आज मैंने अपने आप के लिए थॉट लिया कि मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, लव इज माय नेचर। तो जैसे ही मुझे वो 1 या 2 मिनट का ब्रेक मिलता है, पॉज, अपने चारों तरफ से जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको साइलेंट कर दें और मन को बताएं कि ये 1 या 2 मिनट मेरे को अपने आप के लिए निकालना है, और सब चीज़ों से डिटैच होकर बहुत स्ट्रॉन्गली एक थॉट क्रिएट करें, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। और अपने आप को देखें कि ब्रिकुटी के बीच एक बहुत सुंदर सा चमकता हुआ सितारा। लेट ऑल अदर थॉट्स जस्ट गो अवे एंड उस एक थॉट में अपने आप को एस्टैब्लिश कर दें, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकलकर चारों तरफ फैलते हैं। कुछ एक क्षणों के लिए मैं आत्मा यहाँ से निकलकर परम धाम चले जाती हूँ। देखें अपने आप को परम धाम में, उस निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा के पास। मैं उस भगवान का बच्चा हूँ जो प्रेम का सागर है, ओशन ऑफ लव, और प्रेम की किरणें उनसे निकल चारों तरफ जैसे फैलती तो मुझ में भी भरती जाती है। परमात्मा के इस प्यार को अपने अंदर भरते हुए मैं आत्मा पुनः आ जाती हूँ अपने कर्म क्षेत्र पे, और सारा दिन इसी स्मृति से अपने को भी देखूं और जो मेरे सम्मुख आए उनको भी इसी स्मृति से देखूं कि ये आत्मा भी परमात्मा का बच्चा प्रेम स्वरूप है। ओम शांति।
1: ओम शांति। शिवानी, ये जो 1 मिनट का पॉज हर 1 घंटे बाद है, कहीं ना कहीं दैट विल डेफिनेटली हेल्प हर। और मुझे लगता है हमेशा हमें भी अपने दिन में, जो हमने एक बार पूरी मेडिटेशन की बात की थी, उसमें 1 मिनट का जो है उसका रेलिवेंस बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: इट्स वेरी सिंपल, डजंट रिक्वायर टाइम, बस 1 मिनट। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, यहाँ से गए शिव बाबा के पास। शिव बाबा तो है ही ओशन ऑफ लव, वो ऑटोमेटिकली ओशन से तो लहरें सारी मेरे ऊपर आ ही रही हैं, बस भर लिया वापस। हाउ मच टाइम डज इट टेक? अब इसका इफेक्ट मेरे ऊपर काफ़ी देर तक रहेगा, मुझे ये स्मृति रहेगी कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। और जो वो 2 मिनट मैंने निकाले तो वाइब्रेशन क्या क्रिएट हुआ घर के अंदर। अब थोड़ी देर के बाद अगर बाहर के इन्फ्लुएंस आने से मैं भूल भी जाती हूँ, लेकिन फिर मेरा नेक्स्ट मिनट आ जाता है, उतनी देर में मुझे फिर याद आ जाता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मेरा नेचुरल संस्कार बनता जाता है।
1: बिल्कुल। और आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओम शांति।
1: परमात्मा की हम बात करते आ रहे हैं, तो ये जो पूरा ज्ञान, ये जो पूरे एस्पेक्ट्स हमें समझ में आ रहे हैं, ये परमात्मा का ही ज्ञान है। सेंटर पर जाने की जब बात की, जब पहले भी हमने बात की थी, तो यही था कि वहाँ मुरली सुनाई जाती है, यानी परमात्मा ने जो बात कही है, परमात्मा के जो वाक्य हैं वो हमें मिलते हैं, और वो ज्ञान कहीं ना कहीं दिन भर हमारे साथ रहता है। अगली कड़ी में क्रोध से जुड़े हुए जो मुरली में वाक्य हैं, जो ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं दिन भर में और जीवन में बदलाव लाने का प्रयत्न कर सकती हैं, आपके लिए बहुत कारगर हो सकती हैं, उन्हें शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो फिर आपसे लेते हैं इजाज़त, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अपने ईमेल्स या फ़ोन कॉल्स हमें करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आप हमें सवाल कर सकते हैं। इसी के साथ
2: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल। अपनेपन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना है, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना है, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: श्रोताओं, मैं हूं नीतू जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर आई हूं जिसका नाम है कृष्ण जन्माष्टमी। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व और इसे मनाने के बारे में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा था। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन उसे आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। यह सुनकर कंस ने देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। समय बीतता गया और भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय चारों ओर अंधकार था, लेकिन भगवान कृष्ण के जन्म के साथ जैसे आशा और प्रकाश का संदेश फैल गया। वसुदेव जी बालक श्री कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे और उन्हें नंद बाबा और यशोदा मैया के घर सुरक्षित पहुंचा दिया। वहीं कृष्ण का बचपन प्रेम और आनंद के बीच बीता। कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट थे। वे अपने मित्रों के साथ खेलते, माखन चुराते और सभी का मन मोह लेते थे। बड़े होकर उन्होंने लोगों को अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने की सीख दी। उन्होंने कंस का अंत किया और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाई जाती है। जन्माष्टमी का महत्व केवल भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाना नहीं है, यह हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, साहस, बुद्धि, कर्म और सच्चाई का संदेश देता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों को सजाते हैं, भगवान कृष्ण की झांकियां निकालते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। रात के 12 बजे कृष्ण के जन्म के समय विशेष पूजा की जाती है। कई स्थानों पर दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें लोग मिलकर मटकी फोड़ते हैं। बच्चे कृष्ण और राधा का रूप धारण करके इस उत्सव में भाग लेते हैं। जन्माष्टमी हमें यह सुंदर संदेश देती है, जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब सत्य और धर्म की जीत अवश्य होती है। आइए इस जन्माष्टमी पर हम भगवान कृष्ण से प्रेरणा लेकर सत्य बोलने, दूसरों की सहायता करने और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने का संकल्प लें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद श्रोताओं, फिर मिलेंगे एक नए चिंतन के साथ। बने रहे हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहे इसी तरह प्यार से। खुश रहे, खुशियाँ बांटे।
3: पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
4: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।
5: दोस्तों, यशस्वी भारत कार्यक्रम आपके बीच में देश के ऐसे रत्नों को लेकर के आता है जिनके जज्बे से देश रोशन हो रहा है। लेकिन आज के हमारे एपिसोड में हम किसी एक ऐसे नगीने को ढूंढ कर लाए हैं जिसकी कहानी अपने आप में वो शिखर पे है जहां पर देश, देश के प्रति प्रेम अपना सर्वस्व बलिदान मांगती है, और वो है जीवन का बलिदान। ये कहानी इतनी अनोखी है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, केवल सुनते रहना चाहूंगा और केवल आपको सुनने देने का मौका देना चाहूंगा। इसलिए आज का कार्यक्रम थोड़ा अनोखा है और अनोखे अतिथि के साथ है। स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन के स्टूडियो में परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव जी का। रेडियो मधुबन के स्टूडियो में योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
6: नमस्कार सर। नमस्कार। जय हिंद।
5: जय हिंद। वैसे तो हम जय हिंद अक्सर बोलते हैं, लेकिन आपके मुख से जय हिंद सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है। एक बार फिर से बोलेंगे तो बड़ा मजा आएगा।
6: जय हिंद।
5: जय हिंद। ये जोश, ये जो अंदाज है बोलने का, ये अक्सर हमने देखा है हमारे देशभक्त सैनिकों में तो होता ही है, लेकिन यही देशभक्ति हमने बच्चों में भी देखा है। जब स्कूलों में वो प्रेयर करते हैं या इंडिपेंडेंस डे होता है और जब उनको जय हिंद बोलने के लिए बोला जाता है, बड़े ही जोश से बोलते हैं। फिर धीरे धीरे जोश थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर शायद कहीं ना कहीं क्रिकेट के मैचों में या फुटबॉल या ऐसे क्षणों में ये जोश जागता है। इसीलिए ये एपिसोड आज का हमारे यशस्वी भारत कार्यक्रम का बहुत ही अनोखा है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि यही अंदाज रोजमर्रा की जीवन में हमारे बीच में बना रहे। उसके लिए हम आपसे प्रेरणा लेंगे। योगेंद्र जी, शुरुआत करेंगे आपको हम धन्यवाद करने से कि आपने न केवल अपने जज्बे से लेकिन अपने जीवन से और अपने हर सांस से देश की सेवा की है, और इसके लिए तमाम देश और हमारा रेडियो मधुबन, रेडियो मधुबन का पूरा परिवार, सभी श्रोता साथियों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।
6: धन्यवाद है ईश्वर का कि धरती पर हमें जो है पैदा किया और इस धरती की सेवा करने का मौका दिया, तो मैं उस ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों से जुड़ने का जो है मुझे उसी ईश्वर ने एक सौभाग्य दिया है। मधुबन रेडियो के सभी श्रोताओं से जुड़ने का मुझे मौका मिला है, तो इसके लिए मैं आप सबका भी पुनः धन्यवाद करता हूँ।
5: बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी। यशस्वी भारत कार्यक्रम में हम शुरुआत करते हैं कहानियों से, कहानी आपकी आपकी जुबानी। तो हम सुनना चाहेंगे वो बालक योगेंद्र की कहानी, जो धीरे धीरे सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव बना और फिर धीरे धीरे फिर कप्तान बन गए, और टाइगर हिल की कहानी, और ये सारी कहानियों को हम सुनना चाहेंगे। लेकिन हम जानना चाहेंगे उस कहानी को जो अक्सर मैं समझता हूँ कि हमारा फाउंडेशन होता है, हमारा आधार होता है, हमारा बचपन, हमारे आस पास के लोग जिनके जरिए हमारा बुनियाद तैयार होता है। तो हम सुनना चाहेंगे आपकी कहानी, आपकी जुबानी।
6: हाँ बिल्कुल, फाउंडेशन तो घर से शुरू होता है, और घर से क्या कहूँ कि माँ के गर्भ से शुरू होता है। तो जब माँ के गर्भ में कोई ना कोई आत्मा आती है, तो शायद ईश्वर ने उस आत्मा को उस माँ के गर्भ में डाला होगा कि शायद वो माँ उस गर्भ के लिए, उस आत्मा के लिए तैयार थी। शायद उसने पिछले कुछ तप किए होंगे, और माँ ही गर्भ में बहुत कुछ बच्चे को सिखाती है। बच्चा बहुत कुछ सीखता है, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से हूँ तो, और गांव से हूँ, तो गांव में किसानों की हालत आज से 40 साल पहले बड़ी दयनीय थी, बड़ा संघर्ष था। तो शायद जब मैं पेट में रहा होऊंगा तो माँ ने जो है उस संघर्ष को जब कर रही होगी, तो वो संघर्ष कहीं ना कहीं मेरे लहू में भी आया होगा, और धीरे धीरे उस संघर्ष को शायद मैंने अपने जीवन का एक आधार मान लिया। पैदा होने के बाद फिर भी संघर्ष था, कहीं ओलावृष्टि हो रही है, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं गांवों में आग लगती थी, तो सब कुछ एक बार समाप्त हो जाता था। फिर वो किसान परिवार फिर वापस अपनी शक्तियों को संग्रह करता था, फिर संसाधन जुटाता था, फिर वापस खेतों में काम करने के लिए तैयार होता था। तो वो मैं वो चीजें देखी बचपन में। एक बार की जब मैं शायद 4-5 साल का रहा होगा, उस समय की वो स्मृति थोड़ी सी याद है। मुझे याद है कि मैं शायद बीमार था, मुझे मेरी माँ जो है हॉस्पिटल से लेकर के आई थी दवाई दिवा करके, और एक ही कमरा होता था, एक कमरा था सिर्फ, बाकी तो जो है वो पुआल वाली जो है वो होती थी घरे है। तो मुझे मेरी माँ ने वहां से सुआया होगा, तो 3-3:30 बजे का समय था, जून मई जून का महीना जो होता है बड़ा तप्त वाला महीना होता है। तो उसी समय गांव में आग लग गई, और आग धीरे धीरे हमारे घर की तरफ बढ़ती जा रही। मैं देखा हूं कि माँ मुझे दौड़ करके आई, उठा करके लेके जाने लगी, फिर पशु थे पशुओं को खोलने, और आग प्रचंड हो चुकी थी। मुझे याद है कि 3-4 घंटे का वो तांडव रहा होगा, और हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा सिवाय एक चारपाई, वो भी जली हुई थी। लेकिन जो गांव के पहले लोगों का प्यार था, सहयोग था, वो एक अद्भुत था। जब जली हुई राख पूरे घर आंगन में पड़ी हुई थी, हर चीज का हर संसाधन जल करके राख हो गया था, तो पड़ोसी मोहल्ले गांव वाले कुछ बिस्तर कुछ खाना हमें दे करके गए। 2-3 दिन उन्होंने खाना खिलाया, उसके बाद बच्चे तो देखते रहते थे कौन क्या कर रहा। लेकिन माँ बाप ने कभी भी जो ना हार नहीं मानी, और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, अब हम पुआल का घर नहीं रखेंगे, अब हम टीन का घर रखेंगे। फिर उन्होंने जो है ये सीट जो लोहे वाली सीट की हमारे घर बनना शुरू हुआ वो बनाया। तो वो देखते रहे, खेती में काम करते रहे, फिर माँ बाप का सहारा बनने लगे, थोड़े से बड़े हुए। फिर कुछ दिन के बाद पिता बीमार हो गए, उनको बहुत गंभीर बीमारियां हो गई, उनको भी दिखाना था एक आय का स्रोत सिर्फ खेती का। अब खेत में काम करने वाला ही बीमार हो जाए तो उस घर की स्थिति क्या हो सकती है, ये आप समझ सकते हैं। फिर बड़ा भाई था और मेरे से 3 साल बड़ा था, उसने खेती का काम संभाला तो उसका मैं सहारा बना। दोनों भाई लगातार 7-8 साल तक दोनों कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते रहे, लेकिन माँ ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। खेत में जाती तो साथ जाती, वापस आती तो सब साथ आती। तो हम क्या भी करते थे, मम्मी आप जो है घर पे रहो, हम जो है कर लेंगे खेत। नहीं, बोला मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, आपको आप काम करोगे लेकिन मैं तुम्हारे पास बैठी तो रहूंगा, कम से कम देखती रहूंगी, तुम्हारे साथ कुछ हाथ बताऊंगा। तो वो जो एक भाव थे ना उससे बड़ी स्ट्रांगनेस आनी लगी। फिर धीरे धीरे खेतों में, खेत खलियानों में काम करते बड़े होते। बड़ा भाई मैं 10th में था उस समय, बड़ा भाई फौज में भर्ती होकर के चला गया। पिता फौजी थे तो वो अपने दोस्तों को जब कभी कभार अपने युद्धों की दास्तानों को सुनाया करते थे, 65 और 71 के युद्ध, युद्ध में चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं लेकिन फिर भी चलना होता है, ना खाना मिलता है ना पानी मिलता है। बच्चे थे तो सोचते थे पिताजी कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, बिना खाना खाए बिना पानी पिए बिना सोए इंसान जिंदा कैसे रह सकता है, और ये तो काम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन बार बार वही चीजें सुनते सुनते फिर मन के अंदर भाव जागृत हुए तो उन परिस्थितियों को जीना है, उनको देखना है। फिर एक लाइफ का पर्पज क्लियर होता चला गया, एक पर्पज बना लिया फौज में जाना है। लेकिन ये भी एक हो गया था कि यार फौज में इसलिए नहीं जाना कि वर्दी पहननी, नहीं युद्ध लड़ना। अब युद्ध की ABCD नहीं मालूम लेकिन युद्ध लड़ने की ललक जागृत हो चुकी थी, बस उस चीज को जीने लगा वो। और जब हम जीते हैं तो वो तो आत्मा से जीते हैं, आत्मा तो परमात्मा का अंश होता है, और जब परमात्मा हमारे सपनों में शामिल हो गया तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि हमको उस सपने को साकार होने से कोई रोक सके। बस उस सपनों को जीता हुआ, बड़ा हुआ, 11th पास किया, 12th में आया ही था कि मैं भी फौज में भर्ती होकर के चला गया। मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था थी। और एक सबसे बड़ी चीज कि हमारे आदर्श कौन है। अभी आदर्श, मेरा आदर्श था 21 साल का वो नौजवान जो 1971 में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ता है, पाकिस्तान की पूरी स्क्वाडन को ध्वस्त कर देता है। शायद बहुत सारे लोग नहीं, आज के युवा तो शायद इनका नाम जानते ही नहीं, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, जिनके ऊपर वो पाकिस्तानी कमांडर भी गर्व किया और उसकी माँ के चरणों को छुआ बाद में कि माँ तूने बेटा नहीं शेर को पैदा किया था। तो वो जो आदर्श था बस ऐसा ही बनना था मुझे। और ये सच है कि जो हमारे इस मन मस्तिष्क के अंदर जिस रोल मॉडल की, जिस आदर्श की छवि यहाँ पे अंकित होगी, हमारा तो बिहेवियर वैसा ही बनेगा, हम तो ऐसे ही तो बनेंगे। सलमान खान होगा तो सलमान खान बनेंगे, ऐश्वर्या राय होगी तो ऐश्वर्या राय बनना है हमें। अगर हमें यहाँ कल्पना चावला हमारी जो ना रॉयल मॉडल है तो हम कल्पना चावला बनेंगे। अगर यहाँ पे भगत सिंह हमारा रॉयल मॉडल है तो भगत सिंह बनेंगे, क्योंकि परमात्मा ने ये तो मस्तिष्क दिया है, तो इतना एक अनोखा दिया है, यहाँ तो इतना अमृत भरा हुआ है। और वो अमृत की बड़ी खास विशेषता है कि जिस तरह की आपकी पिक्चर होगी अमृत, तो उसी तरह की आपके बॉडी के अंदर एनर्जी प्रवाह कर देगा, हम उसी तरह बनने लगते हैं, उसी तरह के सोच आने लगता, उसी तरह का बिहेवियर शुरू होता, उसी तरह का एटीट्यूड बनना शुरू होता है। बस भर्ती होकर के गया, ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग तो फौज की ट्रेनिंग तो आग की तप्त भट्टी होती है, आग जलाती नहीं आग पिघलाती भी है। अगर लोहे को आग में डालेंगे तो लोग बोलते आग जला देगी, नहीं, लोहा पिघल करके ही एक नई आकृति देता है। आप जितने सुंदर सुंदर आभूषण देख रहे हैं ये आग की तपत के कारण ही, उसी से वो नई आकृति बनती है। तो एक सिविलियंस को फौजी बनाना है तो उस आग की तप्त भट्टी में हमें 9 महीने तक तपाया गया, जो प्रशिक्षण दिया गया उनके ज्ञान से, उस तपन से एक नया भाव पैदा होने लगा, जागृत होने लगा, और 9 महीने आते आते आते पूरा एक फौजी के भाव में एक सिविलियन बच्चा परिवर्तित हो जाता है। उसके लिए पूरा राष्ट्र उसका परिवार बन जाता है, उसके साथी उसके परिवार के सदस्य बन जाते हैं, और इतना गहरा संबंध हो जाता है जैसे माँ और बच्चे का होता है। क्योंकि जब वो वर्दी पहनता है तो वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं है, वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास और भरोसा है, वो तिरंगे की आन बान और शान है। और उसी वर्दी को पहनकर तो एक सैनिक पल भर के अंदर हमारे लिए और हमारे देश के लिए, इस तिरंगे के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। ये भाव उस ट्रेनिंग से ही आते हैं, उस आग की भट्टी से ही आते हैं, उस एनवायरमेंट से ही आते हैं। तो उस वर्दी को पहन करके पहली पोस्टिंग जब कश्मीर में गया, आज एहसास होता गया नहीं था मैं, मुझे तो मेरे परमात्मा ने वहां पर भेजा था क्योंकि उस धरती पर कुछ दिन के बाद एक बड़ा युद्ध होने वाला था, और बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा बनना बहुत जरूरी होता है, ताकि छोटे छोटे युद्धों से कुछ सीख, कुछ ज्ञान, कुछ कौशल उसको मिले, ताकि वो इतना सशक्त और समृद्ध हो कि ताकि बड़े युद्ध का बिना पैर डगमगाए उसका सामना कर सके और उसको जीत सके।
5: योगेंद्र जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा और कुछ सवाल आपके यहाँ तक के जीवन से पूछना चाहूंगा, फिर हम आगे की कहानी जारी रखेंगे। आपने बताया कि आग केवल जलाती नहीं है, तपाती है, पिघलाती है, और पिघला कर के एक नए रूप में परिवर्तन करने का काम आग का होता है, और ये तो शायद आपके जीवन में बहुत बचपन से शुरू हो गया था, जब आपके घर को जला करके राख कर दिया, लेकिन आपके पूरे परिवार को उन्होंने आग ने एक बहुत उम्दा और बहुत ज्यादा ठोस किरदार दे दिया, जिसकी वजह से ना आपके माता पिता ने कभी हौसला छोड़ा, ना आप लोगों ने कभी हौसला छोड़ा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो कई बार ऐसा होता है जब आप सुनते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति फौज में गया और किसी ना किसी कारण से उनको कुछ ना कुछ लेट से अपाहिज हो गए हैं, या जीवन चला गया है, या कुछ नुकसान हो गया है, तो परिवार वाले जो है वो घबराते हैं किसी और को वहां जाने देने से। डेफिनेटली मोह होता है, अटैचमेंट होता है, और आपके पिताजी खुद फौज में थे, तो कभी उनकी तरफ से आपको ऐसा नहीं आया कि नहीं देखो मैंने फौज में काम कर लिया, आप लोग यहीं रहो, सिविलियन बने रहो? उनकी तरफ से कभी ऐसा नहीं है कि नहीं आपको खतरों में जाने की जरूरत नहीं? क्योंकि माता पिता जो होते हैं वो बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और आपकी माँ जो तरुण अवस्था में भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ती थी, खेत तक में आपके पास जाती थी, कभी उनकी तरफ से रुकावट नहीं आया कि भाई नहीं नहीं आपको फौज में जाने की जरूरत नहीं है, दो लोग ऑलरेडी जाके आ चुके हैं, आप यहीं रहो? कभी ऐसा सामना करना पड़ा आपको?
6: नहीं। हाँ, जब बड़ा भाई फौज में फर्स्ट बार गया, मुझसे 1.5 साल पहले चला गया था, तो पहली बार जब बड़ा भाई गया घर से, जब तो उनको थोड़ी सी करुणा हुई और थोड़ा सा ये हुआ कि अब उनको वो चीज की करुणा नहीं हुई कि ये सेना में चला गया, उनको ये हुई कि घर से दूर चला गया, अब इस घर का किस तरह से आर्थिक स्थिति या घर कैसे चलेगा, क्योंकि बड़ा भाई ही घर का जो है पूरा जो भार ले रखा था चलाने। तो मैं उनको समझाया, मम्मी कोई बात नहीं, वो चले गए हैं, कोई बात, जितना वो अन्न पैदा करते थे ना उतना अन्न पैदा करके मैं दिखाऊंगा। अच्छा, मैंने वो काम किया, कमिटमेंट किया, तो माँ को कमिटमेंट पूरा करके दिया, लेकिन जब मैं जाने लगा फिर उनको करुणा ये हुई कि अब छोटा भाई है, वो तो इतना नहीं कर पाएगा, तो अब कैसे घर चलेगा? मैं कहा माँ, बड़े भाई की तनख्वाह आने लगी है, ज्यादा काम करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, अब धीरे धीरे धीरे धीरे कम कर दीजिए काम, और ये जो है जो डर है कि अब घर नहीं चलेगा, मैं कहा अब घर और ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसको ऐसे देखो, देखो जिस दिन से भाई भर्ती हुआ उस दिन से हमारी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति सुधर गई है, अभी दो भाई दो बेटे आपके जब काम करेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली जो है ज्यादा आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी, तो छोटे भाई को हम और अच्छे से पढ़ा पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। बस था थोड़ा सा, लेकिन बोला ये फौज में मत जा, पुलिस में चला जा। मैं पुलिस में क्यों चला जा? नहीं, वहां से बहुत दिन दिन के बाद में छुट्टी आते हैं, इतनी दूर रहना पड़ता है। मगर नहीं नहीं नहीं, मगर फौज के सेवा मुझे कहीं और जाना नहीं। तो जब भर्ती निकली थी तो बड़ा भाई छुट्टी आया हुआ था, तो पिता ने भाई ने दोनों ने बोला भर्ती देख ले जाकर के मेरठ में। मगर नहीं, मैं 12th कर लेता हूँ उसके बाद जाता हूँ। बोले नहीं, देख करके ट्राई मार करके आ। माँ को बड़ा विश्वास होता है क्योंकि बच्चे की हर चीज का उसको मालूम होता है, उसकी स्ट्रेंथ का भी मालूम होता है, उसकी कमजोरी का भी मालूम है। माँ ने बोला इसको मत भेजो, ये पहली बार में भर्ती हो जाएगा। तो भाई भी फादर भी दोनों ने बोला हाँ हाँ, इसके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से वैकेंसी निकाल करके रिजर्व करी हुई है। नहीं, बोला जाने दे इसको, देख के आने दे। और सच में माँ का कहा पूर्ण हुआ, और जब पहली बार जब मैं गया भर्ती हो तो पहले दिन फिजिकल हो गया, अगले दिन मेडिकल हो गया, फिर रिटर्न टेस्ट की आया तो रिटर्न टेस्ट हो गया, तो माँ ने तुरंत कहा, बोला देखा मैंने कहा नहीं था इसको मत भेजो, अभी ये भर्ती हो जाएगा। और मैं भर्ती हो गया।
5: और ये जो जान जाने का जो डर होता है, किसी प्रियजन को खो देने का डर होता है, ये एक माँ के लिए सबसे ज्यादा होता है मैं समझता हूँ ऐसा। इसका कभी आपकी माँ ने कभी जिक्र किया आपके साथ?
6: नहीं, इसका जिक्र नहीं किया, कभी नहीं किया हमसे। और हमने भी जो है ये तो इतनी तो समझदार थी, थोड़ा सा आध्यात्म से जुड़ी हुई थी, तो बोला मरना तो है
5: तो किसी अच्छे काम के लिए ही जीवन
6: अच्छे काम के मरो, अभी देश के लिए अगर मरना है देश के लिए मरो, तो वो मरना नहीं होता, वो अमरता होती है, वहां पे अमरता मिलती है।
5: ये जो बात आपकी माँ ने आपके जरिए आज हम तक पहुंचाई, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा महामंत्र है कि मृत्यु का भय उनको ही होता है जिनको अमृतत्व का, या गीता में जो कहा है कि भाई आप नश्वर आत्मा है, आपका नाश हो ही नहीं सकता, इस चीज को जो समझ लेता है वो अपने जीवन के साथ बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, नहीं तो हर पल वो डर डर के जीता है कि कुछ हो ना जाए कुछ हो ना जाए। आजकल के पेरेंट्स या आजकल के नौजवान जो फौज में जाना चाहते हैं या थोड़ा सा भी उम्मीद है उनको कि मैं कुछ और करूं, उनके लिए ये आध्यात्मिक सीख कैसे पहुंचाई जाए उन तक और कैसे उनको ये ट्रेनिंग मिले? क्योंकि आपका परिवार पहले से आध्यात्मिक था तो आप अभिमन्यु की तरह वो लेकर के आए अपनी माँ के कोख से, लेकिन बाकियों के लिए क्या?
6: देखिए बाकियों के ये हमें समझना पड़ेगा, आज के जो पेरेंट है मॉडल मॉडर्न हो गए, मॉडर्न हम पश्चिमी सभ्यता को बहुत ज्यादा अपनाते हुए चले जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता में डर है, लेकिन हमारी जो हिंदुस्तानी सभ्यता है वो आध्यात्मिक सभ्यता और उसमें डर ही तो समाप्त होता है। हम अपने किसी जीव का बीजारोपण कर रहे होते हैं, तो बीजारोपण एक आप किसान से सीखो, वो पहले खेत को तैयार करता है, उस मिट्टी को इतना तैयार करता है, उसको मालूम हो जाता है अब इसमें अगर बीज गिरेगा तो डेफिनेटली जो है वो बहुत अच्छा पौधा बन करके बाहर आएगा, और जब पौधा अच्छा होगा तो उसमें फल भी अच्छे होंगे। वहां हमारा डर थोड़ा थोड़ा समाप्त है। हम शुरुआत से जब अपनी तैयारी करें, आध्यात्म से जुड़ करके तैयारी करें, तो आध्यात्म ये सिखाता है, बताता है कि यार ये कपड़ा है, शरीर नहीं है, ये कपड़ा है, और ये जैसे कपड़ा फटता है गलता है, ये शरीर तो इसी तरह से है। हम ये चीजें जब ही आएंगी जब हम इस आध्यात्म से जुड़ेंगे और उनको ये एहसास होगा।
5: ये आपने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया कि कैसे किसान प्रिपेयर कर लेता है, या एक छात्र जो प्रिपेयर कर चुका है उसको एग्जाम से डर नहीं लगेगा, लेकिन जिसने प्रिपरेशन ही नहीं किया उसको तो हर दिन उसका दिल दुख दुख दुख दुख करता रहेगा कि पता नहीं क्या हो जाए क्या हो जाए। ये वाकई में बहुत ही सरल भाषा में आपने बताया कि प्रिपरेशन जो है, जो तैयारी है, और वो तैयारी अगर आध्यात्मिकता के आधार से है तो आप किसी भी फील्ड में बिल्कुल ही डर के बगैर एकदम साहस के साथ आगे बढ़ेंगे और उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी
6: जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रिपरेशन हमें अभ्यास सिखाती है, प्रिपरेशन में तो अभ्यास है, और अभ्यास वो ताकत है, वो कला है जो हमारे अंदर वो दृढ़ता पैदा करती है और दृढ़ता विश्वास को पैदा करता है। आप देखिए, आप जब कभी किसी झरनों के पास में जाते हो तो कोई एक पानी की धार सीधी पत्थर पर गिरती रहती है और

0: पहले ही आगे होंगे ही नहीं, तो वो और ज्यादा प्रभाव आपके अंदर डालेंगे। और जो अगर आप गए क्वेश्चन पेपर आपके पास सामने है और क्वेश्चन आ रहे होंगे लेकिन माइंड के अंदर तो वो घूम रहा होगा यार नहीं आता है, तो आपका जो है जो अवचेतन मस्तिष्क से जितनी ताकत आपको देना चाहिए था वो आपको नहीं देगा। अगर घर से सोच करके चले यार आज जो भी आएगा उसको मैं सबको करके आऊंगा, तो वो भाव जब वहां पहुंचेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो सब आता तो है, हाँ ठीक है ये भी आ गया, तो वो भाव की ताकत होती है सर। ऐसे ही एक सैनिक का है, सैनिक जब बॉर्डर पे खड़ा है उसके हाथ में भी बंदूक है, सामने वाले के भी बंदूक, दोनों के हाथ में, दोनों इंसान है। अगर उसके सैनिक के भाव में ये है कि यार मेरे हाथ में जो बंदूक है और अगर उसने थोड़ा सा भी कुछ किया तो मैं सीधा पहले उसको मार दूंगा, और उसको अगर बंदूक भी लेकर के खड़ा है फिर लगे यार नहीं वो मेरे ऊपर गोली तो नहीं चला देगा, मुझे ये तो नहीं कर देगा
1: जी,
0: तो उसके अंदर डर के भाव आए। तो ये डर के भावों को खत्म करने का जो तरीका है, जो एक क्रिया है, वो ये है कि हम प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, और अभ्यास करते करते करते करते हर चीज का जो है जो हमारी नकारात्मकता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि नकारात्मकता जब ही आएगी कि जब हमारे अभ्यास हमने नहीं किया है। अभी मुझे बोला जाए चल यार क्रिकेट की जो है तू यार बॉलिंग कर, मेरे हाथ में जो क्रिकेट की बॉल आएगी मेरे से तो हाथ कांपेंगे क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, तो अब मेरे हाथ में बंदूक आएगी तो मुझे कॉन्फिडेंस है यार इस बंदूक को तो मैं चला सकता हूं, तो वहां पे आपके अंदर नकारात्मकता नहीं आएगी, आपके अंदर कहीं वहां पर कुछ भी ऐसे भाव नहीं आएंगे जो आप उस काम को ना कर
1: अभ्यास किया है।
0: हाँ, यस,
1: करत करत अभ्यास के जड़मति को सुजान, तो वैसे ही अगर अभ्यास करते रहेंगे तो आत्मा में वो बल आएगा, अभ्यास का बल आएगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जब आप कश्मीर में पहले पहुंच गए और आपको पहले से अंदाजा अंदर से आने लगा कि मुझे प्रिपरेशन करने के लिए, अभ्यास करने के लिए भेजा गया है ताकि इस अभ्यास से मैं किसी बड़े युद्ध में एक अहम भूमिका निभा सकूं, फिर
0: बिल्कुल, क्योंकि वहां तो 1990 से कश्मीर की धरती पर तो आतंकवादियों ने एक बड़ा मानवता को नुकसान पहुंचाने का जो एक वो तांडव मचा रखा था, तो उस युद्ध का हिस्सा बना, उग्रवादियों के साथ दहशतगर्दों के साथ वहां पर युद्ध लड़ते रहे, समय व्यतीत होने लगा, बहुत सारे जो टेररिस्टों को मारने का मौका भी मिला, एक कट्टरपंथा आने लगी अंदर से, जब ये मार सकता है तो मैं भी मार सकता हूँ, तो वो जो कट्टरपंथा है वो किसके प्रति है, लोगों के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने साथी के प्रति है। जिस तरह से जब माँ होती है तो माँ के अगर बच्चे को किसी ने पीट दिया है माँ आग बबूला हो जाती है, माँ खुद चाहे कितना ही पीट ले लेकिन अगर किसी दूसरे ने पीटा है तो आग बबूला हो जाती है।
1: ये बहुत अच्छा बताया कि माँ खुद चाहे कितना पीट ले वो और बात है, कोई और हाथ उठाए या कुछ बोल भी दे तो माँ उसके सामने दुर्गा का रूप बना लेती है। बिल्कुल
0: बिल्कुल, तो ये ही एक भाव था कि अब जो साथियों के साथ जो एक रिलेशन ऐसा बना, तो नहीं यार मेरे साथी को अगर किसी ने कुछ हो गया ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और फिर इसी भाव में सर जीते जीते थे, धीरे धीरे समय तो अपनी एक धारा से बहता है, समय की अपनी एक धारा है, और ये सच भी है कि जो इस समय की धारा के भाव में बह रहा, धारा के साथ साथ बह रहा, तो ये धारा उसको उसके गंतव्य स्थान तक ले जाती है। लेकिन ये भी है अगर आप रुक गए किनारे को पकड़ करके, धारा नहीं रुकेगी, धारा तो निरंतर बहेगी, आप वहीं पर खड़े रह जाए, तो इस समय बहुत कुछ सिखाता हुआ आपको लेकर के जाता है, तो वहां पर बहुत कुछ सिखाया। वर्ष 1999 में आता, किसी को भी नहीं पता था कि इस समय की धारा में क्या होने वाला, सब उस समय के साथ साथ चलते जा रहे थे, और फौज इस समय की धारा का बहुत अच्छे से उपयोग करती है, वो हर समय समय के साथ कुछ ना कुछ सीखती रहती है, अपनी ट्रेनिंग करती रहती है। ऐसा नहीं है कि आप जो है अगर यहाँ मेरठ में या आप जो है राजस्थान में बैठे हो तो आपको कश्मीर की प्रिपरेशन नहीं होगी, आपको हर जगह की प्रिपरेशन होगी, क्योंकि मानव शरीर की जिस तरह की अलग अलग अंग हैं और हर अंग का एक अलग काम, वैसे ही इस देश की जो भौगोलिक स्थिति है, कहीं पर -50 डिग्री टेम्परेचर है तो कहीं पर 55 डिग्री टेम्परेचर है, कहीं पर जंगल है तो कहीं पर दलदल है, तो कहीं पर नदी है तो कहीं पर कच्छ है,

0: आपको तो परमानेंट एक जगह नहीं रहना होता है, एक हाथ को एक काम नहीं करना होता है, इससे पत्थर भी तोड़ने होते हैं, इसको जोड़ना भी पड़ता है, इन पैरों से एक ही काम नहीं करने पड़ते, चलना ही नहीं पड़ता, इन पैरों को दंडवत भी करना पड़ता है। तो ये चीजें अगर इंसान समझ ले कि यार आंखों से देखना ही नहीं है, आंखों से हमें शीतलता भी मिलती है, तो वो चीज फौज बड़े उससे करती है। तो फौज हर तरह की ट्रेनिंग हर समय करती रहती है। हम कश्मीर में थे, लेकिन कन्वेंशन ऑफ वार जो एक दूसरे दो देशों के बीच में होती है, उसके लिए भी प्रिपरेशन चल रहा था। ये अप्रैल मई का महीना था, अचानक से युद्ध छिड़ गया था। उस समय मैं छुट्टी पे आया, मेरी 1 मई 5 मई की शादी थी, 1 मई को मैं छुट्टी आया, और मैं 20 मई को जब वापस लौटा तो तब मुझे खैर शादी की फर्स्ट नाइट ही आभास हो गया था। मैंने अपनी वाइफ पेरेंट्स को बोला कि आज मुझे कुछ दिखाई दिया। बोला क्या दिखाई दिया? मुझे ये लगा कि कोई हमारे तिरंगे को लेकर के भाग रहा है और हमारे जवान उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, गोलियों से छलनी हो रहे, लेकिन तिरंगे को नहीं छोड़ रहे। तो सभी को ये लगा कि यार मैं कश्मीर में है तो वहां के भाव आपके आगे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस समय तक रेडियो ही ज्यादा जो है कम्युनिकेशन का या मनोरंजन का साधन यही रेडियो ही होती थी, या न्यूज पेपर होते थे, टीवी बहुत कम थे उस टाइम। बोला नहीं, ऐसा तो कुछ न्यूज भी नहीं आया है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस फिर अपने शादी शादी के बाद उस समय रवि की फसल कट रही होती है, गेहूं कटते हो, फिर गेहूं की खेती का उसका पूरा अनाज को निकालना, भूसा को भरना, उसमें ही बस पूरा छुट्टी खत्म। 20 तारीख को जब मैं जम्मू पहुंचा तो वो सपना साकार हो गया मेरा। एक अंदर से बेचैनी थी कि कुछ हुआ है, लेकिन उस बेचैनी का कहीं पर भी कुछ अभी सत्यार्थ नहीं हो पा रहा था, लेकिन जम्मू पहुंचा तो वहां सत्यार्थ हो गया। कि जो है जैसे ही पहुंचे तो अनाउंसमेंट हुआ कि 18 कैनेडियंस के जो जवान आज छुट्टी काट करके आए, तुरंत अपने कागज जमा करें, डॉक्यूमेंट्स को जमा कीजिए और सुबह आपकी गाड़ी श्रीनगर के लिए रवाना हो जाए। क्या हुआ है? हमने पूछने की कोशिश करी क्या हुआ है? नहीं, वो कारगिल के अंदर युद्ध छूट गया। आज मैं बड़ा सुकून भी पाता हूं कि जो जिस चीज को मैं 6-7 साल से जी रहा था, आज वो सपना साकार। ऐसे लगने लगा कि ये रात को क्यों गाड़ी जा रही है, अभी चली जाए, अपने साथियों के पास पहुंचना है, शायद मेरा साथी मेरा अकेला होगा, उसको सहारा दूंगा। खैर वो हो नहीं सकता था। सुबह के समय 4:30 बजे वहां से हम चले, श्रीनगर पहुंचे शाम को, वहां से फिर अगले दिन यूनिट के लिए रवाना हुए। लगभग मैं 22-23 तारीख को यूनिट में पहुंचा। जिस दिन मैं पहुंचा यूनिट में तो द्रास सेक्टर में मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स तोलोलिंग टॉप के ऊपर युद्ध लड़ रही थी। जो ये कारगिल वार मेमोरियल है, इसके जस्ट पीछे वाली जो पहाड़ी है वो तोलोलिंग टॉप, तो उस पे हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा सर। और 22 दिन में हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप उन्हें प्राप्त किया था। उसके बाद जैसे ही हम वो जीत हासिल करके जब नीचे आए तो बहुत कुछ खो गया था हमारा। सफलता मिली, जश्न था, मन में खुशी थी, लेकिन एक दुख भी था कि मेरे साथी, हमारे साथी जो अभी 10 दिन पहले हमारे साथ थे, आज एक एक करके जो है वो चले गए। लेकिन हाँ, उनके लहू की बूंद, उनके कार्य की वो जो उन्होंने किया उसको साकार हो गया, ये भी भाव आने लगे, और कि कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ेगा। और शायद उन्होंने उस जीत की वो नींव अपनी जान देकर के रखी कि अब इस जीत के ऊपर, ये जो हमारी नींव है इसके ऊपर एक जीत का ऐसा मीनार बनेगी जो सदियों तक शायद वो याद रखी जाएगी। सर हम नीचे आए, नीचे आने के बाद इस तरह की कंडीशन थी हर एक व्यक्ति की, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, ना ब्रश किया था, खाना तो बहुत कम कभी कभी मिलता था, फिर शकल नहीं पहचान रही थी, पूरे काले पड़ गए थे चेहरे, -20 डिग्री टेम्परेचर था उस टाइम, पूरा चेहरे फटे हुए, बड़े मुश्किल से तो हम एक दूसरे को पहचान पा रहे थे। फिर कोई नहाने का तो कोई काम ही नहीं था। तो नीचे आए तो वहां एक द्रास नदी बहती है, बहुत शीतल पानी है, उसका जल है, तो उसमें एक एक मुंडक मारी, तो उसने स्नान किया 22-24 दिन के बाद, फिर एक दो दिन, फिर अपने इक्विपमेंट, फिर हमारा वही काम, अपने ट्रेनिंग में लग गए, वेपन का, इक्विपमेंट का, खुद का, फिजिकल, मेंटल, ये तमाम ट्रेनिंगें शुरू हुई। फिर अचानक से फिर आदेश मिला टाइगर हिल को कैप्चर करना है, तो टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए एक विशेष टीम का गठन शुरू हुआ, क्योंकि वो एक घातक और कमांडो टीम है, उसमें ऐसे जवान फिजिकली और मेंटली वाले जो बहुत स्ट्रांग हैं, वो बंदे चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन भी कम है वहां पर 17,000 फीट हाइट। तो फिर सर कुछ नए जवानों का चयन शुरू हुआ। ये आज बात समझ में आई कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं होती है, व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है,
1: उसके अंदर छिपे उस लाइट से होती है, उसके अंदर छिपे उस उजाले से होती है, जो कि हर एक में यूनिक है। और जो आपने कहा कि आपका रैंक, आपका तमगा और आपकी पढ़ाई या जो भी है, ये सबसे बहुत ज्यादा आगे है, वो एक अंदरूनी अनुभव जो केवल व्यक्ति महसूस कर सकता है, जिसको कोई रिपोर्ट कार्ड में नहीं लिखा जा सकता।
0: बिल्कुल, उसको ये आंतरिक भाव होते हैं कि मैं, मुझे जो काम मिला है वो मैं कितनी शिद्दत के साथ, कितने होश के साथ कर रहा हूँ। वो 22 दिन जो हमने तोलोलिंक पे लड़ाई लड़ी थी, उसमें 15 जवान थे, और हमारा काम क्या था, हमारा काम था कि जो नीचे से ऊपर जो फॉरवर्ड में जवान लड़ रहे हैं, उनको राशन और अमनेशन पहुंचाना था। 22 दिन सुबह 5:30 बजे से सामान उठाते थे, रात को 2:30 बजे पहुंचते थे, लगातार दिन भर दुश्मन के गोलाबारी चलते थे। और जब हम पहले दिन, जाहिर है कि डर लगना लाजमी था कि जब जहां से आप सामान लेकर के 25-30 किलो चल रहे हो ऊपर की तरफ, पता नहीं आपको किधर दुश्मन है, कहां क्या, कौन सा आर्टिलरी का गोला आपके ऊपर आकर के गिरेगा, नहीं पता। लेकिन दूसरे दिन जब ऊपर में पहुंचा तो ये आभास हुआ, यार ये बंदा जो लड़ रहा है ना आगे, ये मेरी बदौलत लड़ रहा है, क्योंकि मैं इसको समय से अगर अमनेशन, राशन और इक्विपमेंट नहीं दूंगा तो ये कहां से लड़ पाएगा। जैसे एक इंसान का शरीर तो है, लेकिन अगर आत्मा या उस भगवान की शक्ति उसके अंदर नहीं है, तो शरीर तो बिल्कुल निष्क्रिय है। तो यार मेरा जो साथी है, वो उसका शरीर है, वो काम तब करेगा जब मैं उसके पास पहुंचाऊंगा कुछ। तो मेरा दायित्व तो बनता है कि यार मुझे उसको कंटिन्यू लगातार उसके साथ खड़ा होना है, उसको हर चीज की सपोर्ट करनी है ताकि वो लड़ सके। सर 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चले। उसी काम से हमारी पहचान बनी कि ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इनको इस कमांडो टीम में शामिल किया गया। उससे पहले तक मेरी कोई पहचान नहीं थी, बस इतना था कि 18 यूनिट का एक जवान है, इंडियन आर्मी का एक सैनिक है। उसने मेरी काम की पहचान बनाई और उस पहचान से फिर उस टीम का हिस्सा बना, और फिर उस टीम को तो उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर सबसे पहले हमला करना था, और ऐसे दुर्गम रास्तों से ऊपर चढ़ करके जाना था जहां से पाकिस्तान की फौज ये अंदाजा भी ना लगा सके कि यहां से भी कोई चढ़ करके ऊपर आ सकता है। बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान। तो 2 दिन 2 रात उस पहाड़ी पर चढ़ते रहे, गोलाबारी को पार करते रहे, चेहरों से खून टपक रहा था, लेकिन कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके बिना डरे उस पहाड़ी के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। 3री रात का वो मंजर तो आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद कल की ही कोई बात है। सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियां फेंकी, रस्सियों के सारे चढ़ना शुरू किया, एक नई राह, एक नई उम्मीद जगी कि रस्सियों से चढ़ सकते हैं। रस्सियों से जब चढ़ने लगे तो पत्थर कुछ गिरने लगे, दोनों तरफ उनके बंकर के अंधेरे से नहीं दिखाई दिए, उन्होंने अचानक फायर खोल दिया। फायर खुला तो हमारी जो टीम थी 21 जवानों की, उसका रास्ता कट ऑफ हो गया और हम केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो थोड़ा सा प्लेन स्पेस, फिर दुश्मन का बंकर, हम 7 जवानों ने आधा धुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतारा। फिर क्योंकि टॉप बहुत करीब आ गए थे, टॉप पर, और टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150 और हम केवल 7, लेकिन बिना डरे बिना रुके साहस के साथ धैर्य के साथ विश्वास के साथ लड़ते, और लड़ते लड़ते लड़ते सर फिर ऐसी परिस्थितियां आई कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तो हेड शूट है, मरना निश्चित हो गया। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओ को, ये माओ का ही श्रेय है, माओ का ही वो संस्कार है, माओ का ही वो पालन पोषण है कि जो अपने बेटे और बेटियों को इस तरह से तैयार करती हैं कि जब देश के ऊपर कुछ विपत्ति आए तो अपने बेटे और बेटियों को तिलक कर करके भेजती हैं। वो कहती है कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। हर माँ अपने बच्चे को, क्योंकि हर माँ के लिए वो बच्चे सूरज और सितारे होते हैं, चांद तारे ही होते हैं, और हर माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा वीर बने, कायर नहीं। तो इसीलिए वो कहती है कि सीने पे गोली खाना, पीठ पर नहीं। ये भारत माँ के बेटे और बेटियां माँ के वाक्य को सार्थक करने के लिए सीने पर गोलियां खाते, कभी पीठ पर गोली नहीं। और फौज के अंदर भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, बहुत अच्छा एक एडवांस विड्रॉल नहीं। यहां मैं चीज बताना चाहूंगा कि ये आता कैसे है सर। जब हम कभी एक्सरसाइज या अभ्यास कर रहे होते हैं, कोई हमें नदी के पार हम जाकर के कुछ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो जाएंगे नदी पार करके किससे, नाव से, फिर उस नाव को जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं किसी के मन में ये लगे कि यार अब मैं अकेला बचा हूं, अपनी जान बचाऊं, और मेरे पास साधन तो है, नाव से तैर करके पार चला जाऊंगा, वो भावी खत्म कर देंगे, वो संसाधन ही खत्म कर दे। यही मरना है, यही लड़ना है, यही तेरे साथी है, तो वो दिख डरता। एडवांस शब्द है, विड्रॉल नहीं है। फिर इतने तो समझदार थे कि यार इस धरती पे आए हैं, मृत्यु तो निश्चित है, मरेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, सिंघनिया और शेर की तरह लड़ेंगे, क्योंकि भारत माँ ने और हमारी माओ ने हमें तो सिंघनिया और शेर ही पैदा किया, गीदड़ पैदा नहीं किया। फिर उसी भाव से सर हम लड़ते रहे, 5 घंटे हो गए थे लड़ते लड़ते, कोई सपोर्ट नहीं था, चारों तरफ से आइसोलेट हो गए थे। तो 5 घंटे के बाद फिर ऐसे दृश्य भी सामने आए जो आज तक ये शायद श्रोताओं ने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को देखा नहीं अच्छी आत्मा। मुझे वो पल याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहू लुहान था और नाक से खून की धार बह रही थी, ठीक मेरे सामने मेरा साथी बैठा हुआ था, मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, इसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल कर तो बाहर हो जाता। उसका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोला। फिर ऐसी मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी, मैं उसको बोला, अनंत राम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर के लेट जाता। एक साथी आगे बढ़ा, वहीं पर एक बम गिरता, उसकी यहां से गर्दन कट करके जमीन पर गिर गया, चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें। एक रात से बिना सर के वो धड़ 2 कदम तक चला और गिर पड़ा। लेकिन गर्व ये था, इस धड़ पर सर नहीं था लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। और साथी फिर आगे आया, एक और बम वहां पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। ये शरीर के अंग कट करके जब जमीन पर गिरते हैं, किस तरह से उछलते हैं, तड़पते हैं, कुछ शब्दों में बयान नहीं। इस तरह से एक एक करके मेरे तमाम साथी शहीद, मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था, हल्की हल्की बेहोशी आने लगी। उनका एक कमांडर था, उसने बोला इनको रिचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। पाकिस्तान के जवान जब हमारे जवानों की बॉडियों में आकर के गोलियां मारने लगे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी। उसने जब सामने वाले को मारा उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा उसकी उछली। मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, फिर पैर में मारी तो पैर से धुआं निकल रहा। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सकता, उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। फिर तो उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों के शरीरों में भूत की ठोकरें मारने लगे, पत्थर मारने लगे, गालियां देने लगे। ये सब कुछ मैं बड़ा सहता रहा, देखता भी रहा, बहुत देर हो गई। और ये चीजें जो हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं, ये तभी पहुंच पाते हैं जो हमारा पर्पज होता है, पर्पज से पैशन होता है, और पैशन से ही परफॉर्मेंस आता है। ये आपकी परफॉर्मेंस की पराकाष्ठा है। और फिर लोग आज मुझे बोलते हैं, यार उस समय दर्द नहीं हुआ। दर्द तब होता है जब मन इस शरीर के साथ में होता है, क्योंकि मन से दर्द होता, शरीर से कोई दर्द नहीं होता। मन तो शरीर के साथ था ही नहीं, मन तो लक्ष्य पर केंद्रित था। तो शरीर में जो भी मार रहे थे तो कोई पीड़ा हुई नहीं। सर फिर थोड़ी देर के बाद उनके कमांडर ने फिर बोला कि नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर डालो और इनके हथियार उठा लो। उनका एक जवान आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगा, एक हथियार उठाने लगा। तब मन के अंदर फिर भाव जागृत हुए, यार आज मेरी पूरी टीम खत्म हो गई। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा सकूं। ये सत्य है, अगर निस्वार्थ भाव, सच्चे श्रद्धा, सच्चे समर्पण के साथ हम उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं तो वो शक्ति तो साक्षात हमारे सामने आती है। और मैं बच्चों को उदाहरण भी देता हूँ, यार तो आप लोग महाभारत देखा होगा आपने। महाभारत के अंदर आपने वो दृश्य देखा था कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने जब तक अपने कपड़ों को पकड़ करके, अपनी साड़ी को पकड़ करके कृष्ण कृष्ण पुकारती रही थी, लेकिन कृष्ण नहीं आए थे। और जैसे ही उन्होंने अपने चीर को छोड़ करके दोनों हाथों समर्पण किया, एक पल नहीं लगाया था और कृष्ण ने उनके आकर के चीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। समर्पण करो तो इस पराकाष्ठा से करो। उस समय मैं अपने आप को पूर्ण रूप से उस ईश्वर को समर्पित कर चुका था। सर फिर वो नजदीक आए, नजदीक आने के बाद तो फिर एक मन के अंदर एक विश्वास को जागृत किया, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। फिर आज मैं बच्चों को फिर वही चीज बताता हूं कि यार ये कमिटमेंट, जब हम अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, आप इस कमिटमेंट की पावर नहीं जानते। फिर आपको बका वही महाभारत का आपको एग्जाम्पल देता हूं कि उसमें एक पात्र थे पितामह भीष्म। उन्होंने जीवन में प्रतिज्ञाएं ही तो करी थी, उन प्रतिज्ञाओं की बदौलत उन्होंने अपनी इंद्रियों ही नहीं बल्कि अपनी मृत्यु को भी अपनी मुट्ठी में बांध लिया था। अर्जुन ने इतने बाण मारे थे कि पूरा रोम रोम बिंध गया था, लेकिन उनके प्राणों को नहीं हर पाया था। तो आपके प्राण आपकी मुट्ठी में हो सकते हैं अगर आप अपने आप से कमिटमेंट करें। तो सर वो कमिटमेंट ही था कि वो जब गोली मारता हुआ आया, उसने लास्ट में फिर भी बाजू में पैर में गोली मारी, दो, मैं देख रहा था, उसकी आंखें खुली थी, देख रहा था। वो दो कदम चला और रुक गया। तब लगा थोड़ा सा, यार अब शायद नहीं बचेगा। फिर इसको मालूम पड़ गया है कि मैं जिंदा हूं। और उसने पल भर नहीं लगाया, वापस मुड़ा, एकदम से राइफल ऐसे सीने की तरफ करी। तब तो लगा यार अब तो मुश्किल है, लेकिन अंदर से एक विश्वास भी था कुछ नहीं होगा। और सच में जाको राके साइया मार सकी ना कोई, कहते हैं। और इस धरती को, इस धरा को भारत माँ बोलते हैं। और ये सच में माँ है। इस भारत माँ ने आज तक अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन नहीं होने दी। तो शायद वो अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम को, बलिदान को दफन ना हो जाए तो शायद किसी को माध्यम तो चुनती है, शायद मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स रखा था, क्योंकि तो पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते। उसमें कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे, शायद वो एक साथ इकट्ठे कर दिए होंगे। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पर लगी और रिकोचिट हुई। गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से लगा, मैं मर गया। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने आकर के हथियार उठा करके जब जा रहा होगा तो उसका पैर शायद मेरे पैर से टकराया। तब मुझे एकदम से चेतना आई, लगा मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, उसके ऊपर फिर हैंड ग्रेनेड से हमला किया, उसका यहां से सिर उड़ा, वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। वही एक मौका था, मैंने दोनों हाथों से राइफल उठाने की कोशिश करी, लेकिन साथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से राइफल उठाई, वहां से फायरिंग किया, फिर उनके तीन चार बंदों को मौत के घाट उतारा, इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, चार पांच जगह से फायरिंग किया। तब उनको ये आभास एहसास हुआ कि इनमें से जिंदा नहीं है, नीचे से भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ी ऊपर चढ़ाई है। फिर उनके सर पैर उखड़ गए, हौसले परस्त हो गए, भाग खड़े हुए। चार पांच मीटर तक मैं खिसकता रेंगता फायर करता हुआ आगे गया। चार पांच मीटर जाने के बाद देखता हूं सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए, उनके वेपन की डिप्लॉयमेंट, सब कुछ छोड़ करके भागते चले जा रहे। बहुत देर वहां पे पड़ा रहा। फिर मन मस्तिष्क के अंदर फिर पागलपन छाया, योगेंद्र तुझे तो नीचे जाना है, अपने साथियों को बचाना। सर फिर हिम्मत को बटोरा, फिर धीरे धीरे खिसकता खिसकता अपने उन साथियों तक आया जहां पर वो शहीद हो रखे थे। इतना ही मैं चल पाया। फिर लगा मन में अंदर भाव आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है मेरी तरह। आकर के एक एक को देखने लगा तो किसी का ये सर निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। चारों तरफ डेड बॉडियां ही डेड बॉडियां पड़ी हुई थी। 19 साल का लड़का जिसकी 2 साल की सर्विस, जिसको ये पता नहीं कि इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहां जाना। जिधर भी देखता उधर पहाड़ और बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आता। फिर एक एक को गोद में रख करके रोता रहा बहुत देर। हो जब हम रोते भी हैं और जब मन से और आंसुओं से शायद हम रो रहे होते हैं, तो रोना भी एक थेरेपी है, कोई कायरता नहीं है। ये भी हमें अपने आप से जोड़ती है। हम क्या हैं? वो हम तो सोल हैं, हम शरीर नहीं हैं। और जब हम उस परमात्मा से जुड़ते हैं तो जीवन बड़ा हल्का फील होता है। आज हम उससे डिसकनेक्टेड हैं इसलिए जीवन बहुत भारी पन लगता है।
1: बिल्कुल
0: सर, मैं रोते रोते जब अपने आप से कनेक्ट हुआ तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, जब परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हुआ और तुरंत आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस न्यायालय से नीचे की तरफ चल। बस मैं लुढ़क गया नीचे, रास्ता दिखा चला गया उसको नीचे। 500 मीटर लुढ़कता रोल करता ऐसे नीचे आया, एकदम से ऐसे पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था, एकदम गड्ढा। तब थोड़ा सा भाव चेंज हुआ, यार तू पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया। नीचे देखा तो मेरे साथी थे, उनको फिर आवाज दिया, वहां से उठा करके लेके गए, पूरे कपड़े के चीथड़े हो गए। कोई कह नहीं रहा था कि जो है ये जिंदा रहेगा, मेरे अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूंगा। मैं उनको बोला सर मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लूं, ऊपर वाले सब शहीद। ये दिन के 1:30-2 बज रहा था। पीछे कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया, कमांडिंग ऑफिसर ने बोला इस लड़के को जल्दी से मेरे पास पहुंचाइए। कोई साधन संसाधन नहीं था, कंधे पे डाल करके जवान मुझे पीछे की तरफ लाने लगे। 7-8 बज गए शाम के, अंधेरा हो गया था, दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। तो उनके पास पहुंचा तो बोला कुछ बताएगा बेटा, मेरे को पहचानता है साहब, दिखाई कुछ नहीं दे रहा, इतना लहू बह गया था। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, मत जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। तो उन्होंने फिर अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, अभी जबान अटने लगी थी बारूद की वजह से, साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। बोला पानी तो नहीं मिले, इतने सारे डॉक्टर ने सुन लिया होगा। डॉक्टर दौड़ करके आया, उसने बोला मैं थोड़ा सा पिलाता हूँ। उसने ग्लूकोज पिलाई, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। बोला कुछ बताएगा सब? तब उनको तमाम इंफॉर्मेशन ऊपर के घटनाक्रम से अवगत कराया और फिर लास्ट में बोले जवान की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? मैं कहा साहब जवान की रिक्वायरमेंट अमनेशन और फील्ड पर टेकी है, खाने के लिए पर्याप्त मिलता है, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर एक पिता तुल्य होता है और माँ और पिता को बच्चे के खाने की बहुत थी। सबसे पहले वो खाने के बारे में पूछते, तूने खाना खाया कि नहीं? खाना मतलब सर खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती है, 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया। ये पार्ले जी वाले बिस्किट के पैकेट, सिर्फ आधा बिस्किट का पैकेट 2 जवानों ने खाया था, आधा तो बैलेंस था और भूख नहीं लगती। तो इतना कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर मुझे सूचना मिली उसी रात को, दोबारा से हमारी फौज ने उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका करा। टाइगर हिल की जीत एक ऐसी कारगिल युद्ध की निर्णायक जीत थी, यू टर्न हो गया था कारगिल का युद्ध, सीज फायर हो गया। फिर आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे भी हॉस्पिटल में भेज दिया, 16 महीने हॉस्पिटल में रहा और फिर वापस भारतीय सेना में गया।
1: आपकी कहानी कहानी नहीं है, ये जिया हुआ हर वो पल है जिसको सुनते हुए ना मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था, मैं समझता हूँ मैं श्रोता भी सुनते हुए इस चीज को समझ पाएंगे कि एक एक श्वास हर जवान का कितना कीमती होता है और वो श्वास को कितने बहुमूल्य तरीके से उपयोग करते हैं, ये वाकई में काबिले तारीफ है। इसके लिए हमारे पास शब्द बिल्कुल नहीं है और कहीं पर भी इसके लिए शब्द नहीं है। लेकिन जो चीज मुझे यहाँ पर कहने का मन करता है वो ये कि आपका जो ये कनेक्शन है ईश्वर के साथ, जो आपको हमेशा वो एक एहसास, एक आवाज के तौर पे हमेशा आपका साथ देता है, ये बहुत ही यूनिक चीज है। क्योंकि आपका दिल सच्चा है, आप सच्चे हैं, इसलिए सच्चाई के साथ ही ईश्वर होता है। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव के साथ है और शिव उसके ही साथ है। इस वजह से आपके दिल में जो सच्ची भावना थी अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, उस भावना ने आपको भगवान को मजबूर कर दिया आपका सहयोगी बनाने में। एक चीज यहाँ पर जो मुझे और बोलने का मन करता वो ये है कि आपका दर्द जो है, शारीरिक दर्द जो है, वो आप भूल चुके थे। क्योंकि आपका जो लक्ष्य था, आपने जो पहले भी कहा कि मन में जो भाव आपके होंगे, आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस चीज को करने में मजबूर कर देगा। तो आपने अपने मन में जो वो भाव रखा था कि कुछ भी हो जाए हारना नहीं है, कुछ भी हो जाए आज हमें जीतना ही है, इस भावना ने आपको वो जो दैहिक नुकसान हुआ, जो देह का नुकसान हुआ, उन नुकसानों से बचा करके रखा। और ये जो आपने एक और बात कही कि रोना एक थेरेपी की तरह है, कई बार लोग जो है ऐसे ऐसे, मुझे नहीं लगता कि ये वाक्य मैं कह रहा हूं तो ये राइट होगा, लेकिन मुझे बेवकूफी भरे वाक्य लगते हैं जब वो कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता और वो एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि पुरुषों को भावुक नहीं होना चाहिए या रोना तो केवल लड़कियों का काम है, इस तरीके का जब वो एक बहुत बेवकूफी और रूढ़ीवादी बातचीत करते, तब मुझे लगता है कि इन्होंने अपने को ही नहीं समझा है। वो अपने उस भाव को, अपने उस परत को दबा रहे हैं जहां पर हीलिंग पावर है, जहां पर दृढ़ बनने का एक तरीका है। और ये जो आपने कहा कि मैं रोया और उस रोने की वजह से जो आपने हल्कापन महसूस किया, मैं समझता हूँ वो ना केवल योगेंद्र के लिए जरूरी था, ये उन लोगों के लिए भी जरूरी था जिन्होंने वहां पर अपना शरीर छोड़ा था, जो शहीद हुए थे, उनको भी था कि कोई हमारे लिए हो जो भावना और भावुकता के साथ हमें एक विदाई दे। आपने हमारी जगह पे वो काम किया, उनके परिवार वालों की जगह पे वो काम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत छोटा था जब कारगिल का युद्ध हुआ था और मुझे याद आता है कि हमारे शहर में हर स्कूल, हर कॉलोनी, हर जगह से धन इकट्ठा किया जा रहा था युद्ध में भेजने के लिए। मैंने भी स्कूल में ड्रॉइंग बना करके, ड्रॉइंग के उस पोस्टर को ऑक्शन पे लगा करके कुछ धन इकट्ठा करके भेजा था। और मुझे लगा ये चीज जो मैंने किया ना, मेरी तरफ से मुझे लगा कि मैंने भी कुछ किया है। हर कोई शायद फौज में नहीं जा सकता और हर किसी के पास जो फौज में जाता है शायद ऐसा सौभाग्य नहीं आता कि वो सीने को छल्ली होते हुए भी अपने दिल को धड़कते हुए हनुमान जैसा, हनुमान जी ने सीना खोल के दिखाया कि राम और सीता ही उनके सीने में है, ऐसे आपने अपने छल्ली हो गए शरीर से भी दिखाया कि भाई मेरे नस नस में केवल माँ भारती का यश ही चल रहा है और उसके लिए ही मैं जीता हूँ। हर कोई के पास ये सौभाग्य नहीं आता। आज अगर योगेंद्र सिंह यादव या कहो परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव जी जब लोगों से मिलते हैं और उनको अगर कोई आके सवाल पूछे, भाई मैं तो फौज में नहीं जा सकता, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भी वही गर्व महसूस हो रात को सोने के समय, शरीर छोड़ते समय, कि मैंने कुछ तो अच्छा किया है, क्या आप उनको जवाब देते हैं? क्या मैं कहूं अगर आप खुद को ऐसे देखें कि भाई योगेंद्र सिंह यादव कभी सेना में गया ही नहीं था, तो योगेंद्र सिंह यादव क्या करता कि उसे वही नशा, वही शान अनुभव होता जो आज परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव को हो रहा है?
0: ये उस समय देखिए, जब आप किसी भाव को जीने लगते हैं तो उसकी तीन परतें होती हैं। और ये तीन परतें मेरे बहुत अच्छे से समझ में, जैसे माइंड की तीन परतें हैं, अवचेतन, अर्धचेतन और चेतन, वैसे ही तीन ईगो है अगर हम साइंस चलते हैं, चाइल्ड ईगो, एडल्ट ईगो, पेरेंट ईगो, तीन ईगो, तीन अहम बनते हैं, ऐसे तीन भाव बनते हैं, हम तीन रूप में हैं। मैं ये सोचता था कि मैं फौज में ना जाता तो शायद कोई साधु या संत बनता है, ऐसा नहीं है कि। और दूसरी चीज, अगर मैं साधु या ये भी नहीं बनता तो पता नहीं क्या बनता, फिर एक अलग भाव थे, एक अलग दृश्य था कि मैं वो बनता। फिर दूसरी चीज एक और भी समझ में आती है आज 40 की अवस्था पार करने के बाद, जब हम गहराई से अपने अवचेतन मस्तिष्क में झांक करके देखते हैं, परमात्मा ने पहले से बहुत कुछ हमें दे करके इस धरती पर इसीलिए भेजा कि तेरा ये काम है भाई, आप गिटार से बांसुरी की धुन नहीं निकाल सकते हो, तो आप अगर जो है गिटार बजा रहे हो तो गिटार तो इतनी शिद्दत से बजाओ ना, फिर उसी में परमात्मा मिलेगा। तो आप, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, टीचर हूं, कुछ भी, कोई भी प्रोफेशन हो, उसको शिद्दत से जीना शुरू। सिर्फ हम भौतिक लाभ के लिए उसको काम को कर रहे हैं, फिर आपके अंदर वो राष्ट्र के प्रति प्रेम है, मातृभूमि के प्रति प्रेम है, काम के प्रति प्रेम है, वो प्रेम नहीं रहेगा। और ये देखा है सर, प्रेम इस धरती का शाश्वत है और प्रेम ही इस सृष्टि की शक्ति है, और जिसने प्रेम को सीख लिया, जिसने प्रेम करना जीना सीख लिया, उसने सृष्टि को जी लिया, उसने अपने जीवन को जी लिया, उसने अपने कर्म को जी लिया।
1: दोस्तों, दिल तो नहीं करता बीच में कहानी को इस प्रकार से रोकने का, लेकिन क्या करें, समय हमें कुछ सिखाता है पाबंदी, और समय का पाबंद होना बहुत अच्छा माना जाता है। आज भी मैं समझूंगा ये बहुत अच्छी बात है, जबकि ये कहानी अधूरी है, लेकिन दोबारा आपसे मिलने का मौका मिलेगा, दोबारा योगेंद्र जी से बातचीत करने का मौका मिलेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगले एपिसोड में जानेंगे हम योगेंद्र जी की कहानी आगे की, कैसे टाइगर हिल पर विजय का पताका लहराने में उनका अहम भागीदारीता रही, उनका योगदान बहुत अहम रहा टाइगर हिल विजय में। कारगिल दिवस मना रहे हैं हम, और कारगिल युद्ध के कुछ ऐसे क्षणों के बारे में जानने का सौभाग्य हमें मिल रहा है, इसको हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। दोस्तों, लौट के आइएगा हमारे यशस्वी भारत कार्यक्रम के अगले एपिसोड में, जहां हम बातचीत करेंगे कप्तान योगेंद्र सिंह यादव जी से। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन सुनते रहिए। जय हिंद, जय भारत।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आरती ऐसे ही एक किनारे पे खड़ी थी। वक्त के भंवर पैरों से लिपटे हुए थे, वक्त की गर्दिश तेज थी और पांव रोके नहीं रुकते थे।
3: धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे

0: हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं विवेक जैन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम ज्ञान चिंतन में। प्रिय साथियों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब कुछ ना कुछ पा रहे हैं, सुविधाएं, साधन, तकनीक, लेकिन इसके बावजूद एक चीज जो है अक्सर हमसे छूट जाती है, सकारात्मक सोच। आज का ज्ञान चिंतन इसी विषय पर है, सकारात्मक सोच कैसे विकसित करें। श्रोताओं, सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। सकारात्मक सोच का अर्थ है समस्या के सामने हिम्मत न हारना, अंधेरे में भी दिया जलाए रखना और परिस्थितियों को कोसने के बजाय स्वयं को सशक्त बनाना। अक्सर हम कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या परिस्थितियां हमें तोड़ती हैं या हमारे विचार हमें तोड़ देते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं हमारे जीवन की गुणवत्ता 10% परिस्थितियों पर और 90% हमारी सोच पर निर्भर करती है। अब प्रश्न यह है, यह सकारात्मक सोच आती कहां से है? सबसे पहले विचारों की जागरूकता से। दिन भर हमारे मन में हजारों विचार आते हैं, हम उनमें से अधिकतर को बिना जांच पड़ताल के सच मान लेते हैं। जैसे ही नकारात्मक विचार आए, मैं असफल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे बस का नहीं, तो स्वयं से पूछिए, क्या यह सत्य है या केवल मेरी कल्पना। सच यह है, हर नकारात्मक विचार सत्य नहीं होता। दूसरा उपाय, कृतज्ञता का अभ्यास। हम जो नहीं हैं उसी पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो हैं, स्वास्थ्य, परिवार, मित्र, अनुभव, उसे भूल जाते हैं। प्रतिदिन रात को सोने से पहले 3 ऐसी बातों को याद करें जिनके लिए आप ईश्वर के आभारी हैं। धीरे धीरे आपका मन अभाव से हटकर उपलब्धि पर केंद्रित होने लगेगा। तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र, आत्मसंवाद बदलना। हम स्वयं से जो बातें करते हैं वही हमारा भविष्य गढ़ती है। मैं नहीं कर सकता की जगह कहें, मैं सीख रहा हूं, मुझसे गलती हो गई। इसकी जगह कहें, यह अनुभव मुझे सिखा रहा है। याद रखिए, आपका मन वही मानता है जो आप बार बार उसे कहते हैं। चौथा पहलू, संगति और वातावरण। जिस तरह सुगंध या दुर्गंध वातावरण से फैलती है, उसी तरह सोच भी फैलती है। हमेशा शिकायत करने वाले, नकारात्मक चर्चा करने वाले लोगों के बीच रहने से हमारी ऊर्जा कम होती है। समाधान खोजने वाले, आशावादी और प्रेरक लोगों के साथ समय बिताइए। पांचवा सूत्र, वर्तमान में जीना। अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है, फिर भी हमारा मन या तो पछतावे में रहता है या चिंता में। ध्यान, प्राणायाम और श्वास पर ध्यान हमें वर्तमान में ले जाने का सशक्त साधन है। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सकारात्मक होता है। इसी क्रम में छठा बिंदु है, शरीर और मन का गहरा संबंध। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद, यह केवल शरीर के लिए नहीं मन के लिए भी आवश्यक है। थका हुआ शरीर नकारात्मक विचारों को जन्म देता है। और अंत में सेवा और अर्थपूर्ण कार्य। जब हम किसी के जीवन में थोड़ी सी भी रोशनी लाते हैं, तो वह रोशनी हमारे भीतर भी उजाला कर देती है। सेवा हमें स्वास्थ्य से ऊपर उठकर सार्थकता की ओर ले जाती है। प्रिय श्रोताओं, सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं, यह एक दैनिक अभ्यास है। जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज भोजन करते हैं, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए रोज अच्छे विचारों का पोषण आवश्यक है। याद रखिए, हम परिस्थिति को हमेशा नहीं बदल सकते, लेकिन उनके प्रति अपना दृष्टिकोण हमेशा बदल सकते हैं। इसी सकारात्मक सोच के साथ मुझे दीजिए आज के ज्ञान चिंतन को यहीं विराम देने की अनुमति। मैं विवेक जैन आपसे फिर मुलाकात करूंगा। इसी तरह सुनते रहें आपका अपना कार्यक्रम ज्ञान चिंतन। सदैव सकारात्मक रहें, स्वयं पर विश्वास रखें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि यह चर्चा आपके मन को स्पर्श कर गई होगी और इसने नए विचारों को जन्म दिया होगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर एक नई सोच और विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, खुश रहें, खुशियां बांटें। नमस्कार।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: मत दुआ दे कि मैं बददुआ हूं, नहीं तेरे काबिल कि मैं बेवफा हूं।

0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
2: Awakening with ब्रह्मकुमारीज। नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज। Welcome, sister.
3: Om Shanti.
2: Om Shanti and welcome to Being Shakti.
3: Thank you so much.
2: आज आप शक्तिशाली लग रही हैं।
3: आज हम मुरली पढ़ेंगे इसलिए। जैसे ही मुरली पढ़ते हैं परमात्मा के महावाक्य डायरेक्टली, तो वो शब्दों में एक अलग ही पावर होती है सारे। चाहे शब्द हमने कई बार सुना हो, लेकिन वो परमात्म महावाक्य जो होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि उसको सुनने और पढ़ने से भी आत्मा की एम्पावरमेंट हो जाती है।
2: सोचने से कि आज मैं पढ़ने वाली हूँ,
3: उससे भी एम्पावरमेंट हो जाती है। राइट, आज जो हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे
2: जी,
3: कि हमारे संकल्प ये एक सहयोग है जो दूसरों को और दुनिया को हम देते हैं। द पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति। आज दिन तक हम सहयोग मांगते थे, सहयोग चाहते थे, लेकिन हम क्या सहयोग दे सकते हैं एक दूसरे को? हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है औरों के प्रति और पूरी दुनिया के प्रति? तो उसके बारे में मुरली थी। सो आई थॉट वी शेयर इट विद एवरीवन।
2: जी,
3: जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार, मतलब आत्मा उड़ती कला एम्पावरमेंट पे है या गिरती कला पे है, डिसएम्पावरमेंट हो रही है, उसका आधार दो बातें हैं, भावना और भाव। दो ही शब्दों से जिसको हम कहते ना, भाव और भावना क्या थी उनकी, तो भाव और भावना से या तो आत्मा की उड़ती कला होगी या आत्मा की गिरती कला होगी। अगर किसी भी कार्य में कार्य के प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है, तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। अगर किसी भी काम में काम के प्रति या काम करने वाले व्यक्ति के प्रति अगर हमारी भावना श्रेष्ठ है, तो उसका फल ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ ही प्राप्त होने वाला है। एक है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अब हम चेक करें हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी इंटेंशन। भाव एंड भावना मींस इंटेंशन एंड फीलिंग। एक है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। क्या हमारी ये भावना है कि हर एक का कल्याण किस चीज में हो? दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। हम किसी को सहयोग देते हैं, किसी को हम कहते हैं इनके साथ नहीं हम कर सकते, आई कैन नॉट कोऑपरेट विद दिस पर्सन, आई कैन नॉट वर्क विद दिस पर्सन। तो परमात्मा ने कहा कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। तीसरी है सदा हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की भावना। हमारी इंटेंशन ये हो कि हम जो कहें जो करें वो औरों का भी उमंग उत्साह उससे बढ़ना चाहिए। चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, बिलोंगिंगनेस। आत्मा मेरे परिवार की है,
2: ये वाला थोड़ा मुश्किल है,
3: थोड़े वाले मुश्किल है ये। और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना, सोल कॉन्शियसनेस। फर्स्ट थी सबके प्रति कल्याण की भावना, दूसरे थी कोई कैसा भी हो स्नेह और सहयोग की भावना, तीसरा है सदा उनके हिम्मत और उल्लास को बढ़ाने की भावना, चौथी है अपनेपन की भावना, और पांचवी इन सब की फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, ये अगर फाउंडेशन में भावना होगी तो फिर ऑटोमेटिकली सबके कल्याण की भावना वो इजी हो जाएगी। सब अपने हैं, हर आत्मा प्योर है, हम सब, जब हम देखो हम दुनिया में कितनी बार कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुदेव कुटुंबकम, हम सब कनेक्टेड हैं। और आज तो हम एक ही घर में कनेक्टेड नहीं फील करते एक दूसरे से। तो सोल कॉन्शियसनेस जब तक नहीं होगी वो कनेक्टेड फील नहीं होगा। मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा भाई है, ये हमारी फैमिली का है, दैट इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो परमात्मा ने कहा हरेक के लिए अपनेपन की भावना, फिर सदा हरेक का उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना, कि अगर दूसरा डिमोटिवेटेड है भी, डिसएम्पावर्ड है भी, तो उसका उमंग उत्साह बढ़ाना वो भी मेरी इंटेंशन होनी चाहिए। तो परमात्मा ने कहा अगर ये पांच क्राइटेरिया ध्यान रहे तो हमारी भाव और भावना श्रेष्ठ है, और अगर हमारी भाव और भावना श्रेष्ठ है तो उसका फल फिर
2: श्रेष्ठ
3: श्रेष्ठ होना ही है। परमात्मा कहते हैं माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं, मतलब कमजोर थॉट्स आने के, वीकनेसेस आने के यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल, मतलब जीवन में कोई भी विघ्न आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उसका मूल फाउंडेशन प्रीत की बजाय विपरीत भावना ही होती है। मूल
2: किसका फाउंडेशन का विपरीत,
3: कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का फाउंडेशन स्नेह की बजाय, प्रीत की बजाय विपरीत भावना है, इसीलिए वो फाउंडेशन है। तो अगर फाउंडेशन को चेंज करें कि आई एम अ लवफुल सोल, दिस सोल इज ऑल्सो ब्यूटिफुल सोल, ये अक्वायर्ड संस्कार है, सही नहीं भी लग रहा लेकिन पुरुषार्थ करके भी, मेहनत करके भी उस आत्मा के लिए प्यार की वाइब्रेशन क्रिएट करें, तो फाउंडेशन को चेंज कर देंगे। अगर ऊपर ऊपर से थॉट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, नहीं हमें एक्सेप्ट करना है, नहीं अच्छा कोई बात नहीं उसका संस्कार तो है, नहीं वो ठीक हो जाएगा, नहीं वो है तो अच्छा, लेकिन मूल को नहीं चेंज किया,
2: रिश्तेदार है क्या कर सकते हैं।
3: हाँ। मेरा कई बार हम कहते हैं मेरा कार्मिक अकाउंट है क्या कर सकते हैं, अभी है तो फेस तो करना ही पड़ेगा, ये सारे थॉट्स में मूल को नहीं चेंज किया, फाउंडेशन को नहीं चेंज किया, तो ये ऊपर ऊपर वाली थॉट आ जाएगी कल चली जाएगी, पर आएगी पर जाएगी, फिर चेंज करना पड़ेगा, बार बार उसको चेक करना पड़ेगा, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी।
2: फाउंडेशन मेरी तरफ से अगर सही रहे, दूसरी तरफ से नहीं तो तब भी तो मुश्किल हो जाता है।
3: दूसरी तरफ की फाउंडेशन तो हम नहीं ना चेंज कर सकते है,
2: ऐसा कई बार होता भी है।
3: क्या चीज?
2: मैं अपनी तरफ से बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
3: हाँ?
2: किसी से ना नफरत है, ना दुश्मनी, ना दोस्ती है, ना प्यार है, ठीक है, लेकिन एक तरफ से कितनी जेलसी आती है, कितना एंगर आता है कि ये आदमी इतना तरक्की कर गया और ये है वो है,
3: वो आता है, लेकिन उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि वो थॉट्स का प्रभाव हम पर ना पड़े, विच मीन्स हम भी सिमिलर थॉट्स क्रिएट करना नहीं शुरू कर दें, तो वी आर कनेक्टेड टू आवर फाउंडेशन, कोई आकर हमारी फाउंडेशन,
2: मेरे फाउंडेशन से ठीक है, लेकिन हम दोनों के रिलेशनशिप का फाउंडेशन जो है उसका बेस तो प्यार नहीं हो सकता ना,
3: रिलेशनशिप का फाउंडेशन यहाँ होता है, रिलेशनशिप का फाउंडेशन यहाँ नहीं,
2: हम दोनों के रिलेशनशिप का फाउंडेशन मेरी तरफ से ठीक है
3: बस,
2: तो
3: उतना ही ठीक रखना है सिर्फ,
2: और वहां से चाहे कुछ भी आए
3: वही तो पुरुषार्थ है, वहां से चाहे कुछ भी आए, हमने कुछ एपिसोड्स पहले क्या देखा था, वहां से जो थॉट आती है अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कई बार हम भी वैसी क्वालिटी की थॉट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग है, प्रीत प्यार उस आत्मा के प्रति, जनरल नहीं, उस आत्मा के प्रति भी मेरा फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो वहां से कोई भी थॉट आएगी, हमारी थॉट्स की क्वालिटी फिर भी कैसी रहेगी? वी नॉट टू सी कि वहां से, बिकॉज वी कांट चेंज द अदर पर्सन, दैट वी नो एंड वी स्टॉप ट्राइंग एंड वी अंडरस्टूड। कई बार ये भी हो सकता है कि वहां पे फाउंडेशन अच्छा है, हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स चल रही है, ये भी हो सकता है,
2: विच वी नॉट अवेयर ऑफ,
3: वी थिंक इट्स कमिंग फ्रॉम दैट साइड, ये भी हो सकता है, इट कुड बी माई ओन नेगेटिव क्रिएशन।
2: नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट श्योरिटी, क्योंकि वहां से दिखता है ना एक्शन से भी, अपना सिर्फ थॉट से नहीं ना।
3: हाँ, चलो
2: तो एक्शन से दिखता है जब दूसरों को वो अपने बारे में बात करते हैं
3: तब
2: वो
3: पता
2: से भी पता चलता है।
3: सही बात,
2: कई जगह से पता चलता है।
3: तो फिर अगर हमें पता भी है तब भी फिर हमारी ड्यूटी सिर्फ क्या है, अपना फाउंडेशन स्ट्रांग रखने की, कि उनकी फाउंडेशन में चाहे कोई भी चीज मिक्स हुई हुई है मेरा फाउंडेशन कैसा रहे, क्लीन प्योर। क्योंकि परमात्मा ने जैसे कहा किसी भी विघ्न के आने का कारण सिर्फ ये मूल प्रीत की बजाय विपरीत भावना होती है, सिर्फ प्रीत की बजाय विपरीत है।
2: तो सिस्टम में कह रहा हूं ना, वो जो विपरीत वहां से जो आ रहा है,
3: विपरीत जो वहां से आ रहा है उसको हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ किससे कनेक्टेड रहना है,
2: किससे,
3: अपनी प्रीत की फाउंडेशन स्ट्रांग रहनी चाहिए। अगर उनकी बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ सकता है, उनकी वाइब्रेशन का पड़ सकता है, हमारी वाइब्रेशन का नहीं पड़ेगा?
2: पढ़ना तो
3: पड़
2: चाहिए।
3: सकता है कि नहीं
2: पढ़ना चाहिए।
3: सपोज यहाँ चार लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी फाउंडेशन प्योर है, मेरी फाउंडेशन में मिक्सचरिटी है, लेट्स से इम्प्योरिटी है, लेट्स से विपरीत है, हेट्रेड भी है, ठीक है, एंड मैं आपके लिए गलत भी सोच रही हूँ, गलत बोल भी रही हूँ, गलत कर भी रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप तो अच्छा कर रहे हैं ना। तो जब आप कहते हैं चारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चारों पर किसका प्रभाव पड़ेगा, अगर मेरा पड़ सकता है तो आपका भी तो पड़ सकता है। तो हमें दूसरे का क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है उसके नहीं अटेंशन रखना। हम जनरली क्या होता है ना, दूसरे का क्या हो रहा है, दूसरे का मेरी तरफ क्या आ रहा है, वो करते करते हमें पता ही नहीं चलता हमारी अपनी थॉट कब नेगेटिव हो जाती है।
2: आपने एक बार मुरली में मुझे बहुत अच्छी लाइन बताई थी, सत्य को प्रत्यक्ष, क्या था वो,
3: सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य के पास प्रत्यक्ष होने की अपनी विशेषता है, मतलब ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ, इट डज नॉट हैव टू बी रिवील्ड।
2: वो भी
3: सत्य स्वयं प्रत्यक्ष होता है,
2: वो भी परमात्मा की वाक्य थे।
3: बिल्कुल, कि उसको प्रूव नहीं करना है कि कौन राइट है, सिर्फ अपने राइट को पकड़ के रखना है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट।
2: और भले वो चार को बोले, वो भी एक ना एक दिन राइट तो पता ही चल जाता है ना,
3: आपकी वाइब्रेशन भी तो पहुंच रही है ना। लेकिन हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है हमारी वाइब्रेशन में थोड़ी भी मिक्सचरिटी ना हो जाए, ये सब होते होते वी गेट इन्फ्लुएंस ना बाय व्हाट इज हैपनिंग। तो अनअवेयर इट मे हैव स्टार्टेड बाय समबडी एल्स, कि किसी और ने शुरू किया, बट वेरी सून वी आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। वो हमें सिर्फ ध्यान रखना है। तो परमात्मा कहते हैं भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है, और फिर उसके बाद कर्म में आती है, जो हमारी इंटेंशन है।
2: जी।
3: तो पहले थॉट में आती है, फिर वर्ड्स में आती है, फिर बिहेवियर में आ जाती है। जैसी भावना होगी वैसे ही व्यक्तियों के हरेक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। जैसी भावना होगी, जैसी मेरे अंदर कॉन्शियसनेस होगी आपके बारे में, जो मेरी इंटेंशन में कॉन्शियसनेस में आपके बारे में फिट बैठा होगा, उसी कॉन्शियसनेस के थ्रू मैं आपके हर बोल कर्म को चेक करूंगे।
2: एक दूसरे के लिए या अपने अंदर की भावना,
3: दूसरे के प्रति भी जैसी भावना होगी।
2: ऐसे भी तो हो सकता है ना, मैं वैसे ही लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करता तो मेरी भावना ही ऐसी है।
3: हाँ, लेकिन उसमें भी आप सबके साथ सेम नहीं होंगे ना। आप सबके साथ सेम नहीं होंगे।
2: अच्छा,
3: कुछ लोगों के साथ डिफरेंट, कुछ लोगों के साथ डिफरेंट। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस हमारी एक भावना बन जाती है।
2: तो मतलब फर्स्ट मीटिंग के बाद।
3: हाँ, इसीलिए कहते हैं ना, फर्स्ट मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट,
2: फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट
3: इम्प्रेशन। दिस इज व्हाई, बिकॉज वो भावना में जाके बैठने वाला है। पहली बार जब हम मिलते हैं किसी को, इट्स रॉ, तो हम उसको वो जैसा है वैसे ही देखते हैं। लेकिन फर्स्ट मीटिंग का जो भावना में बैठ जाएगा, अब नेक्स्ट मीटिंग के टाइम हम उस फर्स्ट मीटिंग के फिल्टर के थ्रू उस व्यक्ति को देखेंगे। और फिर कई कई इंसिडेंट्स जब होते जाते हैं, सीन आफ्टर सीन, तब तो वो भावना बहुत पक्की हो जाती है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं फिर उसी भाव से उनको देखेंगे, सुनेंगे, उनके हर कर्म को देखेंगे और उनके संबंध में उसी भाव से आएंगे। भावना से भाव भी बदल जाता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, आपने भी ईर्ष्या कहा ना अभी जलसे, अगर ईर्ष्या की भावना है अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति के हर चलन, हर बोल से मिसअंडरस्टैंडिंग का भाव ही अनुभव होगा।
2: देखिए जवाब मिल गया।
3: क्योंकि भावना में हमारी वो फिटेड है। जेलेसी अगर फिटेड है, एंगर हेट्रेड फिटेड है, पास्ट एक्सपीरियंस का हर्ट फिट है, तो फिर उसी कॉन्शियसनेस के थ्रू हर सीन को जब देखेंगे तो परमात्मा कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग का भाव ही अनुभव होगा। वो अच्छा भी करेगा ना, लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव ही दिखाई देगा। और ये ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है कि जब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से कॉन्शियसनेस में फिट हो जाता है ये ऐसे ही है, फिर उसके बाद वो कुछ भी बोले, अच्छा भी बोले, लेकिन हम उस बात को वो जैसी है वैसे देख नहीं सकते।
2: एक बार कोई इंसान चोरी कर ले,
3: हाँ वैसे ही,
2: तो उसको बार बार जब भी मैं बोलूं इसको अकेले कमरे में मत भेजना,
3: हाँ।
2: इसको अकेले पेट्रोल भराने मत भेजना।
3: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कभी भी कोई चीज मिसिंग हो, सबसे पहले हम उसी को याद करेंगे, जबकि उस दिन उसने उसको संभाल के अच्छे से रखा होगा, लेकिन क्योंकि हमारी भावना में वो फिट हो चुका है तो हम उसके अच्छे को भी गलत ही देखेंगे।
2: और संभालते समय अगर आपने देख लिया तो आप बोलेंगे तो जेब में डाल रहा था,
3: क्योंकि भावना वो है। कितना डिफरेंस हो जाएगा कि सत्य क्या है और हम अपनी भावना के थ्रू क्या देख,
2: वो संभालने जा रहा है,
3: हाँ।
2: और हमने उसके हाथ में देख लिया,
3: हाँ। और हमने अपनी पुरानी एक्सपीरियंस के कारण जो हमारी भावना बनी, तो हमारा प्रेजेंट कर्म भी फिर कैसा हो गया, अच्छा भी हमें फिर गलत दिखाई देने लगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। भाव भावना क्लीन नहीं तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस। आप देखो, इसीलिए फाउंडेशन ऑफ ए रिलेशनशिप कितनी इम्पोर्टेंट है। जहां फाउंडेशन स्ट्रांग है, आपकी कॉन्शियसनेस में वो फिट है, प्यार फिट हुआ हुआ है, रिस्पेक्ट फिट हुई हुई है, अब कितनी भी आर्ग्यूमेंट हो जाए ऊपर, कितना भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, बात आती है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जहां फाउंडेशन में डाउट है, जहां फाउंडेशन में हर्ट है, वहां छोटी सी लाइन भी सामने से एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्रिएट कर देगी। तो भावना में क्या फिट हुआ हुआ है। आजकल के साइंस के साधन भी वेस्ट, खराब माल जो होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्नचित आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरा अनुभव होता है, लेकिन वो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारणा करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति दे देगी।
2: बाप रे,
3: कितनी सारी चीजें करेगी। जैसे साइंस वेस्ट को बेस्ट बना सकती है, ऐसे प्रसन्न चित आत्मा जो खुद खुश है, क्लीन है, प्रसन्न चित्त है उसका, प्रसन्न साइलेंस की शक्ति से, जो प्रसन्न है और साइलेंस की शक्ति से, मतलब वो अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड है।
2: साइलेंस हियर आल्सो मींस नॉट स्टेबल,
3: स्टेबल
2: अनडिस्टर्ब्ड।
3: साइलेंस की शक्ति मींस माइंड इज
2: नॉट
3: डिस्टर्ब्ड एट ऑल। वो शक्ति से चाहे बात बुरी होगी, संबंध बुरे अनुभव होते होंगे, लेकिन वो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में धारण करेगी। मतलब कोई बुरे सीन में से भी कुछ अच्छा ढूंढ कर स्वयं में धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। सपोज जैसे आपने कहा, इवन इतनी सी चीज कि अगर सपोज हमने किसी को चोरी करते हुए देख लिया, वो एक्चुअल चोरी ही कर रहे थे वो, राइट? तो सीन ठीक नहीं, सीन गलत है, लेकिन उस सीन में अगर आप स्टेबल रहे, आप स्टेबल रहे, तो आप कैसी थॉट क्रिएट करेंगे उस आत्मा के प्रति?
2: ये उठा के संभाल रहा होगा।
3: सपोज वो चोरी कर रहा है,
2: हाँ।
3: देखो लाइन क्या है कि गलत हो रहा है, वी हैव टू कन्वर्ट वेस्ट टू बेस्ट. गलत हो रहा है, बात बुरी है, कोई आपको स्टाफ चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है, अजम्पशन नहीं कि वो चोरी कर रहा था, एक्चुअल वो कोई चोरी कर रहा है, आपको वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करना है.
2: ये ऐसा हुआ था इसके ऊपर कि हमारे यहाँ एक कुक थी, उसको आंटी बुलाते थे, बहुत रेस्पेक्ट देते थे. तो वो थैली में कुछ एप्पल्स और फ्रूट्स घर से चोरी करके चली गई. तो बाहर वॉचमैन ने गेट से पकड़ के सेवन्थ फ्लोर पे लिफ्ट में लेके आया, बोला साहब इसकी थैली में ये दिखा. तो मैंने पता क्या किया, मैंने बोला हाँ ये मैंने दिया इसको.
3: सी कितना ब्यूटीफुल.
2: उसके बाद वो औरत इतनी फेथफुल रही.
3: दिस तो हो गई ना.
2: मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला, हम आपको आंटी बोलते हैं, हम आपको इतना बड़ा घर का मानते हैं, आप घर का खाना बनाती हो.
3: अब इसमें क्या क्या हुआ, कितने रिजल्ट्स निकले. खुद पहले साइलेंट रहे उस आत्मा के प्रति, औरों के मन में जो रिस्पेक्ट है, किसी को भी घर में नहीं पता चला ये लाइन बोलने से, तो औरों के मन में जो रिस्पेक्ट है वो भी इंटैक्ट रही. और जो इतनी प्यारी लाइन जो इसमें है कि दूसरे के अंदर भी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देंगे. तो बुराई की भावना थी, चाहे वो छोटी सी चीज है, लेकिन है तो डिसऑनेस्टी ना, उसका तो साइज नहीं होता कुछ. डिसऑनेस्टी तो डिसऑनेस्टी है, लेकिन बुराई को भी अच्छाई धारण करने की शक्ति देंगे.
2: I wish I'd done that later on with other people also.
3: Never mind, we do that from today, but nice to remember it, na? याद आया तो कितना कुछ याद आ जाता है उसके साथ. फिर हमने कैसे किया, उसका रिजल्ट क्या आया, एंड फिर उसके साथ वो काम भी करती रही वहीं पे. She continued working and वो faithful हो गई, सब results हो गए ना. ये है transformer, जो अपनी शक्ति को भी transform कर दे और फिर अपनी भावना से औरों की शक्तियों को भी transform कर दे. तो ये line work करती है ना. Possible है. हम सब ने कभी अनुभव किए होते हैं इन सारी चीजों के, लेकिन वो fleeting experiences होते हैं. तो वो आते हैं, वो चले जाते हैं. जो लाइफ के ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उनको हम यहाँ रजिस्टर नहीं करते बहुत ज्यादा. जो दर्द वाले एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जहाँ हर्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, वही ज्यादा रजिस्टर हो जाते हैं. ये भी एक चूज करना होता है, कौन से एक्सपीरियंसेस को रजिस्टर करना है, ताकि फिर हम उसी भावना के थ्रू हर आने वाली सीन को भी देखेंगे. तो परमात्मा कहते, कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं, जब है ही बुरी या गलत बात, तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना. आप भी कहते हैं ना, बहुत बढ़िया बात.
2: कई बार कहता हूँ मैं, ब्लैक को ब्लैक बोलूं तो क्या बुरा है.
3: तो कहते हैं, जब है ही बुरी व गलत बात, तो गलत को गलत तो कहना पड़ेगा, या गलत को गलत समझना तो पड़ेगा ना. लेकिन गलत को गलत समझना, ये समझने के हिसाब से समझा, वो राइट है ये रॉन्ग है, समझना जानना ये अलग बात है. लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले, समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे. बात राइट है कि रॉन्ग है, समझना जानना, समझने तक ठीक है, लेकिन आत्मा की कोई भी बुराई को अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे.
2: धारण नहीं करना मतलब?
3: मतलब वो चित पे ना रह जाए, ये है ही ऐसे. बात को देख लिया, कर्म को देख लिया, उस कर्म में आगे कुछ ध्यान रखना है, वो कर लिया, लेकिन उस बुराई को अपने चित पर नहीं धारण करना.
2: उसको है बार बार उसके बारे में सोचना, तो करते करते फिर वैसे हम
3: बन जाते
2: तो वो बुराई अपनी
3: अपने चित पर आ जाती है,
2: तो हम भी बुरे
3: वो भी रेडिएट हो जाती है. तो ये कितनी अच्छी लाइन है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं गलत है तो गलत तो बोलना है ना. गलत को समझना, उसके साथ हमें कैसे चलना, लेकिन आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे.
2: मतलब कचरा चाहे मेरे घर का हो या किसी और के घर का हो।
3: हाँ।
2: कचरा कचरा ही है,
3: कचरा तो कचरा ही है।
2: तो मैं बोलूंगा ये मेरा नहीं है, मैं तो किसी और का है।
3: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी और के घर के कचरे को उठाकर अपने घर में थोड़ी रखना है। ये भी तो सोचो, इमेजिन फिजिकली विजुअली इफ वी हैड टू डू दिस, कि हर एक के घर का कूड़ा अपने घर में रख लिया। हर एक की बुराई, हर एक के पास है बुराई, हर एक के पास है विशेषता, तो अपने घर में क्या संभाल के रखना है वो हमें अटेंशन रखना है। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, समझ लिया, लेकिन स्वयं में भी वो अपने चित्त पर भी, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना समाना नहीं है। अपनी वृत्ति में, अपनी बुद्धि में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना समाना नहीं है। तो समाना और धारण करना, इसमें अंतर हो जाता है कि देख लिया, समझ लिया, लेकिन उसको अपने अंदर समा लिया और धारण कर लिया, इसमें अंतर हो जाता है। अपने को बचाने के लिए ये कह देते हैं ये है ही रॉन्ग, तो रॉन्ग को रॉन्ग तो कहना पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि ये बुरी चीज है, तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा क्या?
2: वही बात होगी।
3: हाँ, अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा क्या? छोड़ देगा ना? या जमा करना ही समझदारी है? ये समझदारी है क्या? और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया, तो आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी क्या सदा स्वच्छ मानी जाएगी?
2: नहीं।
3: जैसे हमने किसी और की कमजोरी को अपने चित्त पर रख लिया, अपनी बुद्धि में धारण कर लिया, मीन्स सोचते सोचते अब वो हमारी थिंकिंग का हिस्सा बन चुके हैं, फिर वो हमारी वाणी का भी हिस्सा बन चुके हैं कि उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी बुराई डिस्कस कर रहे हैं, उनकी वीकनेस हम औरों के साथ बात कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं, अब क्या आपकी बुद्धि और वाणी स्वच्छ मानी जाएगी?
4: इफ आर इंटेंशंस एंड फीलिंग्स अबाउट द टास्क एंड द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द टास्क आर प्योर, देन द टास्क विल बी सक्सेसफुल। Even if another person is not creating nice thoughts for us, we can protect ourselves by paying attention that every thought we are creating for them is of the right quality. Our intentions for others should be for their welfare. However they may be, our intention should be to give love and cooperation always. We should always increase their zeal and motivation. We need to have a feeling of belongingness for everyone. The foundation for all this is soul consciousness, children of God. We are all family. We do not need to prove ourselves or our thoughts for others. Truth does not have to be proved. Truth has the power to reveal itself. As will be our consciousness and intentions, so will be our thoughts, words and actions. Our consciousness is the foundation based on which we will evaluate others' words and actions. If our consciousness is impure about them, we will doubt their actions, even if they are right.
5: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, रियलिटी सच्ची रॉयल्टी है। आधुनिक जगत में क्या होता है कि महंगे कपड़े पहनना, महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगा खान पान और बड़े बड़े महंगे घरों में रहने वाले लोग जो होते हैं, वही समझते हैं, उनके मन में यही होता है कि हम रॉयल बन गए। अपने आप को रॉयल बनाने और दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं आजकल, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने की सोचते हैं। कभी कभी तो इंसान इसके लिए भी अपने नैतिक मूल्यों के साथ भी समझौता कर बैठते हैं। इंसान सोचता है कि जिसके पास सारे सुख और सारी भौतिक सुविधाएं हैं, वही रॉयल हो सकता है, उसी का समाज सबसे अधिक आदर सम्मान करता है। लेकिन सच्ची रॉयल्टी यह नहीं है। विचार कीजिए, कोई व्यक्ति इज्जत पाने के लिए, स्वयं को रॉयल दिखाने के लिए, अधिक धन कमाने की लालसा में गलत मार्ग पर चलता है, किसी को दुख देता है, व्यापार में किसी को धोखा देकर आगे जाने की कोशिश करता है। यदि उसके पास अथाह धन मतलब आ भी गया हो और उसके कारण समाज में ऊंचे व्यक्ति का दर्जा मिल भी गया हो, तो भी वह खुद की दृष्टि में कभी रॉयल नहीं बन सकता। बंद कमरे में वो व्यक्ति कभी खुद से नजर नहीं मिला सकता, अंदर आत्मा ने उसको संतुष्टता का अनुभव नहीं होगा। नैतिक मूल्यों की बलि देकर कोई भी यदि रॉयल बनने या दिखने का प्रयास करता है, तो वह वास्तविक रॉयल्टी नहीं है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए ये सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और हम चर्चा कर रहे थे रियल्टी ही सच्ची रॉयल्टी है, इसके विपरीत क्या होता है कि सादा जीवन और उच्च विचार। जो होता है रियल्टी, वो रियल्टी ही सच्ची रॉयल्टी है। रियल्टी अर्थात सच्चाई, नैतिक मूल्यों में जो होता है मर्यादा में रहकर कर्म करना ही रियल्टी है। मर्यादा से बाहर रहकर किए गए कर्म आज नहीं तो कल दुख और पश्चाताप में बदल जाते हैं। व्यक्ति जो है स्वयं को वो दिखाने का प्रयास करता है जो वो है नहीं। कहते हैं कि मतलब वो जो भी सुखी होना इतना मुश्किल नहीं है जो जितना कि सुखी दिखना।

कहावत है कि सदा हाँ ही सादा जो जीवन होता है और उच्च विचारे ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। वास्तव में जो महान और रॉयल होते हैं वे जो है वो सादगी को अपनाते हैं, अपने सादे जीवन और ऊंचे विचारों से समाज में प्रतिष्ठा बनाते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, गुण धारण कर हर कर्म करना है। सच्ची रॉयल्टी हमारी रियलिटी अर्थात सत्यता अथवा वास्तविकता है। वास्तविकता क्या है, स्वयं को, स्वयं के गुणों की, स्वयं के कर्तव्यों की। हर कर्म के तीन चरण होते हैं, पहला होता है संकल्प करना, दूसरा है उस कर्म के अच्छे बुरे परिणाम के लिए निर्णय करना, तीसरा चरण में हम उस कर्म को अंजाम देते हैं। यदि हमें रॉयल बनना है तो वह हर कर्म जो है वो पहले चरण से ही श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। और रियल अर्थात जो वास्तविक गुण है आत्मा के, उसको धारण करके उसके अनुसार हर कर्म करना पड़ेगा। आत्मा के मूल गुण जो स्वयं परमात्मा ने बताए हैं वे है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। यदि इन गुणों को धारण करके इनके अनुसार हम कर्म करें, अपना जीवन भी ऐसा ही बनाए, तो हम रॉयल बन जाते हैं। यहाँ पर क्या है, एक सरल व्यक्ति आडंबर से दूर होता है। अपने मन में हम अपनी या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी छवि, हाँ जो अन्य व्यक्ति है उसकी एक ऐसी छवि बनाए कि जिसका स्वभाव बिल्कुल शांत है, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान अनुसार जीवन बिताता है, हाँ प्रेम भाव से सबको सुख देता है, किसी के कठिन समय में हिम्मत, शक्ति और सहयोग देता है, अपना हर संबंध पवित्रता से निभाता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को रॉयल दिखने के लिए धन वैभव की आवश्यकता होगी? नहीं, उसका जो व्यक्तित्व सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। रॉयल बनने के लिए उपरोक्त गुणों के साथ साथ एक और गुण है सरलता का। जो व्यक्ति के रहन सहन, बोल, चेहरे और चलन, जीवन यापन के तरीके को और भी महान बनाता है, सरल व्यक्ति आडंबर से बहुत दूर होता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत करती हूँ आपका इस कार्यक्रम में। और आज जो हम चर्चा कर रहे थे, आज का हमारा विषय है रियलिटी सच्ची रॉयल्टी है। तो आइए आगे की चर्चा हम जारी रखते हैं। एक यहाँ पर क्या है, महंगी वस्तु नहीं बल्कि हमें क्या करना है, हा? महंगे विचार होने चाहिए। रॉयल जो व्यक्ति होता है, बाहर से अपने को बड़ा और महान दिखाने की जो होता है कोशिश नहीं करेगा। विचारों और व्यवहार से रॉयल होता है वो। आत्मा के सर्व गुणों को जब व्यक्ति अपनाता है तो वह शांति का दूत बन जाता है, भले ही उसके पास स्थूल धन ना हो, हाँ ना भी हो, पर उसका सरल और शांत स्वभाव दिव्यता की झलक दिखाता है। अगर शाही सुख सुविधाएं ना भी हो, हाँ तो भी वो व्यक्ति जो है संतुष्ट रहता है। लेकिन जो भौतिक सुख सुविधाओं की संपत्ति को ही रॉयल्टी समझते हैं, उनके मन में सदा और अधिक धन अर्जित करने की कामना रहती है। ऐसे कुछ व्यक्ति अपने से कम संपन्न लोगों से हीनता का व्यवहार रखते हैं, लेकिन जो रियल में ही रॉयल व्यक्ति होता है, उसका व्यवहार छोटे बड़े सबके साथ सभ्यतापूर्ण होता है। उनके हर कर्म में सभ्यता और सत्यता दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति के मन में सबके प्रति रहम भाव और प्रेम का भाव होता है। ऐसा व्यक्ति सबके लिए उदाहरण मूर्त होगा। दुनिया में जो शाही और नवाब लोग हैं, वे महंगी वस्तुओं के बहुत शौकीन होते हैं, किंतु परमात्मा हमें बताते हैं कि महंगी वस्तु नहीं बल्कि महंगे विचारों के शौकीन बनो, यही तुम्हारी रियलिटी रॉयल्टी है। हाँ, जो रियल रॉयल्टी है वो हमें क्या करता है, हमें ऐसी रॉयल्टी धारण करने करके सबके लिए सैंपल बनना है। तो इसी के साथ हम अपना आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: श्रोताओं, मैं हूं नीतू जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर आई हूं जिसका नाम है कृष्ण जन्माष्टमी। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व और इसे मनाने के बारे में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा था। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन उसे आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। यह सुनकर कंस ने देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। समय बीतता गया और भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय चारों ओर अंधकार था, लेकिन भगवान कृष्ण के जन्म के साथ जैसे आशा और प्रकाश का संदेश फैल गया। वसुदेव जी बालक श्री कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे और उन्हें नंद बाबा और यशोदा मैया के घर सुरक्षित पहुंचा दिया। वहीं कृष्ण का बचपन प्रेम और आनंद के बीच बीता। कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट थे। वे अपने मित्रों के साथ खेलते, माखन चुराते और सभी का मन मोह लेते थे। बड़े होकर उन्होंने लोगों को अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने की सीख दी। उन्होंने कंस का अंत किया और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाई जाती है। जन्माष्टमी का महत्व केवल भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाना नहीं है। यह हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, साहस, बुद्धि, कर्म और सच्चाई का संदेश देता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों को सजाते हैं, भगवान कृष्ण की झांकियां निकालते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। रात के 12 बजे कृष्ण के जन्म के समय विशेष पूजा की जाती है। कई स्थानों पर दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें लोग मिलकर मटकी फोड़ते हैं। बच्चे कृष्ण और राधा का रूप धारण करके इस उत्सव में भाग लेते हैं। जन्माष्टमी हमें यह सुंदर संदेश देती है, जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब सत्य और धर्म की जीत अवश्य होती है। आइए इस जन्माष्टमी पर हम भगवान कृष्ण से प्रेरणा लेकर सत्य बोलने, दूसरों की सहायता करने और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने का संकल्प लें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद श्रोताओं, फिर मिलेंगे एक नए चिंतन के साथ। बने रहे हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर और सुनते रहे इसी तरह प्यार से। खुश रहे, खुशियां बांटें।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ख्वाबों के इस सफर में। जी हाँ, आज के इस ख्वाबों के सफर को हम लोग बहुत ही प्यार से सजाने वाले हैं और आज अक्षर हम लोग लेने वाले हैं एन। जी हाँ, हिंदी में से ना कह सकते हैं आप बड़े प्यार से, और इसमें बहुत सारे खूबसूरत गाने हैं और उन गानों को हम लोग सुनाने वाले हैं, ओल्ड मेलोडीज 50s एंड 60s के। और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह विभा जी हैं, जिनसे हम लोग बातें करेंगे और उनके अच्छे अच्छे जो कलेक्शन उन्होंने कलेक्ट किए हैं वो अपने भावों के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे इस एपिसोड में। तो आप सभी की तरफ से विभा जी का बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सनी, नमस्कार आपको और ख्वाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: जी विभा जी, कैसे हैं आप?
2: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: बस आपकी दुआ से हम भी बहुत अच्छे हैं।
2: जी
1: हाँ, जी जी बताइए।
2: मैं एन अक्षर से मिक्स गाने लेके आई हूँ जिसमें भक्ति गीत भी है, दुख भी है, प्यार भी है, तंज भी है, जो मिली जुली कलेक्शन है और इसमें सभी श्रोतागण बहुत
1: एंजॉय
2: करने वाले हैं।
1: क्या बात है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहला गीत आपके पास कौन सा है?
2: पहला गाना है ना आदमी का कोई भरोसा ना दोस्ती का कोई ठिकाना। बहुत ही प्यारा गाना है, इसमें दुख है, थोड़ा तंज भी है और इसमें इसकी वर्डिंग आप सुनते ही आपको साफ सुनने को मिलता है। इसमें शक इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है, अंदर से खोखला कर देता है, और दोस्ती पे शक अगर हो जाए तो उसमें कैसे अंदर से दिल की गहराइयों तक दुख होता है। इसकी वर्डिंग बहुत ही प्यारी है। मेरे को गाने के बोल बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे ही घर के चिराग ने खुद जला दिया मेरा आशिक।
1: जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और ये गाना बहुत ही पॉपुलर था उस समय में और ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो बनी थी आदमी 1968 में आई थी और उसमें ये गाना था। और मुझे लगता है कि इसमें जो कलाकार थे वो दिलीप कुमार, मनोज कुमार, वहदा रहमान, प्राण, इन लोगों ने काम किया था। और दिलीप कुमार, मनोज कुमार का एक जो है बहुत ही अच्छा एक्टिंग रहा इस फिल्म में। और दो हीरो को लेकर जब कोई डायरेक्टर काम करता है तो थोड़ा मुश्किल वाला, जो दोनों को भी उतना ही तवज्जो देना होता है, तो ये एक डायरेक्टर का कमाल है। इसमें दोनों को अच्छी तरह से उन्होंने रोल जो है वो उसी टाइप का उन्होंने दिया है। तो फिल्म देखने से पता चल जाता है कि किस तरह से एक डायरेक्टर को कितना मशक्कत करना पड़ता है दो हीरो लेने के बाद। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही अच्छा ये गाना आपने याद कराया कार्यक्रम की शुरुआत में। सभी श्रोताओं को इस गाने की तरफ ले चलते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में बहुत ही प्यारा सा गीत विभा जी ने आपको सुनाया है। शकील बदायूं साहब का लिखा था, मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया था। नौशाद साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा आदमी एल्बम का आपने गाना सुना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह के ओल्ड मेलोडीज सुन पाते हैं या उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर पाते हैं। तो आइए फिर से एक बार विभा जी से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूंगा। अब आदमी फिल्म इस एल्बम के बाद कौन सा एक गीत,
2: मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये गीत कैसा लगा? ये गानों में से एक है।
1: हाँ, नहीं मुझे अच्छा लगा, और ये एक मैसेज भी देता है क्योंकि आज के समय में जो इंसान है या जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरों को भरोसा दिलाने के लिए बहुत कुछ करता है, और वो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस या जो कहते हैं ना विश्वास, वो कहीं ना कहीं फिर टूट जाता है। तो फिर इसीलिए कहा गया है कि किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। वैसे आदमी के लिए इस दुनिया में ये भी कहा गया है, इंसान क्या है, एक माटी का पुतला है, वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी बिखर सकता है। तो इसीलिए हम सभी को कुछ मैसेज के साथ साथ एक सच्चाई को भी साथ में रखकर अगर हम लोग जीवन जीते हैं तो फिर हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे सभी से, चाहे वो बुरा है अच्छा है, लेकिन आपको अच्छा बनके सबको साथ में ले चलना होता है। तो ये एक चीज मुझे लगता है कि हमें इस पर थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। जी विभा
2: जी, और अगला गाना, क्योंकि ये दुख का गाना हमने सुना है तो इसके बाद भगवान से फरियाद और मरम तो बनती है, इसलिए
1: जी जी
2: ना
1: जी,
2: बोले ना बोले पट के पट ना राधा ना बोले ना बोले।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
2: मीना कुमारी मस्ती से गीत गा रही।
1: अच्छा,
2: राधा कृष्ण की अकेलियों का जिक्र है, इसको नाचते हुए भाव से गा रही है। और पे मन चंचल हो उठता है और भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो उभरती है इसको गाने के बाद।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और एक मस्ती भरा गीत है, ऐसे गानों को एंजॉय तो करते ही है। और ये जो गाना है आपने याद कराया, आजाद इस एल्बम का है। इसमें दिलीप कुमार, मीना कुमारी, प्राण और ओम प्रकाश जी ने काम किया है, और ये भी एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी, 1955 में रिलीज हुई थी। दिलीप कुमार की एक्टिंग को तो सभी लोग उस समय बहुत ही अच्छा फील करते थे। तो यहाँ पर एक अमीर आदमी की कहानी बताई है और कुछ डाकुओं का जो रोल है उसमें दिखाया गया है। तो आइए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया, एक मस्ती भरा गाना, तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों के सफर इस कार्यक्रम में, और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने जो है आप सुनेंगे आज के इस एपिसोड में, और एम अक्षर वाले सारे गाने आप सुनने वाले हैं। तो अभी जो गाना आपने सुना वो गाना जो है आजाद इस एल्बम का था, राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, श्री रामचंद्रन साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा गीत था। शायद आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमें मैसेज करके बताइए कि ये ऐसे गाने हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमें भी खुशी होगा। हमने जो सिलेक्शन किया है, जो कलेक्शन आपको सुना रहे हैं, वो आपका पसंदीदा भी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार। विभा जी कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एंजॉय कर रही हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है। और बताइए आगे आप किस तरफ हमें ले चलने वाले हैं?
1: जी, अगला गाना है ना छेड़ो कल के अफसाने, करो इस रात की बातें, छलकने दो ये पैमाने, करो इस रात की बातें। मोहब्बत पर बहुत ही प्यारा गाना है। ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया है, और नरगिस एक पार्टी में इसको शराब के नशे में धुन, बिल्कुल अपनी दुनिया की भीड़ से अनजान, नशे की दुनिया की इसमें बेपरवाह इस दुनिया से इस गाने को गा रही है। हर एक दिल कल का झगड़ा है, हर एक दिल कल का रोना है, इसकी वर्डिंग बहुत प्यारी है।
0: चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। रात और दिन शायद इस एल्बम से है, और ये गाना जो है कहीं ना कहीं एक अलग फील देता है। कई बार हम लोग चीजें जो है बार बार कल की बातें याद कराकर हम लोग जो है किसी को टॉर्चर भी करते हैं, तो यहाँ ऐसे ना करो, ऐसे अफसाने ना सुनाओ, ऐसे कुछ मैसेज इसमें है। तो आइए इस गाने को हम लोग सुनेंगे। जैसे कि विभा जी ने बताया, नरगिस पर पिक्चराइज किया गया इसे, और इस फिल्म के हीरो थे प्रदीप कुमार, और उनके साथ एक नए हीरो फिरोज खान भी थे, और इसके साथ ही लीला मिश्रा उस समय के जो कलाकार थे इस फिल्म में, और इस फिल्म का ही ये गाना है जो अभी विभा जी ने याद। तो आइए 1967 का ये बहुत ही खूबसूरत गाना अभी आपके लिए, आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, ना छे वो कल के अफसाने करे इस रात की बातें। जी हाँ, सैलेंदर साहब के कलम से निकला हुआ ये खूबसूरत गाना है। लता मंगेशकर जी ने आवाज दी थी, शंकर जयकिशन का बहुत ही खूबसूरत संगीत का ये गाना जो है आपने सुना। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जीवन में कई बार हम लोग कुछ अलग अलग मोड पे जब अलग अलग गाने सुनते हैं तो वो फील हमें जो है कहीं ना कहीं हमारी मन को सुकून देता है। तो गाने किसी भी लहजे में हो, म्यूजिक और उसके शब्द जो है हमें कहीं ना कहीं एक अलग फील देता है। इसीलिए ओल्ड मेलोडीज आज भी लोग सुनते हैं, बड़े प्यार से उन्हें याद करते हैं। तो आइए विभा जी, थैंक यू सो मच कि आपके पास अच्छे अच्छे कलेक्शन है जो हमारे श्रोताओं को आप सुना रहे हैं। अगले पड़ाव में कौन सा गाना है आपके पास?
1: अगले गाने में थोड़ी हंसी है, लड़कपन है, जोश है इस गाने में, और साजन को मनाने की एक अदा के साथ आशा पारेखानी है। ना जाओ मेरे हमदम, सुनो वफा की पुकार। अपने साजन को मना रही हैं और जो उनसे दूर जा रहे हैं उनको अटकेलियां करते हुए, उनसे एक हंसी और लड़कपन करते हुए अपने महबूब मना रही हैं। ये गाना बहुत ही एक चुलबुलापन देता है। तेरे दिल की उदासी को जुल्फों से महका दूंगी, सुनी बाहों में गोरा मुखड़ा सजा, अब आएंगे जो लटके थे, ये मनाते हुए जा रही है।
0: क्या बात है। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पर उसकी नजर है। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। विवा जी, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया, प्यार का मौसम। ये 1969 का एल्बम है, ये फिल्म है उस समय का जो आपने याद कराया है। अब इस फिल्म में जो कलाकार की अगर मैं बात करूं तो उस समय ये जो फिल्म आई थी 1969 में, 70 के दशक में ये फिल्म बनी थी। और इस फिल्म में जो है ना, एक कुछ समय के लिए राहुल देव बर्मन साहब को भी दिखाया गया था। शशि कपूर, आशा पारेख और निरुपमा रॉय पर पिक्चराइज किया गया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी उस समय, प्यार का मौसम। और उस समय नए नए थे शशि कपूर। तो नासिर हुसैन साहब के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। तो जैसे कि आपने जो गाना याद कराया वो भी, जैसे आपने कहा, बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो आइए सीधे गाने की तरफ हम लोग चलते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया विभा जी, थैंक यू सो मच। और ये प्यार का मौसम इस एल्बम से था। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा है और लता मंगेशकर जी ने गाया। राहुल देव बर्मन का खूबसूरत संगीत से गाना आपने सुनाया, एंड थैंक यू सो मच। अब अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अगला गाना भी बहुत ही प्यार भरा गाना है। और इस गाने को सुनते हुए मैं सोच रही थी कि वाकई ये गाना आप सुनेंगे ऐसे लगेंगे तो प्यार करने वाले कहाँ दो अलग अलग जगह होते हैं और कैसे मिल जाते हैं। तो इस गाने के बोल हैं, ना जाने कहाँ तुम थे, ना जाने कहाँ हम थे, जादू जो देखो हम तुम मिले हैं। तो ये दो दीवाने, शर्म है, प्यार है, अपना उनका एहसास है, कुल मिला के बहुत गाना है। और एटमोस्फेयर ऐसा देता है कि जैसे एक दूसरे में डूब जाने वाला।
1: जी जी, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। जिंदगी और ख्वाब 1960 के समय में ये फिल्म जो है रिलीज हुई थी। इस फिल्म के जो कलाकार थे वो मीना कुमारी, राजेंद्र कुमार, जयंत और कुमारी नाद इस फिल्म में काम किया था। और ये बहुत ही खूबसूरत जो राइटर है कमल अमरोही की फिल्म रही, उन्होंने लिखा इस फिल्म को। और दत्ताराम वाडकर इस फिल्म में संगीत दिया था। और ये कहानी भी थोड़ी सी हटके थी, हकीकत और जिंदगी और उसके बीच में हमारे सपने, ऐसे तीनों को मिला जुला कर जो है एक नई स्टोरी उन्होंने बताने की कोशिश की कमल अमरोही साहब। उनकी हर जो है सोच भी उस ढंग से बहुत ही लोगों को पसंद आती है। जब भी वो लिखते हैं या बनाते हैं कोई चीज तो बड़े गंभीरता से वो बारीक बारीक चीजें वो देखते हैं और करते हैं काम। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है, जिंदगी और ख्वाब। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। आप सुनाए हैं रेडियो पुनी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया विभा जी, और ये प्रदीप कुमार साहब का लिखा, सुमन कल्याणपुरी और मन्ना डे का गाया, दत्ताराम जी का संगीत से सजा जिंदगी और ख्वाब इस एल्बम का गीत आपने सुनाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि पीड़ा सारी मिट गई, लिया जो तेरा नाम, गजब कृपा है आपकी ओ परवाले, तेरा मैं क्या गुणगान करूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और कौन सा गाना है अगला आपके पास?
1: ये अगला गाना है, इसमें शिकायत है, जहां प्यार होता है वहां एक्सपेक्टेशंस भी आ जाती हैं और शिकायत भी होती है। और ये गाने के बोल हैं, ना जाने क्यों हम दिल को तुमने दिल नहीं समझ, ये शीशा तोड़ डाला प्यार के काबिल नहीं समझा। जैसे कि इसके बोल हैं, धर्मेंद्र गाते हुए अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं और मीठी से शिकायत कर रहे हैं, तड़प दी भी तो ऐसे दी कि मुश्किल जीना।
0: मोहम्मद रफी साहब का गाया है, ओपी नैयर साहब का संगीत से सजा, मोहब्बत जिंदगी है इस एल्बम का आपने बताया हमें। तो मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को भी ये गाना पसंद आएगा। तो चलिए आप सीधे गाने की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं इस फिल्म के बारे में। आप सुना है रेडियो पर मेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जी हाँ, मोहब्बत जिंदगी है, नाम सुनकर भी कुछ यादें जुड़ जाती हैं। और इस एल्बम का आपने गाना सुना है, जिसके डायरेक्टर थे जगदीश निराला और केसी गुलादी साहब ने इसको प्रोड्यूस किया था। शशि भूषण जी ने इस कहानी को लिखा था और ये फिल्म में कलाकार जो थे वो धर्मेंद्र, राजश्री, महमूद अली और देवन वर्मा, जो उस समय के बहुत ही पॉपुलर कॉमेडी एक्टर रहे। और इनके साथ महमूद, इनकी जो है जुगलबंदी कॉमेडी की रही, जो फिल्म देखते ही बहुत सारे जो है उसमें बीच बीच में हंसी के जो पॉइंट्स है उन्होंने अच्छी तरह से दिखाए हैं। देवन वर्मा और महमूद अली के जो कॉमेडी सीन्स है, वो कॉमेडी सीन्स है, वो लोगों को हमेशा पकड़ के रखता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विभा जी, और कौन सा गाना है आपके पास?
2: अगला गाना है आपको बहुत ही पसंद आने वाला, मैं तो इस गाने को आंखें बंद करती हूँ, ये मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है। न जाओ सैया छोड़ा कितनिया, कसम तुम्हारी रो पड़ूंगी। सुपर हिट गाना है ये
1: जी, जी।
2: और इसमें मीना कुमारी ने कमाल की एक्टिंग करी है, शराबी की एक्टिंग करी है उन्होंने।
1: अच्छा।
2: और ये दुल्हन की तरह सजी हुई, अगर तो पिक्चराइज किया हुआ अगर आप देखो तो आप कि पूरे दुल्हन की तरह सजी हुई अपने पति को अपने से दूर ना ये मिन्नतें कर रही हैं और गा रही हैं। और उसमें एक अजीब सा एक नशे के साथ जो एक प्यार उमड़ रहा है, ये अर्ज कर रही है वो कि मेरे से दूर मुक जाओ। बहुत ही बहुत बहुत प्यारा, आंखें बंद करके सुनिएगा।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी भाव आपने प्रकट किया। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी आपके भाव सुनकर हो रहा होगा, जल्दी से पहले गाना सुना देना, बाद में तुम अपनी बातें सुनो। तो चलिए हम लोग सीधे गाने की तरफ चलते हैं। साहेब बीबी और गुलाम का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। आप सुना है रेडियो पुनी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सचमुच बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, ना जाओ सैया छुड़ा के भैया। शकील बदाई साहब का लिखा ये गीत था, गीता दत्त ने इसे गाया था, हेमंत कुमार साहब ने संगीत से सजाया था इस गाने को। और ये साहेब बीबी और गुलाम, ये जो फिल्म है 1962 में रिलीज हुई थी और ये एक नई स्टोरी लेकर लोगों के बीच में आई थी। विमल मित्रा ने इस कहानी को लिखी थी और इस कहानी को फिर थोड़ा सा डेकोरेट जो है अकबर अलवी साहब ने किया था, और अकबर अलवी साहब ही इस फिल्म के निर्देशक भी रहे। और उस समय इस फिल्म में जो कलाकार थे, गुरुदत्त, मीना कुमारी, वहीदा रहमान और रहमान पर पिक्चराइज किया गया था। तो चलिए, इस खूबसूरत गाने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। अगला गाना कौन सा है विभा जी आपके पास?
1: अगला गाना भी प्यार भरा है। इसके बोलों में एक बड़ी लमस और अपनापन दिखता है कि कैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका की हर एक अदा को कितनी गहराई से देखता है और उसको उसकी आंखों में कैसे लमस होती है। न झटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएगा, कि वो पानी भी टपकता हुआ जुल्फों से मोती दिख रहा है। बरसात की एक रात में फिल्माया गया ये गाना है। बहुत खूबसूरत गुम, प्यार भरे गुमों के साथ प्रेमिका और प्रेमी कैसे प्यार में डूबे हुए हैं।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हम लोग आखिरी मोड़ पे हैं इस एपिसोड के, और ऐसे बहुत सारे गीत आपको आगे भी सुनाते रहेंगे। चलिए, आप जैसे कि गाना आपने बता ही दिया है, तो इस गाने को लिखा था राजेंद्र कृष्ण साहब ने, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है। रवि साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत, और ये भी जैसे कि एक अलग जो फील है इसके पहले वाला जो गाना आपने सुना साहेब बीबी और गुलाम का, बिल्कुल उसी तरह का ये भी थोड़ा सा रोमांटिक फील देता है। तो आइए इस गाने को सुनते हैं। आप सुना है रीजू पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: न

0: जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही अच्छा जो गाना है विभा जी आपने सुनाया, क्या कहे आप कि आप हमारे लिए इतने अच्छे कलेक्शंस लेकर आते हैं। हमारे श्रोताओं के भी मैसेजेस आते हैं, कभी कभी कॉल भी करते हैं। आज के इस एपिसोड में मुझे लगता है कि आप लोग यहीं पर अब इजाज़त लेना चाहेंगे। अगले एपिसोड में फिर कुछ नए गाने लेकर हम लोग साथ होंगे। तो विभा जी, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सने, और सुनने वालों का भी, और मैं खुद भी करती हूँ जब इसको सिलेक्शन कर रही होती हूँ या इसको गाने को सुन रही होती हूँ, तो मुझे खुद भी बहुत मजा आ रहा होता है। ये सोच रही होती हूँ कि हमारे श्रोता जो इसको कैसे एंजॉय करेंगे, इसलिए कोशिश की मिक्स गाने हो जिसमें भक्ति भी है, प्यार भी है, थोड़ी शिकायत भी है, नखरा भी है, नाज और कुल मिला के सारी एक अच्छी सा मिक्सचर एक अच्छा बन जाए।
0: सही सही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा हमें। एंड जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए दो लाइनें और उसके साथ हम जाएंगे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। कहते हैं आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का
1: रेडिओ पुणेरी।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: रेडियो मधुबन के सभी श्रोता साथियों को आरजे शांतनु का बहुत बहुत नमस्कार। आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक बहुत ही अनूठी हस्ती को हम लेकर के आए हैं आपके समक्ष। किसी भी जीवन का जो नींव है उसके बीज से होता है, चाहे वो एक वृक्ष हो चाहे वो इंसान हो। उस बीज की क्षमता, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता पे निर्भर करता है उसका पूरा जीवन, लेकिन बीज पे ध्यान लोगों का कम ही जाता है। आज की हमारी जो अतिथि हैं, उनका सारा ध्यान, उनका सारा श्रम केवल बीज की गुणवत्ता पर है, और इसलिए भारत देश में उन्हें बीज माता के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राहीबाई सोमा पोपेरे जी की, जिनको भारत सरकार ने सन 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, और हाल ही में 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा है। बीबीसी की 100 सशक्त महिलाओं में उनका नाम आता है। आज हमारे स्टूडियो में राहीबाई जी हमारे साथ हैं, और हम सबका ये बहुत बहुत सौभाग्य है। राहीबाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: राहीबाई, तुमचा हमारे स्टूडियो में खूब खूब स्वागत है। मेरी मराठी ठीक नहीं है, माफ कीजिएगा, बट हमारी तरफ से दिल की शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत बहुत स्वागत।
5: धन्यवाद।
6: धन्यवाद।
4: तो जतिन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। हमारे श्रोताओं के लिए आज सच में बहुत ही भाग्यशाली दिन है कि हम राहीबाई जैसे इतने महान हस्ती के साथ, उनके अनुभवों के साथ जुड़ रहे हैं, और एक ऐसे विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं जिस विषय पे कई लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। सबसे बड़ी बात है, फील्ड से जुड़े हुए लोगों का भी ध्यान कम जाता है। राहीबाई जी एक महिला कृषक है, और कृषि क्षेत्र से भी जो लोग जुड़े हुए हैं वो समझते हैं कि केवल कृषि करना, फसल उगाना, उत्पादन

0: लाना, लोगों को खिलाना, यही हमारा लक्ष्य है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कृषि करने का सबसे पहला फाउंडेशन, जो आधार है, वो है बीज। उस बीज की गुणवत्ता, वो बीज की शक्ति, उस बीज में कितनी उत्पादन क्षमता है, वो निर्भर करता है बीज के गुणों पे। लेकिन बीज पे ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है, लेकिन ध्यान उस व्यक्ति का गया जिस व्यक्ति ने कृषि के प्राण को समझा, जिसने समझा कि कृषि का जो प्राण है, जो आधार है, वो उसके बीज से है। और वो व्यक्ति है हमारी राही बाई जी। आई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि पहला सवाल मैं आपसे यही करूं कि सब लोग किसानी कर रहे हैं, सब लोग खेती कर रहे हैं, आपका ध्यान बीज संरक्षण पे कैसे गया?
1: प्रश्न विचार लाई कि खूप सारे लोक शेती करतात, खूप साऱ्या लोकांकडे शेती आहे, परंतु बिया हे जे मूल आधार आहे वेगवेगळ्या पिकांचा किंवा शेतीचा, त्याच्यावरतीच तुमचं लक्ष कसं गेलं?
2: माझं लक्ष त्याच्यावर असं गेलं का हे शेतीतून आता खूप दुर्मळ होत चाललं होतं, हे भेटतच नव्हतं। आणि मग माझं एक स्वतःच्या अनुभवातून माझ्या पण शेतामध्ये खूप काही नवीन नवीन वाण केले होते, पण त्याच्यापासून माझ्या घरामध्ये थोडे आजार मला दिसत होते। मग त्याच्यामुळे मी माझ्याच बांधव उभारून, हा एक अभ्यास केला आणि बांधव उभारून विचार केला का आपण पहिले काय शेतीमध्ये पीक घेत होतो, आता काय पीक घेतोय, पहिलं कोणतं बी पेरीत होतो, आता कोणतं बी पेरीतोय, पहिलं आपल्या ताटामध्ये कोणतं अन्न खायला येत होतं, आता कोणता येतोय। म्हणजे हा मी फक्त माझ्या बांधव उभारून मी अभ्यास केला आणि मी माझ्या घरातलं बंद करायला लागले। तर मला काही दिवस बंद करताना पण काही दिवस मला घरातून विरोध झाला आणि नंतर मग विरोध झाला काही दिवस मी गप्प बसले, मग परत माझं कुटुंब ऐकायला लागलं। माझ्याच घरात एक अनुभव घेऊन मग तिथून परत मी जुन्याकडे वळले आणि जुन्याकडे वळून मग हे बरंच माझ्या पुरतं करत होते, मी बरंच सांगत होते लोकांना, पण त्यावेळेस माझं कोणी ऐकत नव्हतं, मला खूप हसत होते, खूप नाव ठेवित होते, पण मी माझं काम एक सुरूच ठेवलं होतं हे करायचं हे।
1: ठीक है, उन्होंने जो बताया कि ये पुराने जो बीज है या ट्रेडिशनल सीड है उसकी ओर मैं जाने का एक ही रीजन था। मेरे भी घर में केमिकल फार्मिंग या हाइब्रिड सीड लाए गए मेरे बच्चों की ओर से, और उन्होंने जो खेती शुरू की वो विद केमिकल और हाइब्रिड सीड, तो उससे यील्ड तो बढ़ा लेकिन घर में अलग अलग बीमारियाँ आने लगी। तो उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया राय भाई जी ने, और उसके बाद उनको लगा कि मेरा ओल्ड इज गोल्ड कहा है, मेरा पुराना बीज कहा है, उसको फिर से लाना पड़ेगा और खेती में फिर से बदलाव करना पड़ेगा। तब जाके उनको स्पार्क मिला कि नहीं, मुझे मेरा जो भी पुराना है वो फिर से खोज निकालना है, जहाँ भी रखा है उसको निकालना है। और वहाँ से वो क्रांति शुरू हुई और एक एक बीज जो पुराने थे उनको जोड़ना शुरू हो गया, और करीबन 53 क्रॉप्स के 116 वराइटीज अभी उनके जीन बैंक में उन्होंने कंजर्व करके रखी है, वो भी ट्रेडिशनली। जैसे कि उन्होंने कई सारे बीज मटके में, कई सारे बीज बाम्बू के बास्केट में कवर करके रखे हैं, तो बहुत सिंपल टेक्निक से।
0: इसका मतलब जिस बीज की जैसी आवश्यकता है उसको उस हिसाब से पालना मिल रही है और उसको उस हिसाब से हम केयर कर रहे हैं ताकि वो बीज जो है आगे चल करके और भी फसल दे। इसमें मेरे को एक चीज ये समझना था कि जब हमारे पास बीज आता है, एक तो होता है जो हम सीड शॉप से खरीद के लाते हैं या जो हमको दुकानों में मिलता है वो खरीद के लाते हैं, वो तो हमें पता है कि ये हाइब्रिड है, GMO है और जैसा भी है। दूसरा होता है कि कई लोग वहां से नहीं खरीदते, अपने दोस्तों से ले लेते हैं। मैं भी कृषक हूँ, आप भी कृषक है, मैं आपके पास गया और आपके पास से कुछ मैंने ले लिया, अभी मुझे उसकी पहचान ही नहीं है कि ये GMO वाला है, हाइब्रिड है और ये ओरिजिनल है, ये पुरातन वाला है, जो सबसे शुद्ध है, देसी है, वो है। तो क्या क्या पद्धति है? जरूर उनके पास कोई ट्रेडिशनल नॉलेज होगी, आपकी कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं, कुछ ऐसी संस्कृति में ऐसा होगा जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये जो बीज है ये ओरिजिनल बीज है, ये जो है ये मिलावटी बीज है, तो आप उसको कैसे पहचानते हैं?
1: राही भाई, त्यांचा प्रश्न है कि हाइब्रिड बियाणं किंवा जेनेटिकली मॉडिफाय केलेलं बियाणं आणि आपलं गावरान बियाणं याच्यातला फरक तुम्ही कसा जाणता? ते ओरिजिनल बियाणं हे तर तुम्ही कसं ओळख, हा महत्वाचा प्रश्न आहे त्यांचा।
2: हे बेन हे बेन जे देशी बेन आहे म्हणजे वजनेर म्हणजे देशी बेन हे बरोबर मला ओळखता येतं. कसं ओळखता येतं का, मी लहानपणापासून ते वाढीते ते लावीते त्याच्यामध्ये काम करते आणि मग मला असं वाटतं का आईला किती बाळ झाले तरी ते आईला ओळखू येतात. मग हे बी मी त्याला लहान मुलांसारखा जीवला येते मला बरोबर सगळं एक ना एक बी मला मी लिहिता वाचता येत नाही मला पुस्तकावरच काय अभ्यास नाही पण बी पाहिल्या पाहिल्या मला लगेच लक्षात येतं का हे बी हा घ्यावडे का हा वाले का हा पावटे का हा कारल दोडक हे सगळं काय राटबाज्या सगळं मला एक ना एक बी मला बघितल्यावर लगेच ओळखायला येत. का कसं ओळखायला का तो अनुभवातून ओळखायला येत कारण एक अनुभव मी त्याच्यामध्ये पहिल्यापासून लावते उगवते लोकांना देते. मग मला असं वाटतं का ते मी बाळ माझे स्वतःचे बाळ म्हणूनच मी त्यांचे नावं पण मी ठेवते आणि नावं पण मला पटकन ओळखता येतात. मग हाब्रेड बेन कोणतं गावठी बेन कोणतं मला लगेच ओळखायला येत फक्त बघून ओळखायला येत.
1: इन्होने काफी अहम चीजें बताई. सबसे अहम चीज उन्होंने बताई कि माँ को कितने भी बच्चे हो उनका कैरेक्टर उनको पहचानना माँ का काम होता है. और मैं तो सीड मदर हूँ बीज की माता हूँ तो मैं ये ट्रेडिशनली सीखी हूँ कि ओरिजिनल सीड कैसे पहचाने जाते हैं उसका रंग है या उसका साइज है या उसका जो कैरेक्टर होता है जो इनके माइंड में फिक्स है तो ये बचपन से सीखे आई है तो उसकी पहचान वो आराम से कर सकती है. और दूसरी एक चीज है ओरिजिनल और शुद्ध जो बी है बीज है वो तैयार करने के लिए इनके पास बहुत सारी माताजी और उन्होंने बनाई है करीबन 3000 वुमेन्स उनके साथ जुड़ी हुई है इस मूवमेंट में. तो उनको भी ये ट्रेनिंग दिया गया है कि ओरिजिनल कैसे पहचानना है क्वालिटी सीड को कैसे ग्रेडिंग करना है और ये मैन्युअली करती है अभी आगे जाके मशीनरीज अगर और उसको ग्रेडिंग का मशीन आएगा लेकिन अभी मैन्युअली करती है और ये सभी लोगों को ट्रेडिशनल नॉलेज उन्होंने दे रखा है.
0: तो जहां तक मैंने समझा और मैं समझता हूँ हमारे श्रोताओं ने भी पक्का समझ लिया होगा कि कहते भी ना जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी. तो अनुभव एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है हमारे पास जिससे सामने आने वाले किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान जरूर किया जा सकता है. अनुभव से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं. अनुभव में अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है. और जब वो बोल रही थी तब मुझे भी इस चीज समझ में आ रहा था कि वो कह रहे कि माँ के लिए बच्चों को पहचानना मुश्किल नहीं होता लेकिन माँ कैसे पहचान सकती बच्चों को क्योंकि एक दिल का नाता होता है एक रिश्ता होता है. तो राहीबाई जी और राहीबाई जी के साथ कार्य करने वाली जो 3000 हमारी माताएं हैं मैं समझता हूँ उन्होंने दिल से जोड़ा है खुद को कृषि से केवल बुद्धि से नहीं जोड़ा कि हमें भाई किसानी करना है पैसा कमाना है घर चलाना है वो तो होगा ही लेकिन जो उन्होंने मुख्य प्राण जिस चीज पे रखा है अपना जो लक्ष्य रखा वो ये कि हमको हृदय से करना है उस चीज को दिल से करना है. और जहां दिल जुड़ जाता है वहां पर अंदर ही अंदर आपको अनुभव होगा कि ये राइट है ये नहीं है अंदर ही अंदर व्यक्ति को समझ में आएगा. जतिन जी मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आपने पढ़ाई की है इस विषय की और इन माताओं ने कोई पढ़ाई नहीं की लेकिन जब आप अपने फील्ड से निकल के इनके साथ आए और इनके साथ जुड़े आप चाहते तो किसी कॉरपोरेट के साथ जुड़ सकते थे जुड़ करके खूब लाखों पैसा कमा सकते थे आप अपने पढ़ाई का ऐसा इस्तेमाल कर सकते थे जिससे कि आप बहुत बहुत बहुत धन कमा सकते थे लेकिन आपने चुना कि आप भोली भाली हमारे गांव की कृषक माताओं के साथ जुड़े उनके अनुभव के साथ जुड़े. तो क्या था आपका निर्णय क्यों आपने ये डिसीजन लिया?
1: एक्चुअली मैं शुक्रगुजार हूँ बायफ ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्टर मनी भाई देसाई जी का और जिन्होंने मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए लायक समझा. तो मैं मेरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं भी बाकी लोगों जैसा ही थॉट था मेरा कि कुछ कमाई हो जाए अच्छी जिंदगी जी जाए लेकिन जैसे मेरी पोस्टिंग जवाहर जो इलाका है ट्राइबल जोन है महाराष्ट्र का ठाणे डिस्ट्रिक्ट में तब वो आता था तो वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई और वो जवाहर इतना ट्राइबल एरिया है कि जिस समय मेरी 1995 में वहाँ पोस्टिंग की गई तो मैंने देखा कि दो टाइम का खाना नहीं है मेरे देशवासियों को इसलिए बच्चे मर रहे मेरे सामने. और मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ मेरा नॉलेज किसी कॉरपोरेट को दो या दूसरे देश को दो और वहाँ पैसा कमाऊँ उसके बजाय ये सही रहेगा कि मैं मेरे देशवासियों की सेवा करूँ जो बच्चे मर रहे हैं उनके लिए कुछ अनाज पैदा करने की एक नई तकनीक उनको दो और उनका जीवन अच्छा बना लो। तब से मैं ये मूवमेंट में जुड़ा हुआ हूँ और लास्ट 26 ईयर से मैं इस मूवमेंट को आगे चलाता आ रहा हूँ और मुझे खुशी है कि करीबन अभी तक मेरे सर्विस स्पैन में मैंने 1.5 लाख तक के परिवार, जो गरीब परिवार, ट्राइबल परिवार है, उनको अच्छी जिंदगी दी, क्वालिटी ऑफ लाइफ दी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड दिया और इसके लिए बायब जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ आज भी। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कई सारे कॉल्स मुझे आज भी आते हैं, मैं इंडिया के बाहर जाके भी रह सकता हूँ, विश्व का सबसे अच्छा देश नीदरलैंड में मुझे अच्छे कॉल्स थे, प्रोफेसर बनने का चांस था, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें दिल में नहीं आई, मेरे जहन में नहीं आई कि मैं मेरे देश को छोड़ के, मेरे गरीब लोगों को, किसानों को छोड़ के बाहर देश में जाऊँ और मेरा परिवार बसा। ये पूरा मेरा परिवार ही है, देश मेरा परिवार है, जैसे कि राही भाई है उस तरह मेरे पास करीबन 30-40,000 वुमेन्स होगी, उनका नेटवर्क होगा और उनके साथ मैं डे टू डे काम करता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है।
0: तो जैसा कि आपने बताया, मुझे लगता है आपने त्याग नहीं किया, आपने भाग्य जमा किया, अपने साथ साथ लाखों लोगों का भाग्य बनाया और इसलिए आपके पास बहुत दुआएं हैं और ये दुआएं जो है आपको आगे से आगे बढ़ा रही है, हर एक के दिल में बसा रही है। लोग आते हैं, बड़ा काम करते हैं और फिर चले जाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं फिर चले जाते हैं, फिर उन्हें कोई याद नहीं रखता, लेकिन उसे जरूर वो लोग कभी नहीं भूलते जिन्होंने उनके दिल में जगह बसाई होती है। आपने लोगों के दिल में जगह बसाई जतिन जी, इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस बात की।
1: थैंक यू।
0: और थैंक यू, जैसे आपने बताया ना कि मैं अपने देश के बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था, तो आप देश के बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं और राही भाई जी छोटे छोटे बीज के लिए कर रहे हैं, जिन बीज से फिर देश का भाग्य, देश की नियति जुड़ी हुई है। मुझे एक और सवाल राही भाई जी से ये पूछना था कि राही भाई जी एक पुरातन पद्धति के हिसाब से चल रहे हैं कृषि में, उनके बच्चे या उनके आसपास में जो दूसरे कृषक हैं वो रासायनिक पद्धति या कहो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर कृषि करना पसंद करते हैं क्योंकि उनको पैसा जल्दी चाहिए, अधिक चाहिए, तो क्या कभी उनको ऐसा नहीं आया मन में कि मैं भी कुछ कर लूं ऐसा, मेरे को थोड़ा लॉस हो रहा है, या क्या था उनका अनुभव इस विषय में?
1: राय मौशी, त्यांचा प्रश्न असा आहे की तुम्ही तर देशी बियाणं वापरून शेती करताय, परंतु आजूबाजूला असे शेतकरी आहे की जे रासायनिक शेती करतात, हायब्रिड बियाणं वापरून शेती करतात, तुमचं बघून ह्या लोकांना असं वाटलं नाही का आपण पण बदललं पाहिजे? ज्या पद्धतीने राईबाईंचं नाव झालंय किंवा ज्या पद्धतीने राईबाईंनी काम उभं केलंय त्यांचं अनुकरण झालं पाहिजे ना असं बाकी लोकांना वाटतंय का? आणि वाटत असेल तर ते किती मोठ्या प्रमाणावर आहे?
2: नाही वाटत, आता लोक आता जुन्याकडे वळलेत, लोक बरेच लोक जुन्याकडे वळले, सेंद्रियकडे वळले, कारण राईबाई सांगतच होती त्यांना, पण राईबाईचं खरं नव्हतं, पण आता कोरोनाने बरंच काय शिकवलं, कारण जे गावठी खात होते, खेड्यापाडीनी जे लोक राहत होते त्यांना कोरोना झालीच नाही, आणि शहरामध्ये सगळे घरात बसावले, सगळे घराच्या बाहेर पडायचं नाही, पण माझा शेतकरी बंधू कोणीच घरात बसावला नाही आणि तो रात्रंदिवस काम करीत राहिला, म्हणून तर बाकीच्यांना खायला भेटलं। मग याच्यामध्ये आता खूप लोक जुन्याकडे वळले आणि खूप बियाची पण खूप मागणी झाली, पण तरी अजूनही माझं असं स्वप्न आहे का प्रत्येकाच्या बांधापासून हे देशी बी गेलं पाहिजे, प्रत्येकाच्या ताटामध्ये विषमुक्त अन्न आलं पाहिजे आणि प्रत्येकाच्या घरापाशी परस बाग पाहिजे, प्रत्येकाच्या घरापाशी किचन गार्डन पाहिजे, तेव्हा मला माझं स्वप्न पुरं होईल का सगळे करावं लागले, म्हणून आता खूप बरेच काय वळले। आणि मी पण सांगते ते ज्याच्यामध्ये चमक आहे त्याच्यात धमक नाहीये, जे दिसायला चांगले ते आरोग्याला चांगलं नाही अशी मी ठिकठिकाणी लोकांना पण सांगते, आणि आता बऱ्यापैकी लोक जुन्याकडे वळले, तर माझ तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी मिळून जर हे केलं तर 100% सगळे लोक जुन्याकडे वळतील, पण हे सगळ्यांनी तुम्ही आम्ही मिळून केलं पाहिजे। आणि हे जे आहार आहे जे आपल्या ताटामध्ये वीज खातोय, हे वीज जर नाहीच केलं तर माझं एक स्वप्न पुरं होईल का आपलं काम कुठंतरी जगामध्ये गेलं, आणि याच्यासाठी माझ्या बरोबर एक बाईप संस्था खंबीरपणे उभी आहे। आता मी तर नाही शिकलेले, माझी तळमळ भरपूर होती जगा पसर जायची, पण खरं बाईप संस्था एक मला गुरु ज्ञान भेटलं आणि त्याने आज माझं काम बाई जगा समोर नेलंय, हा एक माझा मोठा अभिमान आहे आणि त्यांना सुद्धा मी धन्यवाद देते का त्यांच्या आज मी माझ्याच घरात बसेल असते, पण आज मला लोकांना याच्या माध्यमातून सांगता येतं, बोलता येतं, मी जरी नाही शिकलेली तरी त्या बियाचं एक ना एक बियाचं वैशिष्ट्य मी सांगेल. आमचं बी एक बी जर एक वर्ष पिकलं तर ते बी तीन वर्ष पेरता येतं. तसं हायब्रिड बी दरवर्षी घ्यायचं दरवर्षी पेरायचं आणि मातीच्या मटक्यामध्ये राखेत घालून ते 10 वर्षापासून खाण्यासाठी राहत पण पेरणीसाठी सुद्धा 3 वर्षी चालत. हे मी माझ्या हातानं जेवढं केलेलं आहे तेवढं मी सांगत असते. आणि हे कमी पाणी येणारे वाहन आहेत ना, हे हवे येणारे जे गाव देशी बी आहे कमी पाणी हवे येणारे वाहन आहेत. तसं हायब्रिड बी नाही त्याला खत औषध दिल्याशिवाय ते काहीच येऊ शकणार नाही. मग हेच मी शेतकऱ्यांना सांगत होते. याच्यासाठी तुम्ही आमच्या सगळ्याचे मते सगळ्यांनी मिळून केलं तर आपली पुढची पिढी खरोखर चांगली घडल. आणि पुढची पिढीला जर देशी खायला भेटलं विषमुक्त अन्न खाल्लं तर आपली पुढची पिढी सुद्धा समाजामध्ये काहीतरी चांगलं काम करेल. आणि ह्या पुढच्या पिढीसाठी तुम्ही आम्ही सगळं काम केलं पाहिजे आणि तुम्ही आम्ही सांभाळून ठेवलं पाहिजे.
1: बहुत ही अहम मुद्दे उन्होंने उठाए है. जैसे कि उन्होंने बताया कि रिप्लिकेशन तो हो रहा है, मेरा जो मॉडल है जो देसी सीड है यो बहुत सारे किसानों तक बहुत सारे गांव में जा पहुंचा है. लेकिन इस मूवमेंट को बड़ा करने के लिए सभी लोगों का सहयोग, सभी समाज का सहयोग उसमें होना चाहिए. और उन्होंने ये भी बताया कि बायब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, नहीं तो मैं मेरे गाँव में ही रहती, मेरा नॉलेज मेरे ही पास रहता. लेकिन ये ट्रेडिशनल नॉलेज को पूरे भारतवर्ष में लेके जाने के लिए बायप ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी सपोर्ट मुझे किया है. और दो तीन चीज़ें उन्होंने बहुत बढ़िया बताई, जैसे कि हर एक के प्लेट में केमिकल फ्री फूड आना चाहिए, न्यूट्रिशस फूड आना चाहिए. और भी एक बहुत मुद्दा उन्होंने अहम बताया कि न्यूट्री गार्डन जिसको हम किचन गार्डन कहते हैं, हर एक घर के पास किचन गार्डन डेवलप करना उनका एक सपना है और उसके लिए वो लास्ट 25 ईयर से प्रयास कर रही है. और ये न्यूट्री गार्डन का भी एक अलग सा मॉडल उन्होंने बनाया है जिसको कई सारे लोग IIT पवई से भी प्रोफेसर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ये सब लोग आके वहाँ वो सीखते हैं वो मॉडल. तो रिप्लिकेशन तो हो रहा है लेकिन उसको गतिमान बनाने के लिए सबका सहयोग चाहिए, ये उनका अपील
0: जी. और साथ में मैंने ये भी समझा कि उन्होंने बोला कि वो चाहते कि हमारा अगर हम कोशिश करके हमारे सामने वाली पीढ़ी को प्लेट पे विषमुक्त भोजन करा सकते हैं तो वो स्वस्थ होगा. और जब वो स्वस्थ होगा वो समझेगा कि भाई क्या मेहनत की जा रही है. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो ये प्रयास है, आपके इस प्रयास में ही हमारे जनरेशन के लिए आशीर्वाद छुपा हुआ है. और आपके इस आशीर्वाद से मैं समझता हूँ हमारे जो यंग जनरेशन है, जो युवा साथी हैं, जो बच्चे हैं, वो ज़रूर इंटरेस्ट लेंगे कि आप जो कर रहे हैं उसको वो समझे, सीखना चाहे तो सीखे और इस पद्धति को आगे बढ़ाए. मैं समझता हूँ भारत में जो ये पुरातन पद्धति है, जो शाश्वत खेती का जो तरीका है हमारे पास, वो बहुत ही शक्तिशाली. उसमें इतनी शक्ति है कि वो ना केवल किसान का पेट भर रही है, ना केवल वो कई लोगों का पेट भर रही है, लेकिन वो ज़मीन की भी स्वास्थ्य का ख्याल रखती है. जो हमारी पुरातन सभ्यता के अनुसार जो कृषि हम कर रहे हैं उसमें जमीन का स्वास्थ्य, पर्यावरण का स्वास्थ्य, जैव विविधता, ये सब कुछ उसमें समाया हुआ होता है. और इस वजह से वो जो है अहिंसक खेती है और उस खेती का इसके जो परिणाम है वो दुआओं से भरा हुआ है.
3: जब भी किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ हम बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके अनुभवों को सुनते हैं, समय का पता ही नहीं चलता. आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है. राही जी के अनुभव को सुनते हुए मुझे तो पता नहीं चला कि कब समय की सीमा आ गई. मुझे लगता है एक और एपिसोड में हमें और आपको मौका मिलेगा राही भाई जी के साथ, जतिन जी के साथ, उनके अनुभव को सुनने का, जानने का और सीखने का. तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप हमारे साथ हमारे अगले एपिसोड में ज़रूर बने रहिएगा. तब तक के लिए 90.4 FM रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को हमारा ढेर सारा प्यार और नमस्कार.
4: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार.
5: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से. तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखिए, उठा मेरा पैर लग गया. सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी. अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
4: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चले, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियालिटी ऑफ आर लाइफ टूडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: वीर सावरकर ने लिखा है कि सन 1857 के समर में युद्ध पद्धति और रणकौशल में राजा वीर कुंवर सिंह की बराबरी करने वाला कोई नहीं था। बिहार के जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाकर ये साबित कर दिया था कि जब मातृभूमि पुकारती है तो वृद्धों में भी जवानी लौट आती है। छापामार युद्ध में निष्णांत वीर कुंवर सिंह की चालों को अंग्रेज सेना नायक समझ नहीं पाते थे। कभी वे उन्हें धकेलते, कभी छकाते और कभी स्वयं पीछे हटकर अचानक दुश्मन पर हमला बोल देते। एक बार गंगा पार करने से पहले उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे बलिया में हाथियों पर चढ़कर गंगा मैया को पार करेंगे। अंग्रेज बलिया पहुंच गए, तब कुंवर सिंह ने शिवराजपुर नामक स्थान से नावों पर चढ़ाकर अपनी सेना को गंगा पार उतार दिया। अंग्रेजों को जब इस चकमे का पता चला तो वे शिवराजपुर पहुंच गए। अंतिम नाव में खुद कुंवर सिंह सवार थे। अंग्रेजों ने उन पर गोली चलाई जो उनकी कलाई में लगी। जहर फैल जाने के डर से कुंवर सिंह ने कोहनी से अपना हाथ काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया। 1857 के स्वातंत्र युद्ध में उन्होंने तलवार की जिस धार पर अंग्रेजी सेना को उतारा था, उसकी चमक आज भी इतिहास के पन्नों को चौंधिया देती है।
3: ढाबे की ये खुली हवा और ये चारपाई, पर कमबख्त नहीं है यहाँ तन्हाई।
4: लो भैया, पानी पी लो।
3: और छोटू भाई, काका कहाँ है?
4: बस आते ही होंगे भैया।
3: आनंद, तेरे को तो मजा आ जाएगा काका से मिलकर। जो कैरेक्टर तेरे दिमाग में है ना तेरी फिल्म के लिए, एकदम फिट है उसके लिए काका।
5: पर वो माने तब तो कोई बात है, और जैसा तुम लोगों ने बताया कि काफी पता है उनको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, तो ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी मुझे उन्हें समझाने में। बस यार ये हो जाए तो मेरी फिल्म का काम पूरा समझो। अब काका आएंगे कब तक यार? एक लोकेशन देखने भी जाना है मुझे आज।
3: पर ये बता, तूने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए ये रिसर्च वाला टॉपिक क्यों चुन लिया यार?
5: बस यार, मुझे बचपन से ही फ्रीडम मूवमेंट की कहानियां आकर्षित करती रही हैं, तो सोचा कि इस टॉपिक पर अपना बेस्ट आउटपुट दे पाऊंगा, और मैंने चुना भी थोड़ा मुश्किल कैरेक्टर है।
3: हाँ, वो बिहार के थे ना तेरे वीर कुंवर सिंह?
5: हाँ, 1857 की क्रांति ने देश को कई महान योद्धा दिए। कुंवर सिंह हमारे बिहार के थे, जो इन प्रमुख माने जाते हैं।
3: लेकिन मैंने तो इनका नाम नहीं सुना।
5: अरे, तात्या टोपे जहाँ छापामार युद्ध के नकारात्मक पक्ष के कुशल योद्धा थे, वहीं राजा कुंवर सिंह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पक्षों के सिद्ध हस्त योद्धा थे।
3: भाई आनंद, तुम खुद बिहार के हो तो ज्यादा मजा आएगा तुम्हें ये फिल्म बनाने में।
5: हाँ, वो तो है ही भैया।
3: अच्छा, उनको राजा कुंवर सिंह क्यों कहते थे?
5: असल में क्या है कि वो अपनी रियासत के जमींदार थे तो राजा कहलाते थे। उनका जन्म 1782 में बिहार के पुराने शाहबाद के जगदीशपुर में हुआ था। बचपन से ही कुंवर की दिलचस्पी पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद और युद्ध कला में थी।
6: अरे बचुआ, अरे थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी करेगा कि नहीं?
7: नहीं अम्मा, हम तलवार ही चलाएंगे।
6: अच्छा,
7: हाँ, और अब तो हम घुड़सवारी भी करेंगे, देखिएगा।
6: अरे
7: हम सबसे तेज घोड़ा दौड़ाएंगे।
6: अरे बचुआ संभल कर, देख गिरना नहीं।

0: प्रणाम कुंवर साहब, कहिए कैसा रहा शिकार?
1: बढ़िया, हमेशा की तरह बहुत बढ़िया।
2: माननीय अतिथिगण, सभी पदाधिकारी और यहाँ पधारे हुए जगदीशपुर के निवासियों, आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज ईसवी सन 1826 के दिन माननीय कुंवर सिंह जी का राज तिलक किया जा रहा है। आज उन्हें जगदीशपुर रियासत का शासक

0: अतिथिगण, सभी पदाधिकारियों और यहां पधारे हुए जगदीशपुर के निवासियों, आप सबने मुझे ये जिम्मेदारी देकर जो प्यार और सम्मान जताया है, उसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही ये विश्वास दिलाता हूं कि जगदीशपुर रियासत की बेहतरी के लिए तन मन धन से प्रयास करूंगा और अपने जिंदा रहते इस रियासत पर कोई आंच नहीं आने दूंगा।
1: कुंवर सिंह की जय। कुंवर सिंह की जय।
2: कुंवर सिंह ने न सिर्फ वादे किए बल्कि उसे निभाया भी। उन्होंने अपने शासन काल में ही हर वो काम किया जिससे प्रजा का भला हो।
0: शांत रहिए, शांत हो जाइए आप सब लोग। हमने आज आप सब लोगों को यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है ताकि रियासत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सके। हम चाहते हैं कि रियासत में आप जनता को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमने फैसला किया है कि जगदीशपुर में एक तालाब खुदवाया जाए और रियासत की सीमाओं से लगे जंगल का विकास किया जाए।
1: कुंवर साहब, जनता की बेहतरी के लिए आपने जो फैसला किया है उसके लिए हम सब आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन अगर आप आज्ञा दें तो आपसे एक विनती और करना चाहते हैं।
0: हाँ हाँ, बोलिए।
1: हम चाहते हैं कि आरा में जो भी बाजार का बनाया जाना प्रस्तावित है उसका नाम बाबू बाजार हो।
0: भाई, आप लोगों की जैसी मर्जी।
1: कुंवर सिंह की
3: साहब, अगर आप अनुमति दें तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूं।
0: बेझिझक कहिए हरकिशन जी।
3: कुंवर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे राज्य की कुल आमदनी 6 लाख रुपए है, जिसमें से हमें 1,06,000 रुपए अंग्रेजी सरकार को देना होते हैं।
0: हम आपका आशय समझ गए हरकिशन जी। हम जानते हैं कि हमारा हाथ बहुत ही खुला हुआ है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि खर्चे में ज्यादा से ज्यादा कटौती की जाए ताकि जनता और राज्य के हित में अधिक कार्य हो सके।
4: गुड मॉर्निंग सर।
5: गुड मॉर्निंग ऑफिसर, प्लीज बी सीटेड।
4: थैंक यू सर।
5: यस, कोई खास बात?
4: सर, सुना आए कि जगदीशपुर में कुंवर सिंह को राजगद्दी मिल गई आए।
5: ओह, दैट्स रियली गुड। वो तो हमारे भरोसे का आदमी है एंड आई थिंक अब वो शाहबाद के बाद सबसे बड़ी रियासत हो गई है।
4: यस सर, इन फैक्ट चाटबाट और रईसी में तो वो शाहबाद रियासत से भी बढ़कर आए।
5: ओह यस यस। वेल ऑफिसर, आई लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट हमारा गवर्नमेंट ने चार्टर एक्ट पास कर दिया है। इसका मुताबिक इंडियंस को अब बड़ी बड़ी नौकरियां मिल सकेंगी।
4: बड़ी बड़ी नौकरियां?
5: वेल, ओनली ऑन पेपर्स।
6: ठाकुर साहब, अंग्रेजों का चार्टर एक्ट तो अब तक छलावा ही साबित हुआ है।
7: ठीक है, कहते हैं आप, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी के फेर में अपनों की जमीन, अरे अपना गोत्र तक छोड़ दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं।
6: वैसे गोरों की हरकत और उन तमाम पिछली नीतियों पर अब भारतीयों की नजरें तीखी हो चली हैं। जमींदार जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं और देखिएगा, नए गवर्नर डलहौजी की हड़प नीति के कारण विद्रोह की आवाज बढ़ती चली जाएगी। हाँ।

0: सर, कुछ जमींदार लोग हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है।
1: Oh, don't worry. They can't do anything. They are very few. जल्दी ही उनकी आवाज को कुचल दो। Understand?
0: Yes, sir.
1: Okay. Well, और क्या रिपोर्ट है?
0: सर, आपने सतारा और अवध की रियासतों को कब्जे में ले लिया है। But
1: what?
0: But sir, नाना साहब को पेशवा की गद्दी से दूर रखना आसान नहीं है। He is a very popular person.
1: That's why it is much more important to keep him out of the frame. कैसे भी करके उसे पेशवा की गद्दी से दूर रखा जाए। हमको जल्द से जल्द हर छोटा बड़ा रियासत हमारा कब्जे में चाहिए। Is that okay?
0: Yes, sir.
2: डलहौजी की हड़प नीति के चलते हिंदुस्तान की कई रियासतों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। जहां झूठ, लालच और मान मुनव्वल से काम ना निकला, वहां सख्ती की गई। इसी दौरान मंगल पांडे की फांसी के बाद विद्रोह की ये हवा पवंडर में बदल गई।
3: कुंवर साहब, तुलसी प्रसाद, रणदलन सिंह और हरे कृष्ण जी आपसे मिलना चाहते हैं। कहते हैं कुछ खास काम है।
4: ठीक है, उनको आने दो।
5: प्रणाम कुंवर साहब।
4: प्रणाम। आइए, विराजिए। कहिए, कैसे आना हुआ?
6: कुंवर साहब, आप इस इलाके के सबसे रईस जमींदारों में से एक हैं। इसलिए हम लोग देश काल के संबंध में आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं।
4: कैसी चर्चा?
7: आप तो जानते हैं कि मंगल पांडे की फांसी के बाद जैसे देश में एक नई चेतना सी आ गई है। मेरठ से उठी ये आग कानपुर, आगरा, दिल्ली से होकर अवध और बनारस से होते हुए बिहार तक पहुंच गई है।
8: और जगदीशपुर इस क्रांति में भाग ले या ना ले, लेकिन प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा।
4: लेकिन क्रांति पथ पर अकेले कदम तो नहीं बढ़ाया जा सकता ना?
6: उसकी नौबत कहाँ आएगी कुंवर साहब? आपका इस क्षेत्र में बहुत प्रभाव है। आप हर वर्ग में बहुत लोकप्रिय हैं। आपकी एक आवाज पर ही लाखों नौजवान इकट्ठे हो जाएंगे कुंवर साहब।
4: तो फिर ठीक है, हम कुछ दिन हालात पर नजर रखना चाहते हैं। आप लोग हमें चल रही गतिविधियों की जानकारी देते रहें। भगवान ने चाहा तो मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
9: बहुत अच्छा। प्रणाम।
4: प्रणाम।
3: कुंवर साहब, अंग्रेज कमिश्नर की तरफ से कोई चिट्ठी आई है।
4: चिट्ठी? पढ़ो तो, उसमें क्या लिखा है?
3: जी, लिखा है कि 18 जून को पटना में एक बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी जमींदारों का आना जरूरी है।
4: हरकिशन जी, एक रणनीतिक सलाहकार होने के नाते मैं इस विषय में आपकी राय जानना चाहता हूँ।
3: हुजूर, मेरी माने तो बैठक में शामिल न होना ही बेहतर है।
4: वो भला क्यों?
3: जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये बैठक क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बुलाई गई है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अंग्रेजों को आपके क्रांति मार्ग पर चलने का पता चल गया हो, इसलिए संभव है कि आपको वहां बंदी बना लिया जाए।
4: जान का जोखिम भी है, यही ना?
3: जी।
4: ठीक है, तो कमिश्नर को लिख दो कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हम बैठक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
3: जी, बहुत अच्छा।
10: फिर क्या हुआ?
2: फिर तो जैसे कुंवर सिंह क्रांति पथ पर चलने के लिए उतावले हो उठे। इंतजार बस इसी बात का हो रहा था कि सही वक्त आए। इसी बीच उन्हें 1857 के विद्रोह के लिए निमंत्रण मिला, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब दानापुर के क्रांतिकारी उनके दल में शामिल हो गए और वे सब निकल पड़े क्रांति के पथ पर। कुंवर सिंह लखनऊ और अयोध्या होते हुए कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नाना साहब से मुलाकात की।
11: आइए कुंवर साहब, हमने लखनऊ और अयोध्या की आपकी यात्रा के बारे में सुना। हमें जानकर बेहद प्रसन्नता है कि आपने देशभक्ति के कठिन मार्ग को तब चुना है जब लोग सन्यास पर चले जाते हैं।
4: नाना साहब, सन्यास वन्यास तो मन की शांति है, और देश को ऐसे हाल में छोड़कर सन्यास लेना कायरता है। इसलिए हम 75 पार की इस उम्र में तलवार उठाने को मजबूर हुए हैं। हमने सुना है कि अंग्रेजों की नजर कानपुर पर है।
11: जी कुंवर साहब, लेकिन हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे,
4: और इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। आप निश्चिंत रहें।
11: कुंवर साहब, हम आपके तहे दिल से आभारी हैं।
4: ये तो मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य था। आपके और मेरे रहते ये विजय पताका यूं ही लहराती रहेगी। आप हमें आज्ञा दें, हम अपने दल के साथ आजमगढ़ जा रहे हैं।
11: लेकिन आप कुछ दिन कानपुर में विश्राम कर लेते तो?
4: नहीं नाना साहब, हमारा भतीजा अपने सैनिकों के साथ घाघरा नदी के दूसरी घाट पर हमारा इंतजार कर रहा है। बस हमें आज्ञा दें।
11: जी, जैसी आपकी इच्छा।
5: सर, कुंवर सिंह अब जमींदार नहीं रहा। इट इज अनएक्सपेक्टेड वो एक क्रांतिकारी बन गया है। उसने नाना साहब की मदद करके कानपुर पर फिर से कब्जा दिला दिया।
11: कुंवर सिंह को रोकने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। पहले तो उसे पकड़ने के लिए इनाम का अनाउंसमेंट करा दो।
5: इनाम?
11: यस, 10,000 रुपीस।
5: ओह, ओके सर।
11: एंड यस, उसके अगले मूवमेंट का पता लगाओ।
5: सर, एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो

0: sir. Gwar Singne Kanan Mig Regiment Ko Haradi Ai.
1: What?
0: Yes, sir. Ajum Gurke Kalei Per Bhi Unka Kabza Ogaya Ai.
1: Kabza? Kab Tak Karega Kabza? Allahabad Se Lad Kok. Aur Lucknow Se Lugaj Ko Bulao. Kile Ko Do Taraf Se Ghir Kar Us Par Attack Kar Do. I want Gwar Singne alive or dead.
2: गुर साहब, अंग्रेज हर हाल में इस किले को फिर से लेना चाहते होंगे।
3: चाहे वो जो कर लें, मगर किले को वो हमसे वापस नहीं ले सकते।
4: कुंवर साहब की जय हो।
3: कहो, कैसे आना हुआ?
4: आज्ञा हो तो कुछ कहना चाहता हूँ।
3: कहो।
4: कुंवर साहब, पता चला है कि अंग्रेज इस बार हमें दो तरफ से घेरने आ रहे हैं, जिसके लिए बड़े अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है।
3: यदि अंग्रेजों ने सचमुच दो तरफ से हमला किया तो किले को बचाना मुश्किल हो जाएगा।
2: कुंवर साहब, इस समय हम सबको किले से ज्यादा जरूरत है आपकी, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम जगदीशपुर की ओर कूच करें।
3: आप ठीक कहते हैं, वैसे भी हम एक बार तो इस किले को जीत ही चुके हैं।
5: साथियों, हमारी सेना का एक भाग यहीं रहेगा और अंग्रेजों का सामना करेगा, और हम दूसरे भाग को लेकर गाजीपुर होते हुए जगदीशपुर पहुंचेंगे और अपनी धरती से गोरों को खदेड़ देंगे।
6: भारत माता की
7: जय।
6: भारत माता की
7: जय।
6: भारत माता की
7: जय।
8: फिर क्या होता है?
9: फिर बाबू कुंवर सिंह अपनी रियासत जगदीशपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें अंग्रेज सेनापति डगलस से मुकाबला करना पड़ता है। वे उन्हें हराते हुए शिवपुर पहुंचते हैं। शिवपुर से आगे जाने के लिए उन्हें सेना सहित गंगा पार करनी होती है, जिसकी व्यवस्था पहले से होती है। लेकिन
10: लेकिन क्या?
9: लेकिन सेनापति डगलस अब भी उनके पीछे था।
5: साथियों, हमें जल्द से जल्द गंगा के उस पार जाना होगा। सेनापति डगलस कभी भी यहाँ पहुंच सकता है। चलिए, छोटे छोटे जत्थों में नाव पर चढ़कर पार करते हैं।
10: और आप?
3: आप लोग मेरी चिंता ना करें, मैं आप सबको पार कराकर ही उधर आऊंगा। जल्दी करो, जाओ सब लोग।

0: कुंवर साहब सभी पार कर चुके हैं, अब आप भी चलिए।
1: चलो।
2: There he is. अमला करो उस पर। देखो, बच नहीं ना पाए।
3: हे भगवान, आपके हाथ पर तो गोली लगी है।
4: रुको मत, नाव चलते रहने दो।
3: लेकिन आपका हाथ,
4: इस हाथ का साथ यहीं तक था।
3: ये आप क्या कर रहे हैं?
4: गंगा मैया, मेरी भेंट स्वीकार करो।
0: कुंवर साहब,
5: उन्होंने अपना हाथ काट लिया?
1: हाँ, उन्हें लगा कि जख्मी हाथ के चलते क्रांति पथ पर समस्याएं बढ़ जाएंगी, इसीलिए उन्होंने, है वो उस दिन गंगा पार करके वापस जगदीशपुर पहुंचे। वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया।
5: कुंवर साहब, आपका हाथ?
6: मातृभूमि की रक्षा के लिए एक हाथ क्या, अगर मुझे अपने प्राणों को भी कुर्बान

0: करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।
1: कुंवर साहब, अंग्रेजों को आपके जगदीशपुर आने और आपके घायल होने की खबर मिल चुकी है। वे लोग किसी भी समय यहाँ पर हमला कर सकते हैं।
0: आने दो, हमारे रहते जगदीशपुर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। साथियों, हमें लड़ना है, अपनी आखिरी सांस तक देश की सेवा करनी है। कुछ ऐसा करना है देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा ना रह जाए। कहिए, तैयार हैं आप सब लोग?
2: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,

साथियों, हमें पता नहीं कि हम खुशी व्यक्त करें या फिर दुखी हो जाएं। हमने जगदीशपुर पर तो आजादी का परचम लहरा दिया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे ज्यादातर साथी शहीद हो गए हैं। लेकिन वो मरे नहीं हैं, वे अमर हो गए हैं, सदा सदा के लिए। भारत माता की।

0: जगदीशपुर की विजय के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह मातृभूमि को याद करते हुए शहीद हो जाते हैं। अपने जीते जी उन्होंने अंग्रेजों को जगदीशपुर की रियासत पर कदम भी नहीं रखने दिया।
1: सच में आनंद रंजन भाई, समझ नहीं आता कि ये कहानी सुनकर हम लोग आनंदित हो जाएं या फिर रंज करें इस वीर को खोने का जो 75 वर्ष का युवा था।
2: सच में भाई, देशभक्ति की ऐसी मिसाल कम ही देखने को मिलती है।
0: हाँ, तभी तो अंग्रेज तक उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। कुंवर सिंह जी ने इतनी बार अंग्रेजों को हराया कि अंग्रेज इतिहास लेखक ने उनकी एक लड़ाई के बारे में लिखा है कि अंग्रेजी फौज की इतनी शर्मनाक हार हुई कि मुझे लिखने में भी शर्म आ रही है।
1: वाह भाई वाह आनंद भाई, आज तुमने बाबू कुंवर सिंह के बारे में इतने अच्छे से बताया कि दिल खुश हो गया
3: भाई। हाँ, और इसीलिए हमारी तरफ से यह चाय मुफ्त में।
4: निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
5: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
6: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
5: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: उड़ेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
1: उड़ेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: टूना, ओ टूना,
3: क्या रे,

0: आकाश श्रोताओं, मैं हूं नीतू जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर आई हूं जिसका नाम है कृष्ण जन्माष्टमी। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व और इसे मनाने के बारे में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा था। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन उसे आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। यह सुनकर कंस ने देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। समय बीतता गया और भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय चारों ओर अंधकार था, लेकिन भगवान कृष्ण के जन्म के साथ जैसे आशा और प्रकाश का संदेश फैल गया। वसुदेव जी बालक श्री कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे और उन्हें नंद बाबा और यशोदा मैया के घर सुरक्षित पहुंचा दिया। वहीं कृष्ण का बचपन प्रेम और आनंद के बीच बीता। कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट थे। वे अपने मित्रों के साथ खेलते, माखन चुराते और सभी का मन मोह लेते थे। बड़े होकर उन्होंने लोगों को अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने की सीख दी। उन्होंने कंस का अंत किया और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाई जाती है। जन्माष्टमी का महत्व केवल भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाना नहीं है, यह हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, साहस, बुद्धि, कर्म और सच्चाई का संदेश देता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों को सजाते हैं, भगवान कृष्ण की झांकियां निकालते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। रात के 12 बजे कृष्ण के जन्म के समय विशेष पूजा की जाती है। कई स्थानों पर दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें लोग मिलकर मटकी फोड़ते हैं। बच्चे कृष्ण और राधा का रूप धारण करके इस उत्सव में भाग लेते हैं। जन्माष्टमी हमें यह सुंदर संदेश देती है, जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब सत्य और धर्म की जीत अवश्य होती है। आइए इस जन्माष्टमी पर हम भगवान कृष्ण से प्रेरणा लेकर सत्य बोलने, दूसरों की सहायता करने और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने का संकल्प लें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद श्रोताओं, फिर मिलेंगे एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहे, खुशियाँ बांटे।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुनेरी आवाज।
1: ओ, रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। हैप्पीनेस इंडेक्स को जब देखते हैं आप समझ में आ रहा है कि वो कैसे ऊपर नीचे हो रहा था। ये भी समझ लिया हमने कि टेक्निक क्या है, कैसे उसे स्टेबल रख पाएंगे। बिलीफ सिस्टम्स को बदलने की बात थी, वो भी बहुत कुछ समझा। आगे और बढ़ाते हैं अपनी बात को। और जब हम बात कर रहे थे कि ट्रैफिक कंट्रोल, हर एक घंटे बाद कुछ देर अपने अंदर जो बच्चा है जो इधर उधर कहीं भाग जाता है उसे पूछें, वो ठीक है, उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई, या उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बरकरार है। तो आज बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: आपका हैप्पीनेस इंडेक्स तो हर बार ही स्टेबल होता है, बट बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं। आपसे शुरू करते हैं, कभी आपके साथ भी ऊपर नीचे होता
1: है? ऑफ कोर्स, एवरी डे आई थिंक कुछ ना कुछ बातें तो आती हैं जैसे, लेकिन अब क्या है, सिर्फ ईजियर है। पहले मुश्किल था एंड दैट्स द जर्नी, कि वो डे बाय डे ईजियर होता जाएगा। अवेयरनेस ऐसी चीज़ नहीं आज सोचा
0: कल
1: एंड आज हो गया, बिकॉज वट एवर वी आर डिस्कसिंग हेयर ये डीप चीज़ें हैं और हमारे बहुत डीप रूटेड संस्कार्स हैं जिनको हम ऊपर ऊपर से नहीं ठीक कर सकते। कई बार ऐसा लगता ठीक हो गया, यू नो यू से ओके ये प्रॉब्लम थी मेरी सोचने के तरीके में, मैंने एक दूसरी थॉट क्रिएट की, ठीक हो गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज इट हैज़ क्रीप्ड अप अगेन। ये कहाँ से ये वैसे वाली थॉट्स फिर से आ रही है। इट्स जस्ट दैट नाउ फोकस इज़ वेरी क्लियर, उसमें कन्फ्यूजन कभी नहीं होता कि दूसरा ठीक होगा तब मेरा मूड ठीक हो जाएगा। आई एम नॉट वेटिंग फॉर दैट। मुझे ये पता है कि ये मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ और जितना जल्दी डिसाइड करूँगी तो उतना जल्दी उसको ठीक कर लूँगी। सो आई ऑलवेज जस्ट हैव टू स्टॉप एंड टेल माई सेल्फ कब तक का प्रोग्राम है इस हालत में रहने का। थिंक अबाउट इट, कितनी देर तुम्हें इस तरह से कन्फ्यूजन में, दर्द में, हर्ट में रहना है। And then, you know, that question itself says, okay, okay, fine, I know I was going on the wrong track. And you stop and you say, ध्यान रखना शुरू कर दो। जैसे हमने पहले भी देखा कि let go करना है, जो पकड़ा हुआ है उनको जल्दी जल्दी छोड़ते जाओ। जितना देर पकड़ के रखते हैं उतना फिर छोड़ना मुश्किल होता है। इसी तरह एक और चीज़ का जो हम ध्यान रख सकते हैं, एंड दैट इज़ let be, let people be the way they are। अगर आप एक दिन चेक करो या एक घंटा भी चेक करो, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा औरों के जीवन में इंटरफेयर करता है। मतलब कोई इसके पास कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मन को एक आदत पड़ी हुई है औरों के जीवन के बारे में सोचने की। तो लेट एवरीवन, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं, लेट देम बी एंड यू नो स्टॉप इंटरफियरिंग इन पीपल्स लाइव्स। उन्होंने मांगा नहीं है हमसे हमारा ओपिनियन, और ये ओपिनियन ज़रूरी नहीं हम शब्दों में दे रहे होते हैं, हम अंदर ही चल रहे होते हैं। राइट फ्रॉम अ पर्सन, यू नो यू सी अ पर्सन एंटरिंग, हम उनकी लुक्स पर क्रिटिकल हो रहे हैं, हम उनकी ड्रेसिंग सेंस पर क्रिटिकल हो रहे हैं,
0: उनके बिहेवियर पर, यू नो कैसे वो बात कर रहे हैं, हर चीज पे हम जो है वो
1: कॉन्स्टेंटली। तो क्या होता, एक एक मोमेंट, जैसे हमने देखा इट्स वन मोमेंट, माई लाइफ इज अ सीरीज ऑफ मिनट्स, एक एक मिनट ऐसे पास हो रहा है। अब जितने मोमेंट्स हम औरों के बारे में सोच रहे हैं उतनी देर हम अपने बारे में
0: नहीं सोच रहे हैं,
1: और हम फिर उनके बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एंड वेन एवर वी थिंक और डू समथिंग विच इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, वो मेरी एनर्जी को वेस्ट करता है। लेट्स से कि मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा ब्रिक है, अभी मेरे में उतनी ताकत नहीं है उसको तोड़ने की, लेकिन मैं उसको तोड़ने की कोशिश करूँ तो वो टूटेगा नहीं। आधा घंटा, एक घंटा ट्राई किया, लेकिन आफ्टर दैट हाउ विल आई फील, मेरे को बहुत थका हुआ फील होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एनर्जी बहुत लगाई वो काम करने में जो कि मेरे से हो नहीं सकता। तो दिस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये एक एक थॉट हमारी एनर्जी कंज्यूम करता है, एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए हम हमेशा यही याद रखते कि सारा दिन ड्रामा चल रहा है, हर एक एक्टर अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। लेट्स नॉट राइट अदर पीपल स्क्रिप्ट। ये जो हम स्क्रिप्ट सारा दिन औरों की लिख रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इनको ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए था, ये भी कोई बात करने का तरीका है, थोड़ा सा तो पोलाइटली बोलते, ये नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है इनके अंदर। वी आर राइटिंग देयर स्क्रिप्ट, दे आर फाइन द वे दे आर। लेकिन हम उनकी स्क्रिप्ट लिखते लिखते हम ये सोचना भूल जाते मुझे क्या बोलना चाहिए था। अब ये लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप हर एक सीन में देखेंगे, इवन अ सिंपल थिंग लाइक सपोज बोथ ऑफ अस हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हम किसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन बढ़ते बढ़ते एक आर्ग्यूमेंट बनती जा रही है, लेकिन डिस्कस करते करते मेरा ज्यादा ध्यान किस पर होता है कि आप क्या बोल रहे हो, आपको क्या बोलना चाहिए था, आपको क्या नहीं बोलना चाहिए था, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है. तो इट्स जस्ट लाइक अ ड्रामा. आज अगर हम थिएटर देखने जाए तो ड्रामा स्मूथली परफॉर्म तब होगा अगर हर एक एक्टर
0: अपने पे काम करे ना.
1: अपने पर काम कर रहा है. एक बार हम एक थिएटर परफॉर्मेंस देख रहे थे इन विच इट वॉज अ मोनो एक्टिंग, यू नो, एक ही था एक्टर. And that one actor was playing a lot of roles. It was a very, very powerful performance. उनके बहुत dialogues थे उनको जो बोलना था. And उन्होंने वो play, मतलब अनगिनत बार वो कर चुके थे. It was a very, very popular performance, worldwide travel. अब इस चीज़ में अगर आप देखें तो उस actor को वो dialogues तो by heart याद होंगे, मतलब बिना effort के भी वो अब बोल सकते हैं. और उस दिन क्या हुआ, जैसे ही वो perform कर रहे थे तो in the middle of the play किसी का mobile बज गया. You know, and that actor went blank. He just stood. He just didn't know कि मुझे next क्या बोलना है. और उनको ऐसा 2 मिनट लगा. उन्होंने फिर जैसे you know he just stood still, silent. 2 minutes के बाद he said sorry, and then he said I request you to please keep your mobiles on silent. And then he started his performance. तो वो देखते हुए just the thought which came to me is कि actor अपने role पर और अपने dialogues पर इतना concentrated है fully कि एक छोटी सी distraction भी और वो अपने role और अपना dialogue भूल गया. हम सारा दिन अपने जीवन कैसे जी रहे हैं? हम तो अपने mind को हर तरफ distracted होने दे रहे हैं. हमें अपना role और अपना dialogue
0: पता ही नहीं है ना,
1: से ध्यान में रहने वाला
0: है, अवेयर ही नहीं है बिल्कुल भी, यू नो,
1: कैसे ध्यान में रहेगा. एंड देन हाउ विल वी गिव आवर बेस्ट परफॉर्मेंस टू एवरी रोल दैट वी आर प्लेइंग, बिकॉज़ हम तो अपने रोल में है ही नहीं. सी इफ आई एम हियर, लेकिन मैं अपने बजाय औरों के रोल्स और औरों के डायलॉग्स के बारे में सोच रही हूँ. आई एम नॉट देयर इन माई रोल. हाउ विल माई लाइफ बी? एंड फिर सब कुछ करते हुए भी हम कह रहे हैं वो अनुभव नहीं हो रहा, वो जीवन में जो सक्सेस चाहिए वो कैसे सक्सेस होगी. आज एक एक्टर को क्यों अच्छा लगता है परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि वो अपने रोल में अच्छी तरह से इन्वॉल्व था. हम किसी भी थिएटर एक्टर को जाकर पूछ सकते हैं, अगर 2 आवर्स के प्ले में वो सिर्फ औरों के रोल के बारे में सोच रहे थे, हाउ डिड यू एंजॉय योर परफॉर्मेंस टुडे?
0: नहीं होता, कभी भी नहीं होता.
1: यू आर अ थिएटर एक्टर, तो आप एक दिन वो करके देखो. एक तो आप बीच में ही अटक जाओगे, आई थिंक इन द मिडल.
0: जैसे हम दूसरे को करेक्ट करने लगते हैं ना, खुद का अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है, ओ यस,
1: खत्म हो जाएगा.
0: थिएटर में भी हर परफॉर्मेंस से पहले 5 मिनट का साइलेंस रखते हैं.
1: Yes.
0: 5 मिनट का साइलेंस रखते, उसके बाद यू नो 1 आवर बिफोर द शो, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, वी जस्ट गो इनटू साइलेंस. हम उसके बाद बात नहीं करते.
1: Right.
0: एक पूरा मेडिटेट करने के बाद 5 मिनट तक अपने साथ, देन एक्टर रिमेन्स with oneself.
1: तो अब जो वो जो, see, I didn't know this, but अगर वो 5 मिनट का साइलेंस करते हैं, वो क्या प्रयास कर रहे हैं कि सारी डिस्ट्रैक्शन से, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी, हर तरफ से हटकर अब आ जाओ सिर्फ और सिर्फ अपने रोल के ऊपर, क्योंकि ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस. एंड हम अपनी पूरी परफॉर्मेंस, अपना पूरा प्ले कर रहे हैं विदाउट बींग इन द सीन. एंड तब हमें अपने इस प्ले में उतना मजा नहीं आ रहा है जितना मजा आना चाहिए, क्योंकि हम तो अपना रोल प्ले ही नहीं कर रहे. वी आर कॉन्स्टेंटली प्लेइंग समबडी एल्सेस रोल. एंड कहीं ना कहीं शायद हमने अपना रोल ही ये बना लिया कि औरों के रोल के अंदर
0: हमने अपनी अपनी बात डालनी है.
1: अब ये जो हम औरों की स्क्रिप्ट सारा दिन लिखने की कोशिश करते रहते, इसके पीछे कौन सा बिलीफ सिस्टम होगा? व्हाट विल बी द बिलीफ सिस्टम?
0: ही इज रॉन्ग, द अदर पर्सन डजंट नो, आई नो बेटर.
1: सो वन, I can control the other person. ये एक deep belief.
0: Because I'm trying to change, you know, I'm trying to do things better for him.
1: तो लेकिन ये तो मेरा belief है ना कि आप मेरे control में हो. मैं अगर आपको बोलूँगी,
0: तो आप करोगे.
1: आप करोगे. So this is a very very deep belief कि लोग मेरे control में हैं.
0: करें, करना चाहिए उन्हें.
1: लेकिन जब हम बोल रहे हैं, अब उनको जब हम you know रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, या उनके प्रति judgmental हो रहे हैं, thought तो यही है ना कि ये सारी दुनिया
0: मेरे कंट्रोल में
1: है, और ये सारी दुनिया मेरे चाहने के अनुसार चलनी चाहिए. दिस इज अ वेरी डीप बिलीफ सिस्टम. द वर्ल्ड शुड गो अकॉर्डिंग टू माय लाइक्स, माय डिजायर्स, माय एक्सपेक्टेशंस. एंड आल्सो सेकंड बिलीफ सिस्टम, माय हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन देयर बिहेविंग द वे
0: आई वांट
1: देम टू बिहेव. तो इसलिए अपनी ही खुशी के लिए ही, सारा कुछ खुशी के लिए है, अपनी खुशी के लिए औरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते और उस प्रोसेस में अंदर ही अंदर और दर्द क्रिएट करते जाते। सो एक दिन के लिए ट्राई कर सकते हैं जस्ट राइटिंग।
0: किसी कॉर्पोरेट बॉस के बारे में बात नहीं कर रहे थे हम, आम अपनी जीती हुई, चाहे आप माँ हैं चाहे आप सबॉर्डिनेट भी हैं, you know?
1: जैसे माँ आपने कहा एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ये कंट्रोल का फीलिंग बहुत ज़्यादा आता है। इवन एक पेरेंट को किस कॉन्शियसनेस से अपने बच्चों को बड़ा करना चाहिए कि ये आत्माएं हैं जो मेरे घर में आए हैं, मेरा रोल है एक तो इनको फिजिकल प्रोटेक्शन देना, इंटेलेक्चुअल जो भी इनकी ग्रोथ कराना, बाकी मेरा रोल है इनको वो एक एनवायरनमेंट देना, इनको वो पालना देना, एंड देन लेट देम टेक देयर लाइफ द वे दे वांट, नॉट लेट देम डू एंड बिकम व्हाट आई वांट। यू नो लॉट ऑफ अस आर ट्राइंग टू मेक आवर चिल्ड्रन what we want, it's not, yes we are there to guide, but then we are there to guide.
0: तो कितनी बार तो कहते हैं कि अगर तुमने मेरा ही सपना पूरा नहीं किया तो फिर मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? Again we need to check actually.
1: इसको चेक करने की चीज है कि उस आत्मा की अपनी जर्नी है, अपने यू नो लाइक्स डिसलाइक्स डिजायर्स जो भी सारा कुछ है, अपनी क्रिएटिविटी है। हम सोच रहे हैं वो हमारे थॉट पैटर्न से अगर अपना रोल प्ले करे तो उसकी अपनी क्रिएटिविटी दब जाएगी एंड दैट सोल विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस, क्योंकि वो अपने थॉट से भी नहीं चल रहा और मेरे थॉट से तो वो कर ही नहीं सकता। सो इवन एज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमें एक गाइड की तरह बनना चाहिए ना, एक फैसिलिटेटर की तरह जो हमेशा है, ऑलवेज अवेलेबल, बट टू हेल्प मी, टू गाइड मी, नॉट टू कंट्रोल में। तो उससे वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत हेल्दी हो जाएगा। लेकिन हम ट्राई करते हैं कि हम हमेशा उनको रोकते हैं हर चीज़ पे ताकि उनकी लाइफ हमेशा स्मूथ चले। हम कितना भी ट्राई करें उनके अप्स एंड डाउन्स तो आने ही वाले हैं, बट अगर हम उनको गाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते, तो वो अपने अप्स एंड डाउन्स को तो
0: हैंडल कर,
1: खुद ही फेस कर लेंगे। वी आर थिंकिंग कि हम बच्चों को इतना राइट राइट राइट दिशा पर ले जाएं कि इनके जीवन में कभी कुछ प्रॉब्लम ही ना आए। दैट्स नॉट द वे टू लुक एट इट। इट हैज़ टू बी हम उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना दें ताकि जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी चैलेंज आएगा, दे विल बी एबल टू जस्ट क्रॉस इट, एंड दैट विल ओनली हैपन इफ आई फैसिलिटेट। यू नो एक मेंटर जैसे होता है, एक गाइड जैसे होता है, नॉट अ कंट्रोलर। तो हम पेरेंट्स कंट्रोलिंग वाली जो एटीट्यूड लेकर चलते उससे हम उसकी क्रिएटिविटी को दबा देते हैं। तो एक दिन ट्राई करेंगे स्क्रिप्ट नहीं लिखने के लिए औरों की,
0: और इसके लिए खुद अवेयर होना पड़ेगा। सी अब जब हमने अपने ऊपर बात करनी शुरू की है, अपने अपनी हर सोच को देखना शुरू किया है, तब रियलाइजेशन ये हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। आई थिंक समवेयर हमें ये फीलिंग कि मेरा कंट्रोल है दूसरे के ऊपर।
1: हाँ, सी दैट फीलिंग कि मेरा, अगर हमें किसी को भी बताना भी है, इट शुड बी लाइक दिस इज माय ओपिनियन, यू नो यू कैन टेक इट इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू हैव टू डू इट दिस वे एंड देन एक्सपेक्टिंग कि वो करेंगे ही वैसा एंड देन गेटिंग एंग्री
0: वो
1: नहीं कर पाते हैं उस तरह से। तो उससे फिर क्या हो जाता है, उनको राइट और रॉन्ग सिखाने के प्रोसेस में हम जब हर्ट हो जाते तो हमारा रोल क्या हो गया? मैंने तो
0: अपने रोल पे तो काम किया ही ना,
1: अपना रोल। अगर मुझे आज आपको देखकर गुस्सा आ गया क्योंकि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, लेट्स से यू हैव कमिटेड अ क्राइम एंड मुझे गुस्सा आ गया, तो आपने तो जो भी गलत किया सो किया, वो आपके रोल का। मैंने जो गुस्सा किया, मैंने जो हर्ट क्रिएट किया, तो मेरा रोल भी तो खराब हो गया ना। तो पहले मेरे अपने रोल पर मुझे ध्यान देना, देन आई कैन प्रोबेबली शेयर विद यू और गाइड यू। बट आपके रॉन्ग को क्रिटिसाइज करने के लिए मैंने अपने भी रोल को खराब कर दिया, तो हर एक एक्टर का रोल
0: खराब होता गया ना फिर। हाँ, तभी तो ड्रामा खराब होने लग गया। अच्छा खासा जो है प्ले चल रहा है उसको अगर हम एक मिनट में खराब
1: एक नॉर्मल प्ले में भी अगर देखते थिएटर पे, लेट्स से हम अभी उस प्ले में हैं एंड मुझे अपनी लाइंस भूल गई, तो जो बाकी एक्टर्स हैं स्टेज पर उनका क्या रोल होता है?
0: वो कभी भी पता नहीं चलने देते किसी को भी कि ऐसा हुआ, इतना फटाफट डिजाइन कर लिया जाता
1: लेकिन
0: है।
1: लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने ही रोल पर और अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करते ताकि उनके रोल और उनके डायलॉग से मुझे वो क्यों मिल जाएगा कि वेयर वॉज आई मेकिंग अ मिस्टेक. दे डोंट स्टॉप एंड टेल मी द लाइन्स, दे डोंट स्पॉयल द हार्मनी ऑफ द ड्रामा, यू सी. तो सिमिलरली अगर कोई मेरे आसपास कुछ गलत कर रहा है, गलत डायलॉग बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू मी गलत डायलॉग, गलत लाइन, सब कुछ, आई कैन जस्ट टेक केयर मोर ऑन माई रोल, यू नो, और भी ज़्यादा ध्यान रखे कि आई विल नॉट गेट हर्ट, आई विल रिमेन स्टेबल. तो दैट माइट गिव द क्यू to the other person
0: ki oh ho main bhatak gaya tha, meri line to ye thi.
1: yes, lekin jahan wo bhi lines apni kharab kar di, maine bhi apni lines kharab kar di, and then gradually hum dono ne apni lines ko, dialogue ko puri tarah se itna messed up kar diya, then that scene becomes very very unpleasant, and fir wo drama hame pasand nahi aata, fir hum kehte ye jeevan aisa kyu hai. to ye wali ek point ki let everyone be, ye hame yahan safai rakhne mein बहुत मदद करेगी, क्योंकि हम बहुत एनर्जी, और देखो ना हम कितने लोगों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, एक दो की लिख रहे हों, चार की लिख रहे हों तो भी ठीक है, हम सारा दिन में कितने एक्टर्स की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करते.
0: उसे ऐसा कहना चाहिए था. हाउ मेनी टाइम्स वी से दैट ही शुड हैव सेड दिस.
1: Yeah, is this the way to speak? This is this
0: he
1: what
0: should
1: he should have
0: done this.
1: Should have, you know, should have. It's not, no, we don't even say he could have said this. No, he should have said this. Means
0: this, we'll go. This is what, you know, this is how the world should be.
1: Yeah, why? Because this is the way I would like the world to be. तो इसको एक होमवर्क के रूप से देखें कि आज एक दिन ट्राई करें. How do you feel जब आप औरों की स्क्रिप्ट में इंटरफेयर न करके
0: लोगों को कंट्रोल एक्चुअली करना बंद कर दें, इवैल्यूएट करना बंद कर दें. अमेजिंग, यू नो हाउ वी डू.
1: और ये जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है. इसका हमें बहुत, जैसे आपने आज शुरू में भी कहा ना कि आपका ऊपर नीचे होता है कि नहीं, आई हैव सीन सबसे ज्यादा कारण ऊपर नीचे होने का यही एक होता, जैसे ही मेरा फोकस जाता है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसा नहीं, देयर इट्स गॉन. दैट स्टेबिलिटी है. मॉर्निंग में उठे, मेडिटेशन किया, इट्स वेरी नाइस, यू आर एब्सोल्युटली लाइक दिस, एंड देन द माइंड गोज इनटू इनको क्या बोलना चाहिए था, इनको क्या करना चाहिए था, एंड देयर यू गो. अगर आप वो एक चीज पर वर्क कर लो, आपका माइंड ऐसे रहेगा. देयर इज नथिंग एल्स आउट देयर इन द वर्ल्ड जिससे कोई भी डिस्टर्बेंस होने वाली है. ये हम जब हो जाते हैं, सो राइट नाउ I am constantly trying to look in this, and I can just say it's easy, but requires lot of attention. क्योंकि ये बहुत जल्दी slip off हो जाता है. ये ऐसा संस्कार है कि you know we try to remind ourselves, and then before we are aware, 10 minutes बाद I suddenly see oh my mind is again thinking about someone else, and again we किसी के बारे में judgment pass कर रहा है. What a waste of energy. Come back. लेकिन वो करते करते I can see कि वो परसेंटेज कम होती जा रही है, कम होती जा रही है. एटलीस्ट मेरी लिस्ट कम होती जा रही है कितने लोगों के बारे में आई एम थिंकिंग, एंड नाउ दैट लिस्ट इज कमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, एंड वी नीड टू फिनिश इट. क्योंकि कोई भी नहीं है जो मेरे कंट्रोल में है. पहले तो क्या हो रहा था, गाड़ी चलाते हुए भी हर एक ड्राइवर के ऊपर भी कमेंट पास हो रहा था, कैसे चला रहे हैं, लाइन में नहीं खड़े, टोल पर खड़े हैं, गलत साइड से ओवरटेक कर रहे हैं. जस्ट थिंकिंग अबाउट एवरीवन, उन्होंने तो फिर भी ओवरटेक करना है, लाइन को तोड़ देते हैं, टैग की लाइन में कैश भर, ओ देयर इज सो मच टू गेट डिस्टर्बड अबाउट, यू नो, इफ यू अलाउ योरसेल्फ टू गेट सक्ड आउट, there is just too much happening.
0: I think for some time, you know, for some time we need to really focus on ourselves actually, and we should become little selfish.
1: No, very selfish.
0: I keep on saying this because I understand, you know, hum jaisa aapne kaha bahar continuous observe karte rehte hain, aur wo hum observe, aur hum kehte hain hum to neutral observer hain, lekin hum kitni sari cheeze un par
1: neutral honge to yahan disturbance nahi hoga na. Agar aap detached hokar dekho, abhi bhi if I am standing in the traffic jam, I can see people where they are making their mistakes, they are overtaking wrong, but
0: it's not
1: does
0: affecting
1: it
0: you
1: create anything here. अभी भी दिख तो रहा है ना, आंखें कान बंद थोड़ी है कुछ भी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए. ओके, दिस बिकम्स एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्ट करें कि हर एक अपना अपना रोल अपने अपने अनुसार प्ले कर रहा है, एंड दे हैव द राइट टू डू इट. एवरीवन, मेरे अंदर बहुत कुछ है अभी, विच पीपल मस्ट बी सिटिंग एंड थिंकिंग दैट आई एम रॉन्ग, बट आई एम फीलिंग दैट वट एवर आई एम डूइंग इज राइट. तो इसी तरह सामने वाला भी जो कुछ भी कर रहा होगा, इवन अगर वो रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है, लाइन तोड़ रहा है, उसके पास उस टाइम कुछ ना कुछ लॉजिक होगा उसके लिए. और जैसे ही हम ये लेट बी करना शुरू करते, एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन को, लोगों को, कि हर एक अपने अनुसार अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, एंड एवरीबडी इज एक्यूरेट इन द रोल दे आर प्लेइंग. यस, इफ समबडी आस्क्स मी फॉर हेल्प, इफ समबडी वॉन्ट्स मी टू गेट इन्वॉल्व इन देयर ड्रामा, यू नो, किसी का अपना कोई ड्रामा है एंड समवन सेज यू नो प्लीज गेट इन्वॉल्व ताकि आप हमें हमारे ड्रामा में कुछ हेल्प करो, लेकिन उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा
0: इन्वॉल्वमेंट,
1: लेकिन नॉट उसके अंदर हम इतना घुस जाएं कि उस सीन की उन एक्टर्स की जो इमोशन है
0: वो हमें हम करने लगे, लेकिन वो एक्चुअली होता बहुत कम हो पाता है
1: क्योंकि क्या होगा जैसे आपने कहा अगर इफ योर रोल सी यही पेरेंट के रोल है, यही बॉस का रोल है, ये टीचर का रोल है, क्योंकि हमारा रोल है किसी तरह तब कि हम औरों के ड्रामा में थोड़ा सा इन्वॉल्व्ड हैं क्योंकि हम गाइड हैं, हम फैसिलिटेटर हैं, लेकिन वो रोल कहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब होता जब वो दूसरे एक्टर के इमोशन हमारे ऊपर ओवरपावर कर जाते हैं। बच्चा दर्द में है, मेरा रोल है उसके साथ बैठना टू फाइंड आउट व्हाट हैज गॉन रॉन्ग एंड टू शेयर विद हिम व्हाट इज द राइट वे एंड वो कैसे ठीक कर सकता है, कहाँ वो गलत जा रहा है, एवरीथिंग आई हैव टू डू। लेकिन अगर मैंने सेम दर्द क्रिएट कर लिया जो बच्चा है, या शायद मैं बच्चे से भी ज्यादा दर्द में एज अ मदर मैं चली गई, देन समवेयर आई विल नॉट बी एबल टू प्ले माय रोल प्रॉपरली, क्योंकि जब एक बार यहाँ दर्द क्रिएट हो जाता तो वो क्लैरिटी ही खत्म हो जाती कि ये क्यों, क्या, कैसे इसको ठीक करना है, इट गोस अवे।
0: लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि जब हम रोल प्ले की बात करते हैं, लगता है कि बड़ा मैकेनिकल हो गया, यू नो, समवेयर डीप विद इन, बिकॉज वी एंजॉयड इट सो मच, और लाइक वी थिंक अगेन ये बिलीफ सिस्टम है कि यही ऐसे ही तो जीना है, ऐसे ही मुझे रोल प्ले भी करना है अपना,
1: रोल प्ले करना है, ये मैकेनिकल होने के बजाय क्रिएटिव हो जाता है। मैकेनिकल तो अभी तक चल रहे थे,
0: ऑटोमेटेड मूवमेंट।
1: हाँ, और मैकेनिकल क्या होता है जहाँ चॉइस नहीं है कि बच्चा दर्द में है तो मैकेनिकल है कि पेरेंट ने दर्द में जाना ही है। मैकेनिकल मीन्स ऑटोमेटिक, बटन दबाया और हो गया, उसने गुस्सा किया तो मेरा बटन यहाँ दबा, मुझे उदास होना ही है, दिस वॉज ऑल मैकेनिकल, बट नाउ इट्स बिकम क्रिएटिव कि मेरे पास चॉइस है, वो हर्ट है, मैं स्टेबल भी रह सकती, मैं न्यूट्रल रह सकती, मैं और भी ज़्यादा पॉजिटिव होकर कुछ और क्रिएटिव सोच सकती, लेकिन पहले तो कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, देर वॉज जस्ट वन चॉइस, एंड तब हम कहते थे अटैचमेंट है तो हर्ट के साथ हर्ट होना नेचुरल है, ये नेचुरल था एंड वी टुक इट एज अ साइन ऑफ लव कि अगर वो दर्द में है और मुझे भी दर्द हो रहा है, इट इज अ साइन दैट हम बहुत एक दूसरे से नो बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज़
0: समवेयर वी वर एक्चुअली टेकिंग लव एज अटैचमेंट नाउ,
1: एंड वी इवन से टू ईच अदर आई कैन फील योर पेन। पेरेंट चाइल्ड के साथ है, बच्चे से कोई गलती हो गई, पेरेंट हर्ट हो गया, कहीं उसकी पेरेंटिंग स्किल पर यू नो क्वेश्चन मार्क उठ गया, तो वो अपने ही कॉम्प्लेक्सेस में इतना चले जाते हम कि हम बस चाहते हैं कि बच्चा किसी भी तरह ठीक हो जाए, बस वो जो मेरे ऊपर स्टिग्मा लगा है, दुनिया के सामने नहीं, मेरे लिए अपने लिए कि मेरी पेरेंटिंग पे जो स्टिग्मा लगा है वो ठीक हो जाना चाहिए, इसलिए हम उसको कहते हैं तुम ठीक हो जाओ, यू नो वी डोंट रियलाइज दिस बट ये इसलिए है तुम ठीक हो जाओ, वी नॉट रेडी टू गिव इट टाइम टू अंडरस्टैंड वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसके पीछे क्या कॉम्प्लेक्स है, क्या दर्द है, क्या सेल्फ एस्टीम हर्ट हुई, कुछ नहीं, तुम ठीक हो जाओ, बस तुम ठीक हो जाओ, क्यों, क्योंकि जब तुम ठीक हो जाओगे
0: तो मैं फिर रीअश्योरेंस हो जाएगी कि
1: मैं ठीक हो जाऊंगा, सो यू नो देन आई एम नॉट प्लेइंग दैट पेरेंट रोल इन द वेरी राइट वे। और जैसे ही हम ये करना शुरू करेंगे, अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं होगा, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली साइलेंट होता जाएगा, सारे आंसर्स, सारे सोल्यूशंस यहाँ पर है, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन, कि एक ट्यूटर है जो अंदर बैठा है, लेकिन अंदर की आवाज़ सुनने के लिए ये नॉइज को ख़त्म करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, इतनी नॉइज है, वो अंदर से आवाज़ देता भी है लेकिन तो हमें आवाज़ सुनने
0: इतनी सारी आवाज़ों में फिर वो कन्फ्यूजन, ये आवाज़ ठीक है या वो आवाज़ ठीक थी।
1: आप देखो कितनी बार जैसे जैसे हम इस जर्नी पर हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, हमें कहते हैं मुझे अंदर से आवाज़ आई थी कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उस आवाज़ को क्या किया,
0: अनसुना,
1: मैंने अनसुना किया। क्यों अनसुना किया, क्योंकि कहीं मैंने सोचा कि अगर मैं उस आवाज़ की बात मानती हूँ तो मैं वो करने से अपने आप को रोक दूंगी जिस पर मेरी खुशी डिपेंडेंट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रग्स और विद स्मोकिंग और आई डोंट वांट, आई शुडन्ट बी वॉचिंग 3 hours ऑफ टेलीविजन, आई डोंट हैव टाइम बट आई एम स्टिल वॉचिंग, तो अंदर से ये छोटी छोटी बात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेरी बिग वंस, कि छोटी सी आवाज़ अंदर से आएगी, मत देखो या ये मत लो, ये तुम्हारे लिए अभी इट्स नॉट गुड, लेकिन आई से गो अवे, मुझे खुशी चाहिए, यू नो, तो मैं उस आवाज को इसलिए इग्नोर कर देती हूँ
0: कि मुझे वो
1: कि
0: चाहिए
1: कहीं
0: था.
1: वो आवाज मुझे मेरी खुशी से ही दूर लेके जा रही है, विदाउट रियलाइजिंग वो आवाज ही मुझे मेरी खुशी तक लेके जाने वाली है, मेरी आवाज.
0: वंस माय डॉटर आल्सो टोल्ड मी कि शी सेज मेरे को पता चल रहा है कि मैं टीवी देख के टाइम वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज कम एंड स्कोल्ड मी मॉम. आई सेड यू नो द रियलाइजेशन इज सो मच.
1: यस इट इज, बट आई एम नॉट लिसनिंग टू माय सेल्फ, सो आई नीड समवन एल्स टू कम एंड से इट टू मी. तो क्या होता है जब उसको बार बार दबा दिया जाता तो वो अंदर ही वो दब जाती है, एंड देन व्हेन इट विल कम आउट वो एक इमोशनल आउटबर्स्ट के रूप में आएगी. हमारी कॉन्शियंस जिसको हम कहते दैट कीप्स गिविंग मी द सिग्नल्स एंड इट ऑलवेज गिव्स मी द
0: राइट
1: सिग्नल
0: सिग्नल.
1: ऑलवेज. नाउ इट्स जस्ट अप टू मी टू टेक दैट सिग्नल. इग्नोर करते गए इट्स लाइक हमें एक बहुत अच्छा टीचर मिला है जो हमेशा हमें अच्छा सिखा रहा है, लेकिन मैं उस टीचर की आवाज़ को, उसकी विजडम को, क्योंकि सारी विजडम भरी हुई है मेरे जीवन में, मेरे लिए क्या सही है
0: वो मेरे पास है,
1: मेरे पास आंसर है. आई नेवर नीड टू गो एंड आस्क एनीवन एल्स. लेकिन
0: और आजकल हम लोग हर चीज, हर छोटा डिसीजन भी, ऑफिस का डिसीजन भी, घर का डिसीजन भी 10 लोगों से पूछ के कर रहे होते हैं
1: बिकॉज वी नॉट लिसनिंग. सो वो ट्यूटर अंदर बैठा है, उसकी बात को सुने, और जितना सुनते जाएंगे, ये टीचर ऐसा है कि हम उसकी बात को जितना सुनते जाएंगे ये हमें विजडम
0: और
1: भी
0: देता जाएगा, क्लैरिटी और.
1: सपोज आप मुझे कोई अच्छी बात बता रहे हो, मैं सुनती ही नहीं, फिर आपने दूसरी बार बताया, मैं सुनती नहीं, चार बार बताओगे
0: आप नहीं बताते,
1: पांचवी बार आप मुझे बोलना ही बंद करोगे, तो मैंने ही अपने अंदर जो थी एक इतनी अच्छी चीज उसको मैंने दबा दिया. और अगर मैं बार बार आपकी बात सुनने लग जाऊं तो आप सोचोगे चलो मेरे कहने के अनुसार से ये कर रहे हैं, तो आप और बताना शुरू करोगे और बताओगे. इमेजिन माई लाइफ विल बिकम वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल.
0: बहुत सुंदर. तो आज जो हम इस प्रोसेस पे हैं कि हमें करना क्या है, जिन बिलीफ सिस्टम्स को पकड़ कर हम अभी तक बैठे थे उन्हें छोड़ने के लिए हमें सबसे पहले तो लोगों को छोड़ना पड़ेगा, लोगों की स्क्रिप्ट लिखनी छोड़नी पड़ेगी कि लेट बी. एक तो लेट गो, जो जैसा है उसे वैसा रहने दें, उसके ऊपर चिंतन मत करते रहें कि उस वो ऐसा कर ले, वो ऐसा कर दे, मेरा टीचर ऐसे कर ले, मेरा हस्बैंड ऐसे कर ले. समवेयर वी नीड टू लेट बी, वो जो जैसे हैं. और दूसरी बात कि जहाँ हमने अपने आप को साइलेंट करके उस आवाज़ को सुनना शुरू कर दिया, चाहे इम्प्लीमेंट अभी भी ना करें, चाहे मैं तो कहती हूँ चाहे इम्प्लीमेंट ना करो, सुन के उसको रजिस्टर तो कर ले एट टाइम,
1: दबा ना दे उसको,
0: उसको रजिस्टर करना शुरू कर दे. यस दिस इज व्हाट आई शुड बी डूइंग बट राइट नाउ आई डोंट फील लाइक डूइंग, इट्स ओके, बट नेक्स्ट टाइम आई विल लिसन टू यू, यू नो. तो यहाँ ये प्रोसेस अगर शुरू हो जाता है उसमें, जैसे हमने कहा कि हर एक घंटे के बाद एक मिनट का साइलेंस ये बात की याद दिलाएगा, मेरी आवाज़ मुझे अपने साथ सुनाता जाएगा. तो ये छोटे छोटे जो प्रैक्टिस हैं वो हमें करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फिर हम चाहेंगे कि आपका जो अनुभव है वो आप हमारे साथ शेयर करें. तो कोई बात मन में आ रही है, कोई सवाल है, अभी भी है, या इस प्रैक्टिस के दौरान आपको कोई ऑब्स्टिकल है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं या तो फ़ोन पर या फिर ईमेल पर. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. तो सिस्टर शिवानी, आज की जो पूरी बातचीत रही बहुत क्लैरिटी से ये समझ में आ गया कि करना क्या है. आप कितना करेंगे यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये डेफिनेट है कि हम करेंगे ज़रूर, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है सब कुछ करना. थैंक यू सो मच, ओम शांति. और अब आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन इसी बात के साथ कि ये जो हमें समझ में आ रही है बात, लगता है कि पॉसिबल है, तो लेट्स ट्राई इट आउट ना. पहले भी तो हम इन्हीं बातों को इम्प्लीमेंट करते आ रहे थे. बदला जीवन, आगे और भी बदलेगा, हैप्पीनेस हमारी अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी. फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ही आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद
1: लुटा। शांती अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। खास इसलिए क्योंकि आज हम आपकी बात करेंगे, यानी आपके ईमेल्स और फोन कॉल्स जो हमारे पास आए हैं, और जो इन दिनों हम बात कर रहे थे कि एंगर को कैसे हमने मैनेज करना है, और एंगर के असली एस्पेक्ट को लिया था, पीस की बात की थी, शांति की बात की थी, फॉरगिवनेस की बात की थी, और कार्मिक फिलॉसफी की भी बात की थी। और हर बार की तरह हमसे बातचीत करने के लिए, इन सवालों का जवाब साथ तलाशने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी।
2: ओम शांति।
1: सिस्टर शिवानी, इतने सारे ईमेल्स आप ही आंसर कर रही होती हैं कितनी बार, और इतने सारे हमारे पास कॉलर्स हैं। सिस्टर शिवानी, हम ये पहला ईमेल लेते हैं, हमें मुंबई से नवीन ने भेजा है, और ये कह रहे हैं कि कई दिनों से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, और अब मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी स्लो सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, और हर बार मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, इसीलिए मैं किसी भी एक प्रोफेशन में नहीं टिक पाता। बात बात पे मुझे लगता है कि मुझे लोगों की एक्सेप्टेंस चाहिए, और यही परेशानी शुरू हो जाती है, और मुझे खुद भी क्रोध बहुत आता है। और अगर मैं अपनी ज़िंदगी में देखूँ तो मेरे पिता के साथ भी जो रिश्ता है वो बड़ा एक साइलेंट एंगर का है, क्योंकि मेरे फादर बहुत एग्रेसिव थे, और कहीं ना कहीं मेरी मदर के साथ उनका जो एक पूरा रिश्ता था वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, बहुत एग्रेसिव थे उनके साथ भी। एंड देन ही राइट्स कि उनके साथ मेरी बातचीत भी नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे हर बार ये एहसास होता है कि मैं जो हूँ वो अचीव नहीं कर पाऊँगा, और मैं इंस्टेंट सक्सेस चाहता हूँ। सिस्टर शिवानी, ऐसे मेरे ख्याल से कई पिता पुत्र के रिश्ते हमने देखे हैं।
2: कहीं ना कहीं सबसे पहले तो क्योंकि जो नवीन जी ने लिखा है, ही फर्स्ट वॉन्ट सोल्यूशन फॉर हिज प्रॉब्लम, कि लो सेल्फ एस्टीम है, एक्सेप्टेंस चाहिए सभी से, और अपने आप को प्रूफ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है, और इसीलिए प्रोफेशन में टिक नहीं पा रहे, क्योंकि ही वॉन्ट्स इंस्टेंट, कि इंस्टेंट आई शुड गेट फेम ताकि मुझे सभी की एक्सेप्टेंस मिले, और हमेशा इंस्टेंट तो सब नहीं मिलता, तो आई टेंड टू स्विच ओवर टू समथिंग एल्स। और फिर दूसरी बात जो उन्होंने लिखी है वो ये है कि उनके अपने फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेंड है, इतना स्ट्रेंड है कि बोल चाल ही नहीं। अब इनके लिए ये दोनों अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, बट एक्चुअली ये दोनों बिल्कुल जुड़ी हुई हैं एक साथ। जो इनकी आज प्रेजेंट पर्सनालिटी है, लो सेल्फ एस्टीम की, एक्सेप्टेंस चाहिए, इसका कारण इनका ये डिस्टर्ब्ड थोड़ा सा चाइल्डहुड है, क्योंकि जिस तरह से लग रहा है वो ये कि इनका बचपन से ही रिलेशनशिप हेल्दी नहीं था। इन्हें ये फील होता है, सी पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव हमें नहीं पता, लेकिन बच्चे को सारी उम्र ये फील होता रहा कि मुझे अपने पिता से कुछ नहीं मिला,
1: और मुझे अपने आप को प्रूव करना है, शायद हो सकता है उनकी नजरों में एक्सेप्टेंस।
2: एब्सोल्युटली, क्योंकि उनको पिता से एक्सेप्टेंस मिली नहीं, उनको पिता ऐसा फील करते हैं कि पिता से प्यार मिला नहीं, कहीं ना कहीं एक डीप रूटेड ये बैठ गया है कि मुझे उनको प्रूफ करके दिखाना है। तो वो आज डिफरेंट वेज में आता है कि मुझे दुनिया को प्रूफ करना है, एक्चुअली दुनिया को नहीं प्रूफ करना है, प्रूफ सिर्फ एक उनको ही करना है। और जो इतना उन्होंने वायलेंस देखा है अपने अंदर घर में, और इतना अग्रेशन देखा है, तो वो पेन, क्योंकि हर समय जब वो देखा होगा, और इतनी ज्यादा नफरत जो भर गई है, तो वो उनके अंदर एंगर का रूप ले गई है। अब अगर ऊपर ऊपर से इस प्रॉब्लम को देखें तो उसका सोल्यूशन है कि आप कैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, आप प्रैक्टिस करें आप। लेकिन अगर आप डीप रूटेड उसके प्रॉब्लम को, सोल्यूशन को निकालना चाहते हैं, तो उसका सोल्यूशन आपके और आपके फादर के रिलेशनशिप पर बेस्ड है। सी इट्स एनर्जी। तो अब क्या हुआ कि मैंने बहुत साल, अगर ये युवा हैं अभी, टीन यू नो यूथ एज में है, तो 20-25 years व्हाटएवर, मैंने अपने अंदर पेन क्रिएट किया हुआ है, एंगर क्रिएट किया हुआ है, हेट्रिड क्रिएट की हुई है, मतलब इतनी नफरत है कि मेरी बोलचाल ही नहीं है। तो जहाँ बाहर बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं, तो अंदर कितनी नफरत अक्यूमुलेट हुई होगी, तो वो नफरत अंदर से गायब हो जाए जस्ट बाय वर्किंग ऑन माई सेल्फ, वो नहीं होगा। मुझे उस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और अगर मैं उस रिलेशनशिप पर वर्क कर लूं, मुझे और कुछ करना नहीं पड़ेगा,
1: बाकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व।
2: एब्सोल्युटली, मुझे कुछ भी नहीं करना है अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपना गुस्सा खत्म करने के लिए, वो भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो गुस्सा यहाँ है फादर के साथ है, तो वहां अगर खत्म हो गया तो ये खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि नफरत बहुत ज्यादा है अंदर, तो उनके लिए इवन ये एक्सेप्ट करना कि मुझे उस रिलेशनशिप को ठीक करना है, ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये फील करते हैं कि वो कारण है मेरी मदर की लाइफ को खराब करने का, मेरी लाइफ को खराब करने का। तो उस इंसान से मैं बात नहीं करूंगा, उस इंसान से मुझे कभी प्यार नहीं मिला, मुझे नहीं बात करनी,
1: और मैं भी प्यार नहीं करूंगा,
2: you know, I think so I justify my anger. See, these are the different ways. I justify my anger, I justify my pain. अब इनको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये सारी जो पर्सनालिटी में प्रॉब्लम आ रही है इसका कारण वो दर्द है। और अब और ज्यादा जो सीरियस बात है वो ये कि ये दर्द सिर्फ इन तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये इनके अंदर इतना भर गया है, तो इनके जीवन में जो और आने वाले रिलेशनशिप्स हैं, कि कल को यू गेट मैरिड, टुमारो यू हैव चिल्ड्रन, तो यू एक्सपेक्ट टू हैव गुड रिलेशनशिप्स, बट देयर इज अ चांस दैट दैट विल नॉट बी पॉसिबल। नॉर्मली इस तरह की फैमिलीज से जो बच्चे निकलते हैं वो हमेशा सारी उम्र यही सोचते हैं कि मुझे जो अपने फादर से नहीं मिला
1: मैं बहुत दूंगा,
2: मैं अपने बच्चों को बहुत दूंगा, विच इज अ वेरी गुड थॉट कि मैं अपनी फैमिली को, क्योंकि उन्होंने एक ब्रोकन फैमिली देखी है, तो मैं अपनी फैमिली को बहुत हेल्दी बनाऊंगा। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ हमारे चाहने से नहीं हो जाएगा या ये बाहर से करने से नहीं हो जाएगा, मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी की एनर्जी भरी पड़ी है, इतनी नफरत भरी पड़ी है, मतलब इतनी ज्यादा भरी पड़ी है, तो जब मैं नेक्स्ट परिवार से भी जुड़ता हूँ तो मेरी नफरत यहाँ नहीं रह जाती, आई कैरी इट विद मी,
1: ओवरफ्लो करेगी,
2: एब्सोल्युटली, क्योंकि द पर्सन इज बिटर इनसाइड। तो वो जो नफरत है वो सिर्फ हमें लगता है कि सिर्फ फादर के लिए, तो सिर्फ फादर तक ही टारगेटेड हो गए, ऐसा होता नहीं है। मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग इन दिस इल्यूजन कि मुझे जो प्रॉब्लम है ना सिर्फ इनसे
1: इनसे है, और मैंने जब इनको, और मैंने इनको किसको खत्म भी कर दिया कि मैंने बात
2: नहीं करना, मेरा तो इनसे कोई लेना देना नहीं, उससे कोई, लेकिन हम ये नहीं समझते कि उनके लिए जो थॉट्स हैं वो क्रिएट तो यहाँ की हुई है। तो वंस माई बॉक्स हियर इज फिल्ड विद हेट्रेड, मैं जहां भी जाऊंगा आई कुड हैव द मोस्ट वंडरफुल वाइफ, आई कुड हैव द मोस्ट लवली चिल्ड्रन, लेकिन मेरे बॉक्स में क्या भरा हुआ है वो ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा। तो अपने लिए और अपने आने वाले संबंधों के लिए हमें इस संबंध को ठीक करना बहुत बहुत बहुत जरूरी है, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है।
1: अमेजिंग एक्चुअली, यू नो, इफ वी लुक एट इट, मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी, अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें कि जो एक रिश्ता जिसको नॉर्मल देखते हैं हम, कि इसका मतलब ये तो आगे हर चीज में दिखता
2: है, हर चीज में जाएगा, और इसका देखो कनेक्टेड कितना हो जाएगा। हाँ, मेरे अंदर बिटरनेस रहेगी तो मेरा अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, उसकी वजह से उनके अंदर बिटरनेस भरेगी, दे विल कैरी फॉरवर्ड इट, एंड देन इट जस्ट गोज इनटू अ साइकिल साइकिल साइकिल, एंड एवरीवन इज ब्लेमिंग माय पेरेंट्स। अब अगर ये समझ पाते हैं कि इनके फादर के अंदर जो भरा हुआ है उसका कारण क्या,
1: वो भी कहीं ना कहीं पीछे से आ रहा हो।
2: See what happens is कि ब्लेम करना तो बहुत ईजी है कि इनकी वजह से हम लोग सब परेशान हैं, लेकिन कभी क्या हमने एम्पथाइज किया उनके साथ, कभी कंपैशन से हमने सोचा कि उनके अंदर जो भरा हुआ है वो क्यों भरा हुआ है। तो लव अपने आप आ जाएगा, यू नो, व्हेन वी अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आज अगर मैं जब अपने बच्चों के साथ उस तरह से करूं तो मेरे पास एक जस्टिफिकेशन होगा, यू नो, व्हाई आई एम लाइक दिस, बिकॉज माय फादर वाज लाइक दिस, बट एम आई अंडरस्टैंडिंग व्हाई इज माय फादर लाइक दिस, मे बी देयर वाज समथिंग दैट हैपेंड विद हिम। तो फॉरगिव करना कोई ऊपर ऊपर से नहीं कि बस मैंने हाँ फॉरगिव कर दिया, एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक कोई भी फादर उस तरह से होना नहीं चाहता कि वो गुस्सा करता रहे या यू नो घर में इतना वायुमंडल खराब रहे, लेकिन वो क्या करे, वो खुद ही दर्द से भरा हुआ है। तो उस पिता को आपको समझना होगा कि उनके अंदर जो इतना दर्द है, जो कड़वाहट के रूप में निकल रहा है, उसका कारण क्या, गो टू द रूट ऑफ हिज प्रॉब्लम, एंड देन व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट ही इज ऑल्सो वाउंडेड, तो एक वाउंडेड इंसान से नफरत क्या करोगे आप? आप गुस्सा क्या करोगे? आपको तो प्यार आएगा, और आपका प्यार उनके उस चोट को हील कर देगा। हम सब क्या समझते हैं, इनको चोट लगी हुई है, इनकी वजह से मुझे चोट लगी, अब मेरी वजह से नेक्स्ट को चोट लगेगी, हीलिंग का जिम्मेवारी
1: हमारी नहीं,
2: कोई भी नहीं उठाता। अगर ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं कि वो वाउंडेड है, अंदर से बहुत दुखी है या परेशान है किसी बात के लिए, लेट मी गिव लव, लेट मी गिव सो मच लव कि वो चोट पूरी तरह से अंदर ठीक हो जाए. तो अभी क्या हो रहा है, मैं नफरत दे रहा हूँ उनको, तो वो नफरत पहले मुझे मिल रही है फिर उन तक पहुंच रही है. उनके अंदर ऑलरेडी दर्द है, अब उनको नफरत मिलती है मुझसे, मेरी मदर से, औरों से, तो उनके अंदर का दर्द बढ़ता जाता है. नाउ लेट मी मेक अ चॉइस कि फ्रॉम टुडे नफरत देने की बजाय लेट मी गिव लव. तो सबसे पहली चीज, वो प्यार मेरे थ्रू निकलेगा, मेरा जो बॉक्स है वो क्लीन होता जाएगा कि यहाँ नफरत की जगह प्यार, और दूसरा उनको मेरे से क्या मिलेगा.
1: That's so beautiful, actually.
2: He is going to probably think कि ये बहुत difficult है. Again, it's only one thought away.
1: Yes, yes, yes.
2: It's just one thought away. अगर आपको समझ में आ गया कि इसमें मेरा फायदा होगा क्योंकि मैं प्यार से भर जाऊंगा, उनका फायदा होगा वो हील हो जाएंगे, और जो मेरे आगे आने वाले रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगे. नहीं तो आप कितनी भी कोशिश करें वो अच्छे नहीं बन सकते हैं, बिकॉज यू विल बी बिटर इनसाइड.
1: बहुत सुंदर बात ये आपने कही शिवानी की, किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले या कोई भी और प्रोफेशन में आप जाएं, उससे पहले कोशिश ये कीजिए कि इस रिश्ते को,
2: क्योंकि गलत फाउंडेशन पे आप अपने अगले रिश्ते नहीं बना सकते. आप सोचे ये तो यहाँ का यहाँ खत्म, अब मैं आगे की रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे बनाऊ, नहीं, आपका फाउंडेशन कमजोर, आप सोचे बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बना लेंगे, नॉट पॉसिबल. स्टार्ट टुडे, फिनिश द बिटरनेस. हाउ, हो सकता है कि वो आपसे एक क्षण में नहीं खत्म होती है, आप सबसे पहले उनसे जो आपकी बोलचाल बंद हुई हुई है आप आज से बात करना शुरू करें.
1: कम्युनिकेशन, यस.
2: इसके लिए शायद हो सकता है कि बहुत ईगो को साइड पर रखना पड़े, और अगर हो सके तो कुछ भी नहीं है, ही इज माई फादर, आई कैन स्टार्ट टॉकिंग टू हिम टुडे, आज बात करना शुरू कर दे, एंड विद कंपैशन, एंड धीरे धीरे ट्राई एंड अंडरस्टैंड, यू नो, इवन इफ डोंट एक्सपेक्ट कि वो चेंज हो जाएंगे एकदम से, बट आई चेंज एंड स्लोली ही विल चेंज. बिटरनेस क्रिएट करना, एंड दिस विल बेनिफिट द मदर ऑल्सो, क्योंकि उनको, इफ यू सी द मदर, तो मदर को भी क्या मिल रहा है, हस्बैंड से गुस्सा मिल रहा है, बेटे से क्या मिल रहा है, बेटा भी तो दर्द में है. अब जनरली क्या होता है, माँ दर्द में है तो बेटा भी दर्द में साथ में बैठ जाता है, उससे मदर को क्या मिला, दोनों से दर्द ही तो मिला. एंड ओवरऑल द एनवायरनमेंट ऑफ द हाउस, आपका घर आने को दिल नहीं करेगा शाम को टू दिस काइंड ऑफ अ फैमिली, सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट मी टेक इट अप. तो आज से ही बात करना शुरू कर दे, अपने आप को हील करें और प्यार देना शुरू कर दे. रिमूव ऑल दोज इमेजेस विच वर देयर. अगर वो आते भी हैं तो आप समझे इट्स ओके, ही हैड अ रीजन फॉर इट व्हाट ही इज डूइंग, लेकिन मेरी जो इमोशन है वो मेरी अपनी क्रिएशन है. तो फ्रॉम टुडे नॉट पेन बट लव, दैट्स माय चॉइस, आई विल क्रिएट दैट. एंड इट्स वेरी इजी, क्योंकि प्यार तो ऑलरेडी है,
1: इमर्ज करना है बस,
2: उसको सिर्फ देना शुरू करना.
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर बात नवीन. हम पूरी उम्मीद करते हैं और आपके ईमेल का इंतजार करेंगे, जहां आपके पिता के साथ जो आपका रिश्ता है वो एक कंप्लीशन पे आएगा, एक बिटरनेस पे ना रह के एक प्यार भरे रिश्ते में परिवर्तित हो पाएगा. एक अगला ईमेल और लेते हैं, और ये भी एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा सिचुएशन है जिससे वाबस्ता मेरे ख्याल से हमें से ज़्यादातर लोग होते हैं. वो ये कि इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, कहती हैं कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ और मेरे कलीग के साथ एक बार बहुत कहा सुनी हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और वो मेरी बहुत अच्छी मित्र थी पहले, लेकिन किसी एक बात पे बहुत फाइट, इतने ज़्यादा एंगर था, और उन्होंने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी कर दी, जबकि हम बराबर के ही हैं, कोई वो मेरी सीनियर नहीं है. अब हमारी ऊपर ऊपर से तो बातचीत ठीक है, फिर से शुरू हो गई, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलती हूँ, जब भी मेरा उनसे वास्ता पड़ता है, मुझे वो हर बार याद आ जाती है, हर बार. और अब मैं उसको वो सेटल नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब भी मैं उनसे दोबारा मुलाकात करती हूँ. तो मैं क्या करूँ, ना मैं उनसे बात कर सकती हूँ उस बारे में, क्योंकि वो ऊपर से तो हमारी बात सेटल हो चुकी है, लेकिन अंदर मुझे अभी भी बहुत गुस्सा चढ़ता है कि मैंने वापस नहीं लैश आउट किया. आई कुडंट गिव हर बैक व्हाट I think she deserves.
2: मैं उस टाइम वापस नहीं जवाब दे पाई, तो वो भी मुझे अब लग रहा है कि क्यों मैंने उस टाइम जवाब नहीं दिया. See, it's sometimes like कि अगर हम अपने आप को रोक भी लेते हैं रिएक्ट करने से, तो भी हमें पश्चाताप होता रहता है उस पर
1: कि मैंने
2: रिएक्ट नहीं किया. क्यों? अगेन बिलीफ सिस्टम. अपने आप से पूछें कि वाजंट इट अ गुड रिस्पॉन्स कि मैंने रिएक्ट नहीं किया. लेकिन हो सकता है मैंने बाहर से रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, और अंदर का रिएक्शन अभी तक मेरे अंदर वो अक्यूमुलेटेड है. तो टेल योरसेल्फ कि जो ये आप समझ रहे हैं कि मैंने रिएक्ट नहीं किया वो गलत था, वो आप अपने आप को पहले बताइए कि वो तो सही था. वो आपकी फ्रेंड है या कोई भी और है, वो किसी ना किसी डिस्टर्बेंस की वजह से, क्योंकि वैसे तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है. मोस्टली हमें ये समझना होगा कि जब किसी एक इंसिडेंट पे कोई बहुत एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है या रिएक्ट करता है, मोस्टली वो उस एक्सप्लोजन का कारण वो इंसिडेंट होता ही नहीं.
1: बिल्कुल,
2: 99% ऑफ द टाइम वो परिस्थिति उस गुस्से का कारण है ही नहीं. लेकिन हम समझ लेते हैं इतनी सी बात पर, इस कारण पर इन्होंने इतना गुस्सा कर दिया, क्योंकि हम उनको समझने के लिए रेडी नहीं है. हम समझ लेते हैं मेरी इतनी सी बात पर इन्होंने इतना गुस्सा कर लिया. अब एक मिनट साइलेंस में अगर सोचे, पर्सपेक्टिव को चेंज करें, इन्होंने आज इतनी सी बात पर इतना गुस्सा कर दिया, आधे ओके, इनको कुछ बात तो नहीं अंदर जो परेशान कर रही है. क्योंकि मुझे पता है कि आपका व्यक्तित्व वो नहीं है कि आप इतनी सी बात पर इतना बड़ा रिएक्शन करेंगे. तो अगर मैं आपके लिए सोच पाऊँ, कंपैशन अगर हो, तो आई विल से इज एवरीथिंग ओके विद यू. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप अंदर किसी और बात से परेशान हैं. तो उससे क्या होगा, अगेन आपके लिए गुस्सा नहीं, आपके लिए प्यार आएगा कि पता नहीं आपको कौन सी बात परेशान कर रही है. और जरूरी नहीं है कि ये बात हम उस टाइम कह सके उनको, क्योंकि समटाइम्स उस समय तो उस तरह का सिनारियो नहीं होता कि हम कहें कि कहीं आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, आप इतना गुस्सा कर रहे हो. सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि उसको खुद को भी नहीं पता. उसको खुद को भी नहीं पता, उसे भी खुद को यही लग रहा है कि मैं इसी बात पर गुस्सा हूँ. तो इफ यू ट्राई टू टेल हिम कि नहीं, एक्चुअली आप किसी और बात से गुस्सा हो, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. लेकिन होता क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारी चीजों के कारण, बहुत सारे परिस्थितियों के कारण जो मैंने खुद अपने अंदर हर्ट क्रिएट किया है, वो अक्यूमुलेट हो चुका है. अगर कोई इस तरह से रिएक्ट कर रहा हो, बेस्ट थिंग इज शी इज डन अ वेरी गुड थिंग बाई नॉट रिएक्टिंग. क्योंकि ऑलरेडी उनके पास दर्द है, आपने और क्यों देना है. तो उसके लिए पहले अपने आप को दो, फिर उनको दो. ठीक है, उनका वो बॉक्स खुल गया अंदर का और वो सारा बाहर निकल के आ रहा है, तो देन लेट इट कम आउट. उस समय मैं क्या दे सकती हूँ, वी सो अर्लियर ऑल्सो कि सबसे बड़ी सपोर्ट हम किसी को क्या दे सकते हैं अगर कोई दर्द में है, पीसफुल वाइब्रेशन. लेकिन उसके लिए फर्स्ट पीसफुल वाइब्रेशन किसी को दे नहीं पाते, क्योंकि हम खुद ही अंदर से इतने ज्यादा डिस्टर्ब्ड है. तो पहले समझ लें कि उनके पास कोई कारण था. दूसरा, अपने आप को समझाएं कि अगर मैंने रिएक्ट नहीं किया, ये बहुत अच्छा किया.
1: इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबमिसिव हूं. She has written somewhere कि I feel that I was submissive.
2: No, you've done a very good thing. क्योंकि आपने उतनी बात को उतने में ही खत्म कर दिया. अगर रिएक्ट कर दिया होता तो कितनी बड़ी हो जाती. लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप रिएक्ट अभी भी कर रहे हैं. शायद उस दिन नहीं रिएक्ट किया हो, लेकिन रिएक्ट अभी कर रहे हैं. क्योंकि रिएक्शन नॉट नेसेसरी वर्ड्स, लेकिन रिएक्शन हमारे थॉट्स हैं. तो हर बार जब आप उनके बारे में उस तरह से सोच रहे हैं, कई बार क्या होता है, मैं आपको ऊपर से नहीं बोल पाती जो मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन अंदर मैं सारा दिन आपको बोल रही हूँ वो जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ. तो अंदर एक कॉन्वर्सेशन सारा दिन चल रही है, तो वो भी तो एक रिएक्शन है. आई विल कॉन्शियसली हैव टू स्टॉप दैट रिएक्शन, एंड दैट विल हैपन if I start creating positive thoughts for you, understanding you, and then bring my relationship outside, jo relationship hai, usko bhi normal par le aaye. Why not? How much time? Actually, dekha jaye to dono jane chahte hain ki wo wapas waisa hi ho jaye. Lekin dono rukenge ki pehle kaun karega? Kaun pehle baat karega? Ya kaun pehle sorry bolega? Ya kaun pehle, aakar fir se baat karna shuru karega? Why not me? आज दिन तक हम समझते आए जो झुका वो कमजोर. परमात्मा हमें सिखाते जो झुका वो शक्तिशाली. क्योंकि ईगो कमजोरी है, झुकने में ताकत चाहिए. तो जो झुका वो शक्तिशाली है. और जितना बार हम झुकते जाते हैं इस तरह से, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी टॉलरेंस पावर और भी बढ़ती जाती है. तो लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल. हम अपनी पेंटिंग क्रिएट कर रहे हैं लाइफ के, क्यों हम उसको दर्द से भरते रहते हैं. देयर सो मेनी स्ट्रोक्स दैट वी आर पेंटिंग एवरी डे व्हेन इट्स जस्ट वन स्टेप अवे go and create a beautiful one.
1: और इनफैक्ट जब आपका रोज का उनके साथ एक रिश्ता है, हर रोज की एक मुलाकात है, और कहीं ना कहीं आप चाह भी रही हैं कि कहीं ना कहीं चाह रही होंगी,
2: ये इस केस में नहीं है. बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो आकर रुक चुके हैं, यू नो, बोलचाल बंद है या अंदर कड़वाहट भरी हुई है, भले फॉर्मेलिटी से ऊपर से बात भी कर रहे हैं लेकिन अंदर पकड़ के रखा हुआ है. तो अपने आप से पूछ लीजिए कि दर्द कब तक पकड़ के रखना चाहते हैं. लगता है बहुत मुश्किल है छोड़ना, बहुत सिंपल है, सिर्फ लेट गो.
1: इनफैक्ट वही बात है, क्योंकि जिम्मेदार जो हमारे साथ हो रहा है उसके हम खुद हैं.
2: right. अभी तक समझ रहे थे वो जिम्मेदार है, तो एटलीस्ट आई विल वेट कि आप आकर सॉरी बोलो. लेकिन अब समझ में आ जाए कि ये दर्द मेरी क्रिएशन है. No, let's move ahead.
1: Because it will be good for me. You know, पूरे रिश्ते के लिए तो है ही. सबसे पहली बात जो आप यहाँ लिखने का मतलब ही है कि आप कॉन्स्टेंट उसको जी रही है.
2: एंड मोस्टली इफ वी अंडरस्टैंड कि जैसे वो फर्स्ट केस में भी था, एक रिश्ते की कड़वाहट सिर्फ उस रिश्ते तक नहीं रहती है, फाइनली वो मुझे एक बिटर पर्सन बनाती है और वो मेरे अगले रिलेशनशिप्स में भी कैरी फॉरवर्ड होती है. तो पर्पस ऑफ माय लाइफ शुड बी टू हैव ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स विद एवरीबॉडी. व्हाई क्रिएट पेन इनसाइड, अदरवाइज इट विल फ्लो टू एवरीवन आई मीट.
1: डेफिनेटली. तो ये हमारे अपने लिए बहुत जरूरी है कि इस, आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस बिटरनेस को आप निकाल दें और एक जो रिश्ता पहले था वैसा ही कायम हो सकता
2: है. बहुत ज्यादा सोचे नहीं कैसे करना है. अगेन एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग कैसे करें, लेकिन कैसे भूले, कैसे बात करना शुरू करें, कैसे बात करना है, जाओ और बात करना शुरू कर दो. एक्चुअली जब एक्चुअली करते हैं तो बहुत सिंपल है, सोचते हैं तो बहुत मुश्किल. कई लोग सोचते हैं कि हम बात करें पता नहीं वो बात करेंगे कि नहीं, तो यू नो मैं झुकूं भी सही और सामने वाला और भी ज्यादा यू नो विथड्रॉ हो जाए तो मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी. लेकिन ना मैं झुकूं और सामने वाला कहे मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है तो मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी. लेकिन हर आत्मा प्रेम स्वरूप है. द अदर पर्सन इज जस्ट वेटिंग. इट्स जस्ट दैट उनके अंदर पावर नहीं है झुकने की, लेकिन वो वेट कर रहे हैं कब आपके साथ वो रिलेशनशिप अच्छा हो जाए. सो जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप
1: आई थिंक. और वो पहला स्टेप जो है वो जरूर एक मधुर रिश्ते की तरफ जरूर बढ़ेगा. एक और हम ईमेल ले लेते हैं. सर शिवानी, ये एक ईमेल है, एक डॉटर इन लॉ है, उन्होंने लिखा है कि नाम ना ले मेरा. अच्छा. लेकिन ये आया है उत्तर प्रदेश से और ये कह रही हैं कि आपका प्रोग्राम देख के मुझे लग रहा है कि गुस्सा जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, या गुस्सा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पूरा प्रोग्राम जो. लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं किसी और की मदद कर सकती हूँ जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, खासकर मेरी मदर इन लॉ को, कि ना सिर्फ मुझसे ही, मुझसे तो उन्हें गुस्सा रहता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करती हैं वो, लेकिन वो जनरली गुस्सा जो है उनको हर बात पे आ जाता है. और अब आपका ये बात समझने के बाद, देखने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि वो उनके लिए अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी, पूरे परिवार के लिए तो है ही नहीं, और मैं भी बहुत हर्ट होती हूँ. लेकिन क्या मैं उनकी मदद कर सकती हूँ?
2: बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन हमें अब सबसे पहले ये समझना होगा कि दूसरे की हेल्प करने के लिए पहले मेरी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए. आई वॉन्ट टू गिव देम पीस, आई वॉन्ट टू गिव देम लव, आई कैन नॉट गिव इट इफ आई फील that they are not right. This is very important. क्योंकि मदद कोई ऐसी मदद नहीं है जो ऊपर से की जाए, you know, कि आप जाकर उनको शांत कर दो या बिठा दो, ये सब तो होने नहीं वाला. यहाँ सब जो मदद है वो बहुत सटल रूप में अंदर चलने वाली है. तो वो ही है कि अगर मैं सचमुच में आपको हील कैसे करूँ अंदर, आपके अंदर पेन है, आपको प्यार देना है. अब आपको प्यार देने के लिए सबसे पहले मुझे स्वीकारना पड़ेगा कि आपके अंदर कोई दर्द है इसलिए आप इस तरह से कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं सोचूं ये तो है ही गुस्से वाले, ये तो हर एक के साथ गुस्सा करते रहते हैं, तो मैं कौन सी वाली एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ? गुस्से वाली. क्योंकि एवरी टाइम आई टर्न ऑन एंगर, आई एम थिंकिंग अबाउट एंगर, आई एम थिंकिंग अबाउट यू एज एन एंग्री पर्सन, आई एम गिविंग यू दैट एनर्जी, यू आर एन एंग्री पर्सन. एंड जनरली ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को सबसे ये एनर्जी मिलती है कि ये गुस्से वाले हैं, ये गुस्से वाले हैं, ये गुस्से वाले हैं, तो गुस्से वाली एनर्जी और भी ज़्यादा उनके अंदर रीइन्फोर्स हो जाती है. तो अगर मैं रियली हेल्प करना चाहती हूँ, मुझे ये लेबलिंग हटानी पड़ेगी, ये थॉट्स हटाने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कि कोई ना कोई कारण है. लेकिन आत्मा तो कैसी है? आत्मा तो प्रेम स्वरूप है. मैं आत्मा कैसी हूँ? मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ, तो मुझे क्या भेजना है। तो इसमें ये नहीं कि कोई मुझे विशेष बैठ कर भेजनी होती है गुड विशेस, इट इज व्हाट आई थिंक ऑफ यू ओवरऑल एवरी टाइम। क्योंकि जो इस तरह से बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं उनको कहीं ना कहीं सबसे वो फील करते हैं कि बहुत ज्यादा दर्द मिला है, तो उन्हें सिर्फ कोई एक ऐसा चाहिए जो उन्हें अनकंडीशनली प्यार दे पाए। इवन जब वो गुस्सा कर रहे हैं, इवन जब वो बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं, मैं हर्ट ना होकर अगर आपको प्यार दे पाऊं, क्योंकि जैसे ही मैं हर्ट हो गई मैं प्यार नहीं दे सकती, बिकॉज आपकी वजह से मैं हर्ट हो गई, तो आई कैन नॉट गिव यू लव। तो इट रिक्वायर्स मी फर्स्ट टू बी इन अ वेरी वेरी एलिवेटेड स्टेट के आप चाहे मुझे कुछ भी कहें, मुझे हर्ट नहीं होना। क्योंकि अगर मैंने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दी, मैं साथ में पॉजिटिव नहीं क्रिएट कर सकती। जिसने बहन ने लिखा है, आप खुद मेडिटेशन करें, अपने अंदर वो पावर भरें कि मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, और वो वाइब्रेशन बार बार क्रिएट करें, और वो वाइब्रेशन हर टाइम फिर उन तक ऑटोमेटिकली पहुँचेगा। और जब भी वो आत्मा सामने आए तो उनको भी क्या देखें, ये भी एक प्रेम स्वरूप आत्मा है, बोलना नहीं है, लेकिन जैसे आप ये थॉट क्रिएट करेंगे वो प्रेम की वाइब्रेशंस उन तक ऑटोमेटिकली पहुंचेंगी, और वो दर्द जो अंदर भरा है वो कहीं ना कहीं मिटना शुरू हो जाएगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट, खुद कभी अपसेट नहीं होना उनसे, या किसी बात से हर्ट नहीं होना, नहीं तो इट विल नॉट वर्क। और 2 मिनट के लिए इसको हम अभी भी करके देख सकते हैं कि आपको सारा दिन में क्या प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जो एनर्जी हम क्रिएट करना चाहते हैं उसको हम मॉर्निंग में बैठकर मेडिटेशन के दौरान क्रिएट करें, और जो हमारा हर एक घंटे के बाद 1 मिनट का ब्रेक होता है उसमें डेफिनेटली उसी थॉट को क्रिएट करें। तो लेट्स से कि आज मैंने अपने आप के लिए थॉट लिया कि मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, लव इज माय नेचर। तो जैसे ही मुझे वो 1 या 2 मिनट का ब्रेक मिलता है, पॉज, अपने चारों तरफ से जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको साइलेंट कर दें, और मन को बताएं कि ये 1 या 2 मिनट मेरे को अपने आप के लिए निकालना है, और सब चीज़ों से डिटैच होकर बहुत स्ट्रॉन्गली एक थॉट क्रिएट करें, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। और अपने आप को देखें कि ब्रिकुटी के बीच एक बहुत सुंदर सा चमकता हुआ सितारा। लेट ऑल अदर थॉट्स जस्ट गो अवे एंड उस एक थॉट में अपने आप को एस्टैब्लिश कर दें, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकलकर चारों तरफ फैलते हैं। कुछ एक क्षणों के लिए मैं आत्मा यहाँ से निकलकर परम धाम चले जाती हूँ। देखें अपने आप को परम धाम में, उस निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा के पास। मैं उस भगवान का बच्चा हूँ जो प्रेम का सागर है, ओशन ऑफ लव, और प्रेम की किरणें उनसे निकल चारों तरफ जैसे फैलती तो मुझ में भी भरती जाती है। परमात्मा के इस प्यार को अपने अंदर भरते हुए मैं आत्मा पुनः आ जाती हूँ अपने कर्म क्षेत्र पे, और सारा दिन इसी स्मृति से अपने को भी देखूं और जो मेरे सम्मुख आए उनको भी इसी स्मृति से देखूं कि ये आत्मा भी परमात्मा का बच्चा प्रेम स्वरूप है। ओम शांति।
1: ओम शांति। शिवानी, ये जो 1 मिनट का पॉज हर 1 घंटे बाद है, कहीं ना कहीं दैट विल डेफिनेटली हेल्प हर। और मुझे लगता है हमेशा हमें भी अपने दिन में, जो हमने एक बार पूरी मेडिटेशन की बात की थी, उसमें 1 मिनट का जो है उसका रेलेवेंस बहुत इम्पोर्टेंट है।
2: इट्स वेरी सिंपल, डजंट रिक्वायर टाइम, बस 1 मिनट। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, यहाँ से गए शिव बाबा के पास। शिव बाबा तो है ही ओशन ऑफ लव, वो ऑटोमेटिकली ओशन से तो लहरें सारी मेरे ऊपर आ ही रही हैं, बस भर लिया वापस। हाउ मच टाइम डज इट टेक? अब इसका इफेक्ट मेरे ऊपर काफी देर तक रहेगा, मुझे ये स्मृति रहेगी कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। और जो वो दो मिनट मैंने निकाले तो वाइब्रेशन क्या क्रिएट हुआ घर के अंदर। अब थोड़ी देर के बाद अगर बाहर के इन्फ्लुएंस आने से मैं भूल भी जाती हूँ, लेकिन फिर मेरा नेक्स्ट मिनट आ जाता है, उतनी देर में मुझे फिर याद आ जाता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मेरा नेचुरल संस्कार बनता जाता है।
1: बिल्कुल। और आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ओम शांति।
1: परमात्मा की हम बात करते आ रहे हैं, तो ये जो पूरा ज्ञान, ये जो पूरे एस्पेक्ट्स हमें समझ में आ रहे हैं, ये परमात्मा का ही ज्ञान है। सेंटर पर जाने की जब बात की, जब पहले भी हमने बात की थी, तो यही था कि वहाँ मुरली सुनाई जाती है, यानी परमात्मा ने जो बात कही है, परमात्मा के जो वाक्य हैं वो हमें मिलते हैं, और वो ज्ञान कहीं ना कहीं दिन भर हमारे साथ रहता है। अगली कड़ी में क्रोध से जुड़े हुए जो मुरली में वाक्य हैं, जो ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं दिन भर में और जीवन में बदलाव लाने का प्रयत्न कर सकती हैं, आपके लिए बहुत कारगर हो सकती हैं, उन्हें शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो फिर आपसे लेते हैं इजाज़त, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अपने ईमेल्स या फ़ोन कॉल्स हमें करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आप हमें सवाल कर सकते हैं। इसी के साथ आज की

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

दबाव और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वक्तव्य को एक लंबा अरसा बीत गया है, लेकिन आज भी ये वक्तव्य साहित्य को सही मापने का पैमाना है। प्रेमचंद के इस कथन की कसौटी पर खरा उतरने वाला साहित्य ही हमारा सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। हमारे देश में प्रेमचंद ही ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को रोमांस, तिलिस्म, अय्यारी और जासूसी कथानकों से बाहर निकालकर आमजन की जिंदगी से जोड़ा था। प्रेमचंद हमारे क्लासिक के साथ साथ आधुनिक और समर्थ लेखक थे। उनका रचना संसार टॉल्स्टॉय के साहित्य की तरह ही समाज के भीतर का रचना संसार है। घीसू, होरी, अमीनाबी, जुम्मन, सूरदास, बूढ़ी काकी हमारे अपने समाज की देन और बेलाग चरित्र हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी कहानियों का मुख्य किरदार बनाया। प्रेमचंद की जड़ें भारत के गांवों में थीं। प्रेमचंद के संपूर्ण साहित्य पर यदि नजर डालें तो उनका साहित्य उत्तर भारत के गांव और संघर्षशील किसानों का दर्पण है। उनके कथा संसार में गांव इतनी जीवंतता और प्रामाणिकता के साथ उभर कर सामने आया कि उन्हें ग्राम्य जीवन का चितेरा कहा जाने लगा। 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के छोटे से गांव लम्ही में जन्मे प्रेमचंद का सारा जीवन किसानों के बीच बीता। वे किसानों के साथ रहे, उनके हर सुख दुख का हिस्सा बने। जाहिर है कि जिस परिवेश में उनका जीवन यापन हुआ उसमें गांव किसान खुद ब खुद उनकी चेतना का अमिट हिस्सा बनते चले गए। भारतीय गांवों का जो सजीव मार्मिक चित्रण प्रेमचंद ने अपने उपन्यास गोदान में किया है, वैसी कोई दूसरी मिसाल हमें हिंदी साहित्य में ढूंढने से भी नहीं मिलती। वर्ग विहीन समाज हो, ये प्रेमचंद का सपना था। ऐसा समाज जहां वर्ण, वर्ग, लिंग, रंग, जाति, भाषा और धर्म के कारण कोई भेदभाव ना हो।

प्रेमचंद ने 13 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया। शुरू में उन्होंने कुछ नाटक लिखे, फिर बाद में उर्दू में उपन्यास लिखना शुरू किया। शुरुआती दिनों में गांधी जी के आंदोलन में अपार श्रद्धा रखने वाले प्रेमचंद का आदर्शवाद उनके आखिरी काल में लिखे हुए साहित्य में टूटता हुआ दिखता है। बाद में उन्होंने अपने एक उपन्यास के एक पात्र के मुंह से ये कहलवाया कि शिकारी से लड़ने के लिए हथियार का सहारा लेना जरूरी है, शिकारी के चंगुल में आना सज्जनता नहीं कायरता है। इसके बाद ही प्रेमचंद गोदान जैसा अद्भुत उपन्यास, कफन जैसी कालजयी कहानी और दिल को झिंझोड़ देने वाला अपना आलेख महाजनी सभ्यता लिखते हैं। उनकी इन रचनाओं के पाठक पहली बार भारतीय समाज की वास्तविक और कठोर सच्चाइयों से सीधे सीधे रूबरू होता है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों, उपन्यास और लेखों में शोषक वर्ग की करतूतों और हथकंडों का खुलकर पर्दाफाश किया। सन 1933 में जागरण के अपने एक दीगर संपादकीय में वे लिखते हैं कि अधिकांश भारतीय स्वराज इसलिए नहीं चाहते कि अपने देश के शासन में उनकी आवाज और बहसें सुनी जाएं, बल्कि स्वराज का अर्थ उनके प्राकृतिक उपज पर नियंत्रण, अपनी वस्तुओं का स्वच्छंद उपयोग और अपनी पैदावार पर अपनी इच्छा अनुसार मूल्य लेने का स्वत्व है। स्वराज का अर्थ केवल आर्थिक स्वराज है, यानी उनके मतानुसार आर्थिक आजादी के बाद ही वास्तविक आजादी मुमकिन है। काल और अनुभव की व्यापकता से उनके रचनाकार की समझ बनती चली गई, जो बाद में उनकी कहानी, उपन्यास और लेखों में परिलक्षित हुई। प्रेमचंद ने अपने साहित्य से शोषित वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने की हर मुमकिन कोशिश की। वे कहते थे कि जब तुम्हें संसार में रहना है तो जिंदों की तरह रहो, मुर्दों की तरह जिंदा रहने से क्या फायदा।

सादा और सरल जीवन के मालिक प्रेमचंद हमेशा मस्त रहते थे। उनके पिता का नाम अजायब राय था। वे डाकखाने में मामूली नौकर के तौर पर काम करते थे। जब उनकी उम्र केवल 8 साल की थी तो माता का स्वर्गवास हो गया और अपने जीवन के अंत तक वे लगातार विषम परिस्थितियों का सामना करते रहे। उनके विवाह के 1 साल बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया। अचानक उनके सिर पर पूरे घर का बोझ आ गया। प्रेमचंद की आर्थिक विपत्तियों का अनुमान इस घटना से लगाया जा सकता है कि पैसे के अभाव में उन्हें अपना कोट और पुस्तकें बेचनी पड़ी। एक दिन ऐसी हालत हो गई कि वे अपनी सारी पुस्तकों को लेकर एक बुक सेलर के पास पहुंच गए। वहां एक हेडमास्टर मिले जिन्होंने उन्हें अपने स्कूल में अध्यापक पद पर नियुक्त कर दिया। अपनी गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। जीवन के आरंभ में अपने गांव से दूर बनारस पढ़ने के लिए वे नंगे पैर जाया करते थे। स्कूल से आने जाने के झंझट से बचने के लिए एक वकील साहब के यहाँ उन्होंने ट्यूशन करी। गरीबी, अभाव, शोषण और उत्पीड़न प्रेमचंद के साहित्य की ओर उनके झुकाव को रोक नहीं सके। जब उनके जीवन में आर्थिक निश्चिंता आई तो 1907 में 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन की रचना की। जैसा कि इसके नाम से मालूम होता है, इसमें देश प्रेम और देश की जनता के दर्द को रचनाकार ने प्रस्तुत किया। अंग्रेज शासकों को इस संग्रह में बगावत की बू मालूम हुई। उस समय प्रेमचंद नायाब राय के नाम से लिखा करते थे, लिहाजा नायाब राय की खोज शुरू हुई। नायाब राय पकड़ लिए गए और शासक के सामने बुलाया गया। उस दिन उनके सामने ही उनकी इस कृति को अंग्रेजी शासकों ने जला दिया और बिना आज्ञा न लिखने का बंधन डाल दिया। इस बंधन से बचने के लिए प्रेमचंद ने दया नारायण निगम को पत्र लिखा और उनको बताया कि वे अब कभी भी नायब राय या धनपत राय के नाम से नहीं लिखेंगे। तो मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें नाम सुझाया प्रेमचंद। वहीं से धनपत राय हमेशा के लिए प्रेमचंद हो गए। उन्होंने सेवा सदन, मिल मजदूर और 1935 में गोदान की रचना की। गोदान उनकी समस्त रचनाओं में सबसे ज्यादा मशहूर हुई। 1936 में प्रेमचंद बीमार रहने लगे। अपने इस बीमारी काल में उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में सहयोग दिया। आर्थिक कष्टों और इलाज ठीक से न कराए जाने के कारण 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद का देहांत हो गया और इस तरह वो दीप हमेशा के लिए बुझ गया जिसने अपने जीवन की बत्ती का कण कण जलाकर भारतीयों के पथ को आलोकित किया था।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन कराग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव ने, समन्वय किया संजय यादव ने और से पेश किया सुधा अनुपम ने।
1: शिवाजी की तलवार है, लावनी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य पूर्ण हसन भांडण आणि गाणं सगळं शेअर करायचं।
3: तेरे जैसा यार कहां ऐसा यार आला।
2: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
4: लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा।
2: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर आपोआप थिरकतं। त्याच सोबत
5: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध,
2: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा,
3: पहला नशा पहला खुमार।
2: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
6: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार, मतलब आत्मा उड़ती कला एम्पावरमेंट पे है या गिरती कला पे है, डिस एम्पावरमेंट हो रही है, उसका आधार दो बातें हैं, भावना और भाव। भाव एंड भावना मीन्स इंटेंशन एंड फीलिंग। फर्स्ट थी सबके प्रति कल्याण की भावना, दूसरे थी कोई कैसा भी हो स्नेह और सहयोग की भावना, तीसरा है सदा उनके हिम्मत और उल्लास को बढ़ाने की भावना, चौथी है अपनेपन की भावना, और पांचवी इन सब की फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, ये अगर फाउंडेशन में भावना होगी तो फिर ऑटोमेटिकली सबके कल्याण की भावना वो इजी हो जाएगी। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल, मतलब जीवन में कोई भी विघ्न आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उसका मूल फाउंडेशन प्रीत की बजाय विपरीत भावना ही होती है। सही नहीं भी लग रहा लेकिन पुरुषार्थ करके भी, मेहनत करके भी उस आत्मा के लिए प्यार की वाइब्रेशन क्रिएट करें। अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी क्या सदा स्वच्छ मानी जाएगी? अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्न चित नहीं रह सकता। लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हम परफेक्ट हैं, ठीक है, हम परफेक्ट हैं, हमारा चित क्लीन है, साइलेंट है, और फिर हमें सिर्फ किसी और की कमजोरी दिख जाती है, और फिर किसी और की कमजोरी दिखकर उसको हम यहाँ रखते हैं, अब हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, अब हम बोलना शुरू करते हैं, तो हम परफेक्ट थे लेकिन अब हम परफेक्ट से हटकर डिफेक्टेड हो चुके हैं। ये हो गया, सारा डिफेक्ट्स आ गए हमारे अंदर, क्योंकि अब हमारी वाणी में नेगेटिविटी आ गई, हमारे चित्त पर नेगेटिविटी आ गई, हम पहले प्रसन्न थे लेकिन अब हम प्रश्न चित्त बन चुके हैं, ये ऐसे क्यों है, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इनको थोड़ा तो समझना चाहिए था, ऐसे तो करना चाहिए था। अब हमारा चित्त भी प्रसन्नता से फिर हट चुका है आगे।
1: हमने तो मेरे सामने गाड़ी के खड्डा आता और मैं पीछे तरफ हिलता हूँ तो मैं उसको गाली देता हूँ, बिल्डर को, वो कंस्ट्रक्शन किसने किया, गवर्नमेंट किसकी है, कितना खराब पैसे, कितनी बुरी तरीके की उसकी कमाई है, उसके बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, मैं तो उसके पूरी हिस्ट्री पढ़ देता हूँ एक खड्डे से।
2: तो फिर उतने में क्या हो जाता है हमारे चित्त को, हमारी चित्त,
1: मेरा चित्त हल्का हो जाता है।
2: चित्त हल्का कभी नहीं होगा नेगेटिव सोचने के बाद।
1: क्यों?
2: एक ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम, इल्यूजन कहें, जो बहुतों में है, ये कि जब मैं ये सब बोल देता हूँ ना, जब मेरे को जो कहना है वो मैं कह देता हूँ ना, जो मुझे सोचना है वो मैं सोच लेता हूँ ना, उसके बाद मैं शांत हो जाता हूँ। अशांत थॉट्स क्रिएट करने के बाद मन शांत कभी नहीं हो सकता है। ये कोई भी कर ले उस टाइम, अपना पल्स चेक कर ले उस टाइम, अपना बीपी चेक कर ले, हर चीज परफेक्ट से हट चुकी है उस टाइम के लिए। अशांत थॉट्स क्रिएट की, कैसे चित उसके बाद शांत होगा? इतने प्रश्न किए, जैसे आपने कहा ये ये ये ये, मैं इतना कुछ सोच लेता हूं, तो यहां क्या हो गई? हलचल हो गई। यहां हलचल हुई उसके बाद कहा मैं शांत हो जाता हूं? हाउ इज इट पॉसिबल?
1: रोड पे खड्डा आया है, हमारे से टैक्सेस भी लेते हैं और कैसे कैसे आदमी को कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसमें से भी पैसे खाते हैं।
2: ऐसे मन बुद्धि थक जाएगी इतना तो सोच सोच के, तो वो तो है, फिर मन बुद्धि थक जाएगी तो शांत कैसे बोलेंगे उसको? वो पीसफुल और पावरफुल कैसी होगी? और इतना सोच सोच के आत्मा की शक्ति फिर और फिर वो करने का संस्कार बनेगा।
1: नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है।
2: सपोज नेक्स्ट, अब आप जब कार में जाएंगे, आपको सिर्फ एक थॉट क्रिएट करनी है जाने से पहले,
1: कितने अच्छे खड्डे हैं, कितने अच्छे लोग हैं।
2: जो गलत है वो गलत है, समझ लिया,
1: लेकिन
2: ये खड्डा नहीं होना चाहिए था। फिनिश्ड। ये खड्डा था, हमें संभाल के चलना है। फिनिश्ड। लेकिन उनकी बुराई को, उनकी गलती को अपनी बुद्धि में और चित्त पर धारण किया और फिर अपनी वाणी में भी लेकर आए। सपोज आप ऐसे हैं और गाड़ी में आपके साथ कोई और है, तो फिर तो बात वाणी पर भी आ जाएगी, बोल में भी आ जाएगी। और फिर परमात्मा कहते हैं, क्या आपकी वाणी और चित्त शुद्ध रहा?
1: नहीं।
2: ये अटेंशन, दूसरों की गलतियां देखते देखते देखते, बुराई करते करते हमारी और वाणी और चित्त का क्या हाल हो जाता है। दिस वी हैव टू टेक केयर। तो इसलिए कहा, अब आप भी परफेक्ट नहीं, डिफेक्ट वाले हो जाएंगे और प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। ये अंडरलाइन है। अगर हमें जीवन में खुश रहना है तो फिर हम किसी की बुराई को अपने चित्त पर नहीं रख सकते।
1: इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। And this is the homework.
2: This is the homework because this is the foundation for me to be happy in life. I cannot be happy. Prasanna chit nahi reh sakte kyunki chit par daag aa gaya. Jaise hi chit par daag aaya to perfect se defect ki taraf shift ho gaye. To uska chit sada prasanna chit nahi reh sakta aur chit par dharan ki hui baatein vaani mein zarur aayengi. Ye bhi underline hai. चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी।
1: आज नहीं तो कल आएगी।
2: चाहे एक के आगे वर्णन करें, चाहे अनेक के आगे वर्णन करें, ये भी होता ही है। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है। जो मन में बैठी है बात, जो बुद्धि में धारण करके रखी है, वो बात कभी ना कभी किसी ना किसी के सामने वाणी में जरूर आएगी। लेकिन कर्मों की गति के गुह्य रहस्य को सदा सामने रखो, कार्मिक फिलोसफी को सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त के साथ वर्णन करते हो, ये व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे गुंबज में आवाज करता है।
1: एको।
2: ये व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है। वो अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल कर अपने पास आता है।
1: एको।
2: एको। अगर हमने किसी की बुराई, एक तो हमने देखा जो चित्त पर है वो रेडिएट कर रहा है, हमें भी मिल रहा है, दूसरे को जा रहा है, औरों तक फैल रहा है। लेकिन अगर वो बात चित से वाणी में आ गई
1: जी,
2: तो ये व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है, तो वो अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल के अपने पास आ जाता है। मतलब अगर किसी की बुराई वाणी में आ गई, शब्दों में आ गई, तब अब वो एको करके कई गुना बढ़कर हमारे पास ही वापस आने वाली है। गुंबज में आवाज करके देखा है, तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसी की ग्लानी करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो, लेकिन ये पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज किसी की ग्लानी की और कल आपकी दुगनी ग्लानी होनी ही है।
1: होनी ही है,
2: कर्मों की फिलॉसफी है।
1: गुंबज
2: है, गुंबज है।
1: एको।
2: एको लाउड एंड मेनी टाइम्स। एको कैसे आता है वापस?
1: वो सीट वाली बात होगी उस दिन।
2: एक बीच से कितने बीच, ये गुम्बस इज सच अ डीप थिंग टू रिमेम्बर. एक हमने किसी की ग्लानी की, वो गुम्बस की तरह वापस आएगी. विच मीन्स जो हमने ग्लानी की एक लाइन की भी अगर, तो एको एक लाइन और उस वॉल्यूम पे वापस नहीं आता है. एको का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और एको में नंबर ऑफ टाइम्स द वर्ड इज सेड वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं, जैसे विशेष बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी से फैलते हैं, और फैलते हुए जर्म्स जिसकी ग्लानी की वहां तक पहुंचते जरूर है. इम्पोर्टेंट. अगर हमने किसी की ग्लानी की तो परमात्मा कहते हैं वो विशेष बीमारी के जर्म्स की तरह है, जिसके बारे में हमने कुछ कहा वो बहुत जल्दी बहुत फास्ट स्पीड पर उस आत्मा तक पहुंचेगा ही. और ये हमेशा होता है. आप किसी के बारे में थोड़ा सा बोल दो, कभी ना कभी वो चीज उस आत्मा तक पहुंचनी ही है. तो रिजल्ट क्या हुई, आपने एक ग्लानी की होगी और वो आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानी करेंगे. सपोज मुझे पता चले किसी से कि आपने कुछ मेरे बारे में कहा, और जो आपने किसी को कहा फिर वो करते करते करते मेरे तक पहुंचा. जैसे ही मुझे कुछ ऐसा कोई सुनाएगा, इफ आई एम नॉट कनेक्टेड एंड ग्राउंडेड, तो मेरा फर्स्ट इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि ईगो हर्ट होती है ना उस टाइम, कि मेरे बारे में ऐसा कहा, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा,
1: तो ऐसा करता है ऐसा करता है ऐसा करता है उसके 10
2: ये, तो एक का 10 हो गया. इसीलिए गुंबज है ना, इसीलिए
1: डिवोर्स केस में अक्सर देखा जाता है.
2: हाँ.
1: वाइफ अगर हस्बैंड के खिलाफ एक डिवोर्स फाइल करे कि ये ऐसा करता है, वो 50 निकाल के लाता.
2: अपना केस स्ट्रांग करना होता है ना. अपना केस स्ट्रांग करने के लिए अहंकार मींस आई एम बेटर देन यू.
1: वो कहते हैं इंग्लिश में व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, मल्टीफोल्ड
2: मल्टीफोल्ड. इसीलिए गुंबज वर्ड बहुत अच्छा है. एको एको होके मतलब लाउडर भी आएगा और मल्टीप्लाई होकर भी आएगा. अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत भाव शुभ भावना के स्वरूप में उस आत्मा को या जो भी उनके निमित्त है उनको बता सकते हो. कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला कुछ नहीं. मतलब कोई गलत किसी के बारे में कह भी रहा है, उसमें भी हाँ में हाँ अगर हमने मिला दी, हमने कुछ कहा नहीं सिर्फ हाँ में हाँ मिला दी.
1: हाँ, ऐसा हो सकता है. इवन आई थिंक सो, शी और ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट. जो आप कह रहे हैं शायद सही है.
2: तो हम उस कार्मिक पैटर्न के अंदर क्या हो गया,
1: पार्ट,
2: हम भी जुड़ गए. तो बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा या उसमें साथ दिया, तो वो भी तो पाप है ना.
1: ये कितना इम्पोर्टेंट है. हमारे यहाँ कुछ फ्रेंड्स में ब्रेकफास्ट देते गरीब लोगों को और कुछ बूढ़े लोगों को, ओल्ड एज होम टाइप का.
2: हाँ.
1: कुछ पता नहीं है वहाँ.
2: हाँ.
1: तो एक दिन मेरे घर पे मैं किचन दिया हुआ हूँ कि आके बना के ले जाओ. तो वो बोलती है कि इन्होंने तो फिश की डिमांड की है ओल्ड एज होम वाले ने. बोले यहाँ तो इस घर में तो होगा नहीं, आपको इतना ही है तो मार्केट से ले दो. बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत उसको अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दे के हाथों से पका के खिलाते हैं. तो मैंने बोला आप इतने अच्छे वाइब्रेशन दे रहे हैं और किसी की जान लेके आप दे रहे. तो बोलती है नहीं मैंने थोड़ा कुछ करना है, उन्होंने मांगा हम तो उनको दे रहे हैं. मैंने नहीं, मैंने बोला यू आर अ पार्ट.
2: You are a part.
1: मेरा किचन बिल्कुल नहीं और मैं भी पार्ट.
2: हाँ, मैं भी पार्ट.
1: और ना उसमें मेरा पैसा जाएगा, सॉरी,
2: मैं भी पार्ट बन जाऊंगा उसका.
1: हाँ. तो लोग बोलते उन्होंने मांगा और हमने उनसे उनको खिला दिया.
2: तो कार्मिक पैटर्न में कितना ध्यान से चलना है.
1: तो कितना क्लियर हो गया ये.
2: बिल्कुल, जैसे आपने कहा उन्होंने फिश मांगी, नॉन वेज मांगा. और ये जो बना रहे हैं ये खुद नहीं खाते. लेकिन अब इन्होंने सोचा उन्होंने मांगा तो हमने दिया, उन्होंने मांगा हमने दिया. हम देना नहीं चाहते थे लेकिन उन्होंने मांगा, तो हमारा रोल सिर्फ था यहाँ से लिया वहां दिया, तो वी थिंक कि इसमें हमारा कोई कर्म नहीं बना। लेकिन हम अगर देते ना तो वो लेते कहाँ से? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम क्यों गलत चीज देने के निमित्त बने अगर हमें लगता है कि वो चीज सही नहीं है? तो जो चीज हम नहीं खाते, हम नहीं पीते, हम नहीं सोचते, हम नहीं बोलते, तो वो दूसरे कर रहे हैं, तो उसमें भी हाँ में हाँ किया, तो उनके ही कार्मिक अकाउंट के बीच में उस पैटर्न में हम भी फंस गए। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा, बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वो भी तो पाप है ना। दुनिया में भी देखो ना, कहीं कुछ होता है, कहीं कोई अटैक हुआ, कुछ हुआ, तो सारे कौन से लोग पकड़े जाते हैं? जिन्होंने उस अटैक को मटेरियलाइज करने में साथ भी तो दिया ना, इन्होंने सपोर्ट किया है उस कर्म को, तो उसको भी तो सारे सारे फंसेंगे उसके अंदर साथ।
1: अभी एक जज की जजमेंट बहुत सुंदर थी, उसने क्या किया, एक आदमी रिश्वत में और बहुत पैसा कमाया ऐसे रिश्वत से और ब्राइबरी ले लेके, तो वो पकड़ा गया, तो उसने उसकी वाइफ को और बच्चों को भी जेल में डाला। बोला क्यों? क्योंकि आपने साथ दिया, इतने साल उस पैसों का आपने खाया, उसका यूज किया, यू आर पार्ट ऑफ इट। अब भले आगे हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में बात,
2: बट यू आर अ पार्ट ऑफ इट एंड विच इज ट्रू। तो अब हमें भी देखना है, अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी की ग्लानी कर रहा है, तो मुरली कहती है हाँ में हाँ भी मिलाया तो वी बिकम अ पार्ट ऑफ इट। हमारा रोल क्या है कि जो किसी की ग्लानी कर रहा है, हम धीरे धीरे उसको भी उस दर्द से बाहर निकालें कि हाँ कोई बात नहीं ऐसा है, लेकिन अब हमें क्या करना है इसके साथ? ठीक है वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे, आपको अपने को कैसे संभालना है? उनको बाहर उससे निकालने की बजाय अगर हम हाँ में हाँ मिला देते हैं, तो हमारा पाप क्या बनता है? ये देखो कितना सूक्ष्म पाप है कि सामने वाला गड्ढे में गिर रहा था, है ना, हमने कहा वो तो गिर ही रहे थे, हमने आकर क्या किया?
1: ओके, वेरी गुड बोला खाली।
2: हमने सिर्फ वेरी गुड नहीं बोला, हमने एक छोटा सा पुश और दे दिया,
1: हेल्प भी की,
2: क्योंकि हमने हेल्प नहीं की, हेल्प की होती तो हम क्या करते,
1: बाहर निकालते,
2: हम बाहर निकालते, लेकिन हमने सिर्फ हाँ में हाँ मिला दी। जैसे ही हाँ में हाँ मिला दी, हमने सामने वाले की सोच को और वो जो वर्णन कर रहे हैं उसको हमने इंडोर्स कर दिया ना, हाँ सही बात है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, तो सामने वाला तो ऑलरेडी ऐसे हो रहा था, डिसएम्पावर हो रहा है, हमने उसको हाँ कह दिया, हाँ कहते ही हमने उसको और नीचे गिरा दिया, ये हमारा पाप नहीं बना, वो ग्लानी कर रहे थे वो उनका पाप बना, हमने गिरते हुए को हाँ में हाँ मिलाकर उनको गिरा दिया, ये हमारा पाप बना। कर्मों की गति को अगर हम कभी ऐसे बैठकर खोले ना सारा दिन के अपने कर्म के खाते को, हमें पता, हम अवेयर ही नहीं है कितने छोटे छोटे छोटे छोटे सूक्ष्म में हम कहाँ पाप करते जा रहे हैं, और फिर हमें पता नहीं चलता कि सोल पावर कहाँ डिप्लीट हो रही है, फिर हमें ये नहीं पता चलता मेरे सामने ये नेगेटिव एनर्जीज कहाँ से आ रही है, क्यों मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, क्यों मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे ही बोए हुए बीज का रिजल्ट मेरे सामने आता है। जो हर थॉट प्योर करेगा, औरों को भी दर्द से बाहर निकालेगा, उसका कर्मों का खाता कैसा होगा? क्लीन, प्योर एंड पावरफुल। तो परमात्मा कहते हैं हाँ में हाँ मिलाना, ये भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। कितना अटेंशन हमें रखने की जरूरत है कि ये सब जब हम करते हैं तो हम किस कार्य को सहयोग दे रहे हैं। आत्मा

0: फॉर अ लॉन्ग टाइम ना, मुझे आपने बाहर नहीं निकाला, तो मैंने कुछ कई समय तक और उनको क्रिटिसाइज करते रहना है, फिर और चार लोगों के सामने भी करना है, तो जिन जिन सामने मैं करूंगी क्रिटिसाइज, उनका भी मन थोड़ा थोड़ा हलचल में आएगा, सारी वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंचेगी जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये सारी चीजें आप उस दिन रोक सकते थे। आपका एक कर्म, एक बोल, ये सारी नेगेटिव एनर्जी को उस दिन रोक सकता था, लेकिन आपका एक हाँ, सिर्फ हाँ में हाँ करना, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज उसके बाद क्रिएट हुई। कर्मों का खाता क्या कहेगा, बहुत सूक्ष्म है कि हमारी, इसीलिए नहीं हमारी संकल्प से सृष्टि ऐसे ही नहीं बन जाती, ये लिटरली बन रही है हमारे संकल्प से सृष्टि। तो हमें अपने हर संकल्प में, ये जो बहुत कैजुअली हम बैठे बैठे फ्रेंड्स के बीच, ऐसे ही सोशल गैदरिंग, यहाँ तक कि यू नो ट्रैवल कंपेनियन आपके साथ जो बैठा है, जानते नहीं पहचानते नहीं, इधर की उधर की किसी की भी बुराई कर लेते हैं, दूसरा हाँ हाँ, मतलब हमें लगता है हमें कुछ तो बात करनी है ना बैठ के सामने वाले के साथ, और कुछ नहीं तो किसी पब्लिक फिगर की, किसी सेलिब्रिटी की, किसी पॉलिटिशियन की, दुनिया में जो हो रहा है, सामने वाला क्रिटिसाइज कर रहा है, हमने हाँ में हाँ मिलाकर उसकी क्रिटिसिज्म को और उस नेगेटिव एनर्जी को हम किस लेवल पर लेकर जाते हैं। आज अगर हम देखें, जब से सोशल नेटवर्किंग साइट्स बनी, जब से ये व्हाट्सएप और सब कुछ आया हमारे फोन पर, एक आत्मा कहीं बैठकर किसी के बारे में ग्लानी लिखती है, एक मजाक बनाती है, एक जोक बनाती है, किसी की निंदा कर रही है, लिखता एक जना है सिर्फ। अगर वो एक किसी और को भेजे वो, और उसके बाद वो सामने वाला किसी और को ना भेजे, वो वहीं रुक जाती चीज, लेकिन एक ने जिसने लिखा वो, उसने तो अपना कर्म बनाया कि ये लिखा, फिर उसने सिर्फ पांच लोगों को भेजने की जरूरत है, वो पांच लोगों ने अगर उसको आगे भेज दिया, वेरी सून द होल मैसेज इज ऑल ओवर द कंट्री, वेरी सून ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन कौन निमित्त बना ये करने के,
1: सभी बने जिन जिन्होंने आगे फॉरवर्ड किया,
0: जिन जिन्होंने आगे फॉरवर्ड किया। ये लगती कितनी छोटी बात है, हमें लगता है मेरे पास यहाँ से आया मैंने फॉरवर्ड कर दिया, तो क्या हुआ, यहाँ से आया मैंने फॉरवर्ड किया, जिनको मैंने फॉरवर्ड किया पहले उनके मन में वो बीज डाला नेगेटिविटी का, फिर उन्होंने और 10 लोगों को फॉरवर्ड किया। दिस इज लाइक दैट मल्टी लेवल मार्केटिंग, कि एक जो करेगा उसकी डाउनलाइन में जो जो जो करेगा वो, उसका खाता मेरे कर्मों के खाते में जमा होगा। और यही किसी ने अगर पॉजिटिव प्योर मैसेज भेजा, वो हमने अनेकों के साथ शेयर किया, तो एक ने बनाया, उसने पांच को भेजा, पांच ने 5 लाख तक उसको पहुंचा दिया, तो वो एक का भी खाते में जमा होगा, और जो जो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा उसके भी खाते में जमा हो जाएगा। एट एवरी स्टेप वी हैव अ चॉइस, हाँ में हाँ किसके साथ मिलानी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी अपने आप को कहकर ऐसी छुट्टी नहीं देनी, क्या करूँ अभी सब बैठे थे ना, तो करना ही था, बात करनी ही पड़ती है।
1: और फैमिली में कोई ऐसा कर रहा है और बच्चे देख रहे हैं कि डैडी खामखा झूठ के लिए भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो उन्हें भी इन चीजों की आदत पड़ सकती है, वो भी प्रभावित होते हैं, कल को वो भी करते हैं, और कितना लंबा असर जाता है,
0: कितना लंबा असर,
1: कितना कर्म सिर्फ यहाँ नहीं बांधा, उसको भी मैंने खराब किया, फर्दर वो करेगा,
0: बिकॉज वो उसको जीवन जीने का तरीका समझ के सीख रहा है ना, दिस इज द राइट वे, एंड कल वो जो करेगा वो आगे उसका बच्चा देखेगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, सबसे डीप इनहेरिटेंस हम अपनी फैमिली को क्या दे रहे हैं, हमारे सोच और संकल्प संस्कार,
1: सोच संकल्प,
0: इससे पावरफुल प्रॉपर्टी नहीं है जो हम अपनी फैमिली को देकर जाते हैं, हम अपने बच्चों को देकर जाते हैं।
1: बदल नहीं सकते हम लोग, जीते जी दो
0: बदलते ना,
1: विल बदल देते हैं।
0: हाँ,
1: तो वैसे अगर सोच और संस्कार कुछ अपने पुराने अच्छे नहीं थे, तो आज मैं बदल नहीं सकता हूँ अपने बच्चों के लिए,
0: अपने बच्चों के अंदर नहीं बदल सकते ना, अब कैसे बदलेंगे,
1: मैं बदलूं तो फिर देखते हैं ना वो लोग।
0: उसकी मेहनत उनको थोड़ी सी करनी पड़ेगी ना।
1: शुरू में
0: एक छोटा बच्चा क्या करता है, एक छोटा बच्चा जल्दी इजिली कैच कर ले,

0: और उसको करना शुरू कर देता है। अब करते करते वो उसका जीवन जीने का तरीका बन गया है। नाउ दैट चाइल्ड हैज टू चॉइसेस, के पास दो चॉइसेस हैं। आप पेरेंट हैं, अगर आप एज अ पेरेंट अपने संस्कार को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके पास दो चॉइसेस हैं कि आपके परिवर्तन को देख वो इंस्पायर हो, वो भी अपने आप को चेंज करते हैं। दूसरा है कि उसका संस्कार बहुत कड़क है, वो उस पर वर्क नहीं करते, तो वो अपने पुराने नेगेटिव संस्कार के साथ जो आपको देखकर क्रिएट किया उसी के साथ चलते हैं। कई केसेस में ऐसा भी होगा कि पेरेंट अपने संस्कार को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ बच्चा ही रियलाइज कर लेगा कि ये संस्कार मेरे लिए अनकंफर्टेबल है और वो देखकर उसको चेंज कर सकता है। हर एक का कर्म लॉन्ग टर्म बहुत खाते में जाने वाला है। जैसे आपने कहा, मैंने किया, मुझे देख बच्चे ने किया, बच्चे को देख कल उनके बच्चे करेंगे, तो ये सारा किसके खाते में जाके जमा हो जाएगा?
1: मेरे।
0: ऐसे ही तो सृष्टि बनती है।
1: और मुझे अपने बच्चे में वो देखकर मुझे भी बुरा लगता है, हाँ, कि ऐसे क्यों कर रहा है। फिर बाद में याद आता, ये तो मैं करता था पहले,
0: करता था। सी, जब अपने अंदर हम खुद कर रहे थे तब हमें गलत नहीं लग रहा था ना, उसको करते हुए देखकर हमें कितना बुरा लगता है। ये हमारे संकल्प का फल है, हमारे कर्म का फल सामने आता है। ये उसी का कर्म का फल आ गया ना सामने, तो अब हम पास्ट को नहीं लेकिन प्रेजेंट में वर्क करके अब हम ये अटेंशन रखें कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, गलत कुछ दिखाई दे रहा है, गलत है, लेकिन बुराई को चित पर नहीं रखना, वाणी में नहीं लेकर आना, वो गुंबज की तरह वापस आएगी। हम एक उनकी ग्लानी करेंगे, वो हमारे को सिद्ध गलत करने के लिए 10 करेंगे, और परमात्मा कहते इस प्रोसेस में जो हाँ में हाँ मिलाएंगे वो भी पाप के खाते में जमा हो जाएंगे।
1: सो नाइस, थैंक यू सो मच सिस्टर।
0: ओम शांति।
2: When we observe a weakness or a wrong act of another person, we start churning on it. It stays on our mind for a long time and soon becomes a part of our memory. Then their negativity becomes a part of our mind and intellect. When we keep others' negativity on our mind, then we can never become perfect and cannot be happy. So, we need to practice that even while witnessing a negative sanskar or a wrong karma, we should not absorb it on our mind. When we absorb someone's weakness in our thoughts, it will definitely come into words someday. Speaking ill about someone will return like an echo, louder and more in magnitude. They will criticize and speak ill about us more than we did about them. If others are speaking ill about another person, even silently supporting them, endorsing what they are saying, we become a part of their karmic pattern. We need to take care that we do not support another's negative karma, because it then becomes a part of our karma.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खास 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर। तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा।
1: श्रोताओं, मैं हूं नीतू जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर आई हूं, जिसका नाम है कृष्ण जन्माष्टमी। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व और इसे मनाने के बारे में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा था। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन उसे आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। यह सुनकर कंस ने देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। समय बीतता गया और भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय चारों ओर अंधकार था, लेकिन भगवान कृष्ण के जन्म के साथ जैसे आशा और प्रकाश का संदेश फैल गया। वसुदेव जी बालक श्री कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे और उन्हें नंद बाबा और यशोदा मैया के घर सुरक्षित पहुंचा दिया। वहीं कृष्ण का बचपन प्रेम और आनंद के बीच बीता। कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट थे। वे अपने मित्रों के साथ खेलते, माखन चुराते और सभी का मन मोह लेते थे। बड़े होकर उन्होंने लोगों को अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने की सीख दी। उन्होंने कंस का अंत किया और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाई जाती है। जन्माष्टमी का महत्व केवल भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाना नहीं है। यह हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, साहस, बुद्धि, कर्म और सच्चाई का संदेश देता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों को सजाते हैं, भगवान कृष्ण की झांकियां निकालते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। रात के 12 बजे कृष्ण के जन्म के समय विशेष पूजा की जाती है। कई स्थानों पर दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें लोग मिलकर मटकी फोड़ते हैं। बच्चे कृष्ण और राधा का रूप धारण करके इस उत्सव में भाग लेते हैं। जन्माष्टमी हमें यह सुंदर संदेश देती है, जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब सत्य और धर्म की जीत अवश्य होती है। आइए इस जन्माष्टमी पर हम भगवान कृष्ण से प्रेरणा लेकर सत्य बोलने, दूसरों की सहायता करने और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने का संकल्प लें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद श्रोताओं, फिर मिलेंगे एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहे, खुशियाँ बांटे।
2: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट, देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का? हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी।
1: धरती की पुकार, पात्र परिचय, उन्नति, आदित्य, पंकज, आदित्य प्रकाश, यश, सैंडी, वेदांत, विनोद, अंबर, लेखिका सुधापुरी।
2: आज हम और भी जल्दी आ गए हैं।
3: सुबह सुबह का वातावरण कितना ठंडा और फ्रेश होता है ना?
4: मम्मी कहती है सुबह कितना भी जल्दी उठ जाओ पर दोपहर को बाहर नहीं जाने दूंगी।
5: आज क्या करने का इरादा है सबका, क्या खेलें?
3: मैं तो उस पेड़ के नीचे कल सीखा हुआ सूर्य नमस्कार करता हूँ।
4: मैं तो जॉगिंग करूँगा।
5: मैं तो अपने स्कूल में सिखाया हुआ व्यायाम करता हूँ।
6: मैं तो यहाँ बैठकर प्राणायाम करूँगा।
2: ओहो, आज सब बड़े स्वास्थ्यवर्धक मूड में हैं।
7: हाँ ठीक तो है, मैं तो जल्दी सोता हूँ और जल्दी उठता हूँ।
4: मैं भी, बस कल देर हो गई थी, टीवी पर पापा प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे और मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा था।
3: कल तो सब तरफ मंगलयान की चर्चा हो रही थी
8: और स्वच्छता अभियान की।
3: क्यों ना हो, हमारे देश के लिए कितनी फक्र की बात है।
4: क्या स्वच्छता अभियान या मंगलयान?
5: अरे ये भी कोई पूछने की बात है, मंगलयान और क्या।
6: स्वच्छता तो आम बात है, हम सबको रखनी ही चाहिए।
2: बात तो ठीक ही है, स्वच्छता के लिए अभियान चलाना पड़े ऐसी नौबत आ गई है।
7: पापा कह रहे थे भारत एशिया का पहला देश है जिसने बहुत कम पैसों में यानी कम खर्चे में मंगल ग्रह तक मंगलयान को भेजा है।
4: वो भी पहले ही शॉट में सफलता, वाह।
3: हाँ हाँ, कहते हैं ऑटो के प्रति किलोमीटर के किराए से कम में मंगलयान ने अपना सफर तय किया है। फक्र की तो बात है,
8: पूरे संसार में नाम हो रहा है।
3: बड़े बड़े उन्नत देश हमें देख कर हैरान हो रहे हैं
4: और लगता है किन्हीं को तो शायद थोड़ी जलन भी।
2: पर
5: क्या दीदी,
2: हम अपने ग्रह तक कब पहुँचेंगे?
6: मतलब
7: हम अपने ग्रह पर ही तो हैं।
4: अपनी धरती पर? हाँ हाँ, अपने प्यारे नीले ग्रह पर।
2: हाँ पर प्रदूषण फैलाकर हम कितनी तेजी से इसके विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, कभी सोचा भी है? वो उधर कूड़े के ढेर पर और कूड़ा डालते हुए लोग और वो तालाब उस तरफ पार्क में सरकार ने इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगवाया था, पर अब एक गंदा नाला बन गया है।
3: हाँ ये तो है।
8: अरे ये क्या, मम्मी कहती है हमने अपनी पवित्र नदियों तक नहीं छोड़ा तो और किसी की क्या बात की जाए।
3: मैंने कहीं पढ़ा था जमुना जिसके किनारे विश्व प्रसिद्ध ताज है आज एक गंदा नाला बन गई है।
2: आसपास की सब फैक्ट्री अपना वेस्ट इसमें डालती है, वो भी बिना ट्रीट किए।
4: ऐसा लगता है जैसे किसी को कोई फिक्र ही नहीं है।
2: जैसे कि सब कुछ खत्म कर देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या रह जाएगा।
5: दीदी मुझे तो कोई भी देश इसकी फिक्र करता हुआ नहीं लगता।
6: कि वह किसकी मदद प्रगति कर रहा है?
7: बस अपने देश की फिक्र है, जैसे पूरी धरती खत्म हो गई तो ये अकेले रह पाएंगे क्या।
4: इट इज लाइक प्रॉफिट बिफोर पीपल।
3: ठीक कह रहे हो,
2: बल्कि आंकड़े तो यह दिखाते हैं कि जो देश जितने उन्नत हैं वे उतनी ही तीव्रता से गंध भी फैला रहे हैं धरती पर।
8: पापा कहते हैं चीन को ही देख लो, प्रगति की होड़ में संसार का नंबर वन तो न बन सका पर प्रदूषण फैलाने में जरूर नंबर वन बन गया।
2: तुम्हारा मतलब है वो उन्हें क्या कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स?
3: कार्बन फुटप्रिंट्स मतलब?
4: मुझे पता है, मतलब किसी भी जनसंख्या द्वारा वातावरण में फैले हुए कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैस।
5: ये कैसे होता है?
2: ये यातायात द्वारा या वनों के नाश द्वारा या अत्यधिक वस्तुओं के उत्पादन द्वारा या सड़क या बिल्डिंगों के निर्माण द्वारा भी हो सकता है।
3: ओहो, यानी मानव की गतिविधियों द्वारा हुआ प्रदूषण।
7: ठीक समझे, और फिर तो यही सिद्ध होता है कि जितनी तरक्की उतने ही कार्बन फुटप्रिंट्स।
4: तो क्या ये हमारा ही देश है जिसने स्वच्छता को राष्ट्रीय स्तर पर लिया है?
2: अरे नहीं, कई देश इसके लिए कार्यरत हैं, जापान में, जर्मनी में और कई देशों में नदियां साफ करने में बहुत मेहनत की जा रही है।
4: हम भी तो अपने देश में बहुत सीरियस हो रहे हैं, इसे लेकर सरकार बहुत काम कर रही है।
6: पर सरकार क्या कर रही है या देश में क्या हो रहा है इस पर बाद में बात करते, हम क्या कर सकते हैं इस पर सोचते हैं।
3: मैं बताऊँ, आज घर जाने से पहले इस पार्क के सारे कागज या रैपर आदि कूड़ेदान में फेंक कर जाएंगे।
4: गुड आइडिया, वैसे भी हम सबसे बाद में ही जाते हैं।
8: कल जब लोग आएंगे तो साफ पार्क देखकर हैरान हो जाएंगे।
5: यहाँ का सफाई कर्मचारी सोचेगा आसमान से कोई फरिश्ते उसकी मदद कर रहे हैं।
2: चलो फिर सोच क्या रहे हो जाओ शुरू। बल्कि मैं तो कहती हूँ सफाई कर्मचारी भैया से ही पूछ लेते हैं आपकी कैसे मदद कर सकते हैं।
6: एक और बात बताऊँ, आज ऐसा करके मतलब पार्क की सफाई करके हम योग व्यायाम जोगिंग और ना जाने किन किन स्वास्थ्यवर्धक काम एक साथ कर लेंगे।
9: ऐसा करते हैं हम दो दो का ग्रुप बना लेते हैं।
10: हाँ हमसे जो हो सके पहले वो करते हैं फिर किसी की मदद लेंगे।
5: मुझे पता है उधर एक गड्ढा बनाकर उसे कंपोस्ट पीट भी बनाया जा रहा है।
6: तो ठीक है सब सूखे पत्ते फूल टहनियाँ आदि उसमें डाल देते हैं।
7: ठीक है जोड़िया मैं बनाता हूँ।
4: नहीं हम खुद चुन लेंगे मॉनिटर साहब।

भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ से, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

लता जी, लोग कहते हैं भी तुम्हें इतना मानती हैं लता जी, तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती हैं, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है। तो ना लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नज़र में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज़ दी है, इल्म को उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उन पर करम हुआ।

0: ओ समरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया ओ सवरिया।

0: यार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय नटखट रंग

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय।

0: ओ गुजरिया ओए होए ओ जाने सारी नगरिया,
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया, ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया।

0: अगर आप कबूल करें।
1: मेरी जरूरत नहीं कि इनकार करूं, आइए। लेकिन अचानक मुझे कैसे इस लायक समझ लिया?
0: आपने मुझे जिंदगी का मुकाबला करने की हिम्मत दी, बदले में ये बहुत छोटा तोहफा है।
1: राजी, खोल के देख सकता हूँ?
0: जरूर।

0: कर रही।
1: शालिनी देवी, अगर आप मुझे अमर बनाना चाहती हैं तो ये आपकी भूल है। अगर आप मेरे साथ इसलिए मुलाकात बढ़ाना चाहती हैं कि मुझ में आपका अमर नजर आता है, तो आप समझ सकती हैं कि मेरे आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंचेगी। अगर मैं आपको अमर की याद दिलाता हूं तो आपसे दूर रहना पसंद करूंगा। हाँ, अगर अमर को भुलाने में आप भी कुछ मदद कर सकूं तो मुझे अपना साथी समझिए।
0: गलती से मैं आपको अपना दोस्त समझ पाई।

साथी हो तो जाओ पर जाओगे कहाँ, बाबूजी तुम ऐसा दिल पाओगे कहाँ।

जाओ नजरों को टकरा के जा।